सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानी करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विफल हो भरत जो और जैसा चाहे वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहां एक ओर उपस्थित जनसमुदाय हर्षित हुआ, वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए, यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था। अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्री राम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करें 87-894-18744।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी

0: स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्ते लागू।
6: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
9: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57902। नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
0: बोलबम, हर हर महादेव।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160602।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया

0: 9663565750।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हत्याकांड के आरोपी को 2.5 वर्षों के अंदर हो गई आजीवन कारावास की सजा। अब व्हाट्सएप पर मिलेगी आयुष्मान योजना की हर सुविधा, घर बैठे बन सकता है आयुष्मान कार्ड। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने आज कई विभागों के कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। तालू और कटे फटे होठों का इलाज करने के लिए 20 बच्चों की टीम को जिला प्रशासन ने किया रक्सौल के डंकन हॉस्पिटल के लिए रवाना। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत और जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी हुआ स्थानांतरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हत्या और SC ST एक्ट में सुनवाई करते हुए महज 2.5 वर्षों में ही आरोपी को आजीवन कारावास की सजा न्यायालय ने सुना दी। इसकी आज पूरे कोर्ट परिसर में चर्चा होती रही। बताया जा रहा है कि SC ST के विशेष न्यायाधीश संदीप कुमार की अदालत ने अभियोजन पक्ष के स्पेशल PP मोहम्मद परवेज हसन की प्रभावी पैरवी पर सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। यह मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि कांड संख्या 530/2023 में, यानी 28/10/2023 में यह केस पुलिस ने दर्ज किया था और महज लगभग 2.5 सालों में ही अदालत ने सुनवाई करते हुए इस मामले के अभियुक्त बादशाह यादव, पिता हरदेव यादव, साकिन नारायणपुर थाना कुचायकोट जिला गोपालगंज को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 25,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। बताया जा रहा है कि अर्थदंड जमा नहीं करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भी आरोपी को भुगतनी होगी। गोपालगंज पुलिस ने प्रभावी अनुसंधान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन के साथ न्यायालय में अपनी सशक्त पैरवी की और इसी के परिणाम स्वरूप आरोपी को सजा हुई है। सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। हालांकि एक और मामले में आज अदालत ने फैसला सुनाया। यह भी मामला कटिया थाना क्षेत्र में ही हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। इसमें भी आरोपी को कठोर आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। बताया जा रहा है कि यह मामला 2020 में हुआ था और इस हत्याकांड में माननीय न्यायालय ADJ 10 की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया और अभियुक्त जय श्री चौहान, पिता स्वर्गीय बुनेला चौहान को अदालत ने सजा सुना दी। यह आरोपी बिशुनपुरा नंद शाह के टोला थाना कटिया का निवासी है। इनको IPC 302 के तहत दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास और 20,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया। आर्थिक दंड जमा नहीं करने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। बताया जा रहा है कि न्यायालय में पुलिस के सशक्त पैरवी और प्रभावी अनुसंधान तथा अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जयराम के द्वारा की गई पैरवी और साक्ष्यों को सुनते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए अब सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने योजना से जुड़ी लगभग सभी प्रमुख सेवाओं को सीधे व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान सारथी नाम से आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया है। इसके माध्यम से लाभार्थी 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन अपने मोबाइल से ही योजना की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। सारण जिले सहित पूरे देश के करोड़ों आयुष्मान लाभार्थियों के लिए यह सुविधा खास तौर पर उपयोगी साबित होगी। अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी आयुष्मान कार्ड बनवाने, पात्रता जांचने, अस्पताल की जानकारी लेने या शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग अलग कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही यह सभी सेवाएं कुछ ही मिनटों में उपलब्ध हो जाएंगी। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने आज कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि कार्यालयों के प्रधान लिपिकों की भी समीक्षा बैठक की गई। इसमें विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार और जिले के सभी कार्यालयों के प्रधान लिपिक उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कार्यालयों में संचालित प्रशासनिक कार्यों, अभिलेख संधारण,

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सदर अनिल कुमार ने कुचायकोट प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कुचायकोट भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत की जा रही तैयारियों, उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, आवश्यक दवाओं और जाँच या मरीजों के पंजीकरण, उपचार और जागरूकता की गतिविधियों की समीक्षा की गई है और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आज समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास सेवा कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा और बाल संरक्षण तथा श्रम संसाधन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। इसमें उन्होंने सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन तथा योजनाओं के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचाना हम सभी संबंधित अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आज स्वास्थ्य विभाग ने एक बहुत बड़ी पहल की। जिले के 20 ऐसे बच्चे जिनके तालू या होठ कटे हुए हैं और टोंग इत्यादि जो जन्मजात रूप से कटे हुए हैं, ऐसे पीड़ित बच्चों के इलाज और सर्जरी को लेकर विभाग सक्रियता से काम कर रहा है। जिले के आज 20 बच्चों को निःशुल्क सर्जरी के लिए पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्थित डंकन हॉस्पिटल में भेजा गया। सिविल सर्जन ने एम्बुलेंस से सभी बच्चों को रवाना किया, साथ ही एम्बुलेंस नियंत्रण पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश भी दिया गया। चिन्हित सभी बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ सुरक्षित हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा। 2 जुलाई की सुबह 6 बजे तक जिला स्वास्थ्य समिति परिसर में एम्बुलेंस उपलब्ध करा दी गई और स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सर्जरी और चिकित्सकीय जांच पूरी होने के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है, ताकि परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान 20 बच्चे अलग अलग प्रखंडों से चिन्हित हुए हैं और सभी बच्चों को अस्पताल सर्जरी के लिए भेजा जा रहा है। आज कई जगहों पर सड़क हादसों की भी खबर आई। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 50 वर्षीय सुरेंद्र महतो की मौत हो गई। भवन निर्माण के लिए छड़ खरीदकर घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, परंतु रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। इधर बरौली थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के पास भी एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रक के चपेट में आने से एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रोपनी कर पैदल ही घर लौट रही थी, तभी यह हादसा हो गया। इधर हथुआ के मिर्जापुर बाजार में भी तेज रफ्तार कार का कहर दिखा। साइकिल सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक 20 वर्षीय रियांश बताया जा रहा है, जो मिर्जापुर के ही निवासी थे, बाजार जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। आज गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी स्थानांतरण हो गया। बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार का तबादला कर उनको पटना का शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया और गोपालगंज के नए जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में अमरेंद्र कुमार पांडे की तैनाती हुई है। ये पूर्व में भागलपुर में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। अब गोपालगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। उत्पाद विभाग ने एक डंगा जांच चौकी के पास 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी मीरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला विजयमल कुमार है, जो एक डंगा भगवानपुर गांव का ही निवासी है, और दूसरा अजीत चौहान, यह सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गाँव का रहने वाला है। इन दोनों के पास से भारी मात्रा में शराब मिली है। दोनों की मोटरसाइकिल और शराब को जब्त किया गया है। इसके अलावा बढ़िया वार्ड नंबर 9 में भी उत्पाद पुलिस ने छापेमारी कर शराब तस्कर राजन कुमार को गिरफ्तार किया। यह बरौली के बढ़िया गांव का रहने वाला है। इसके पास से 7 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली है। सिपाया ढाला के पास भी उत्पाद पुलिस ने कार्रवाई की और यहां राजन कुमार शर्मा को शराब के साथ पकड़ा गया। यह गोपालगंज शहर के राम नरेश नगर वार्ड नंबर 10 का निवासी है। यह महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी से 686 लीटर देशी शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। हथुआ जंक्शन पर एक

0: एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव और नए ट्रेनों के संचालन की मांग को लेकर आसपास के लोगों ने रेल मंत्री को प्रस्ताव भेजा है। बताया जा रहा है कि रेल मंत्री को यहां के पूर्व अध्यक्ष प्रत्याशी सुनीता शाह ने पत्र लिखते हुए हथुआ और मीरगंज क्षेत्र में व्यापारिक दृष्टिकोण से भी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव और साथ ही नए ट्रेनों की मांग को लेकर निवेदन किया है। इधर माझा थाना की पुलिस ने चीटिंग कांड में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी गरजू गद्दी और पारस गद्दी हैं। ये दोनों माझागढ़ के गद्दी टोला के रहने वाले हैं। दोनों को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कीर्तपुरा गांव में एक फटा हुआ दूध से बना खाद्य पदार्थ खाने से एक ही परिवार के 10 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए। आनन फानन में सभी को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां सबका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि अनिल सोनी और रजांती देवी के घर से फटा दूध से बना हुआ खाद्य पदार्थ इनके घर आया था और घर के सभी लोग उसका सेवन किए और देखते ही देखते सभी की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। पेट में दर्द, उल्टी और कमजोरी की शिकायत होने लगी, जिन्हें तत्काल सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इलाज के बाद सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हत्याकांड के आरोपी को 2.5 वर्षों के अंदर हो गई आजीवन कारावास की सजा। अब व्हाट्सएप पर मिलेगी आयुष्मान योजना की हर सुविधा, घर बैठे बन सकता है आयुष्मान कार्ड। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने आज कई विभागों के कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। तालू और कटे फटे होठों का इलाज करने के लिए 20 बच्चों की टीम को जिला प्रशासन ने किया रक्सौल के डंकन हॉस्पिटल के लिए रवाना। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत और जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी हुआ स्थानांतरण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
12: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
12: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
13: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
14: एक रंग इश्क का।
15: पिछले पन्ने में आपने जाना कि कैसे मीनल और रम्या शिवानी की पार्टी में पहुंचे, जहां शिवानी ने उन्हें चालाकी से गलत ड्रिंक दे दिया और उसका मकसद मीनल की बेइज्जती करवाना था, पर डेविड ने उसे बचा लिया था। पर इन सब में डेविड और मीनल की नजदीकियां काफी बढ़ गई थी और मीनल ने डेविड को गले लगा लिया था। अब ये नया रंग क्या बयां करेगा, ये तो तभी जान पाएंगे जब पलटेंगे अगला पन्ना। हाय, मैं हूँ कृति और आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का। गाना पर सुबह हॉस्टल में मीनल का सर भारी सा था। मीनल उठी और अम्मिया से कहा, अम्मिया मुझसे कल बहुत बड़ी गलती हो गई है। अम्मिया ने कहा, अच्छा मैडम, चलिए आपको याद तो है, आप कुछ ज्यादा ही नशे में थी, उस शिवानी की बच्ची ने शायद कोई खेल खेला है हमारे साथ। इस पे मीनल ने अम्मिया से कहा, ये शिवानी की बच्ची, इस पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, उसी के चक्कर में मैंने नशे की हालत में डेविड सर को गले लगा लिया। अम्मिया पहले संजीदा और फिर चुटकी लेने वाले अंदाज में बोली, मीनल तूने तो नशे में हिम्मत दिखा दी। फिर मीनल ने अम्मिया से कहा, अब डेविड सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं उनका सामना कैसे करूँगी। ऐसा करती हूँ, मैं अब 2-4 दिन डिपार्टमेंट ही नहीं जाऊँगी, पक्का। मीनल अपने ही ख्यालों में थी कि अब उसे कॉलेज नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, बहुत कम लोगों से मिलेगी और सबसे पहले तो डेविड से मिलकर उनको सॉरी बोलेगी। अभी तो उसे ये भी नहीं पता था कि डेविड क्या सोच रहा है। मीनल ने अपने मोबाइल की तरफ देखा तो वो स्विच ऑफ था, उसने चार्जिंग पे लगाया फिर नहाने चली गई।

0: नहाकर आई तो अपने मोबाइल को ऑन किया, फिर देखा उसमें 6 मिस कॉल्स थे और सब डेविड के कॉल थे। मीनल इस बात से परेशान थी कि डेविड उसे कहीं गलत ना समझ बैठे और उसकी दोस्ती भी ना खो बैठे कहीं वो, जो अभी अभी हुई थी। फिर उसने सोचा कि कॉल करने से बेहतर डिपार्टमेंट चली जाती हूँ और सामने ही मिलकर सब बात कर लेती हूँ। वो डिपार्टमेंट पहुंची, वहां अपने ख्यालों में डूबी सी थी। मीनल अपने दांतों से नाखून को चबाते हुए ये सोच रही थी कि इस हादसे के बाद डेविड सर का सामना कैसे करेगी। उसने ऊपर देखा तो डेविड खड़ा था। डेविड ने भी मीनल को देखा और उसके पास आने लगा। जब तक डेविड आता, शिवानी उसके पास आ गई और नॉर्मल बात करने लगी। मीनल ने भी उसकी बातों का हंस के जवाब दिया और फिर शिवानी वहां से चली गई।
1: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का।
0: डेविड आया और उसने मीनल से कैंटीन चलने को कहा। दोनों कैंटीन पहुंचे। मीनल घबराई सी थी, उसके मन में बस एक ही सवाल था कि अब क्या होगा। डेविड ने मीनल से उसका हाल पूछा और उसके लिए आज खुद कॉफी बना कर ले आया। शायद मीनल को खास फील कराना चाह रहा था। दोनों को देखकर ये साफ लग रहा था कि दोनों पार्टी की उसी घटना पर बात करना चाह रहे हैं। कभी कॉफी की गर्मी पे बात को मोड़ दिया जा रहा था तो कभी बात कैंटीन के पंखे पर अटक रही थी। दोनों ने वहां बैठे बैठे कैंटीन की दरो दीवार सबकी बात कर ली थी, पर कोई भी बात उनकी शक्ल से मेल नहीं खा रही थी। तभी ना जाने कैसे हिम्मत और हौसला करते हुए डेविड ने उस घटना को याद करते हुए बोला,
2: सुनो मीनल।
0: मीनल थोड़ी सी चौंकी लेकिन फिर ध्यान से सुनने लगी कि आखिर डेविड क्या कह रहे हैं। तो डेविड ने कहा,
2: सुनो, मुझे नहीं लगता उस दिन तुम्हारी कोई गलती थी। दरअसल तो नशे में थी, तो जो भी हमारे बीच हुआ उसको लेकर परेशान मत होना।
0: मीनल ने भी इस पर हामी जताते हुए अपने मन का बोझ हल्का किया और माफी मांग ली। डेविड बोला,
2: इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं।
0: फिर डेविड ने मीनल की दो चार तारीफें की, जिसमें से आधी तो मीनल ने सुनी और बाकी आधी डेविड की शक्ल देखते हुए गुजार दी। इस मुलाकात के बाद मीनल और डेविड के बीच बात करने का सिलसिला काफी बढ़ गया और अमूमन दोनों रात की तन्हाई में बात करने लगे। पर दोनों ने इसका खास ख्याल रखा कि एक दूसरे की पर्सनल स्पेस को छेड़े नहीं। मीनल ने कभी भी डेविड से रोशनी के बारे में दोबारा नहीं पूछा, लेकिन उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि रोशनी डेविड की जिंदगी का अहम हिस्सा है। डेविड ने भी रोशनी की बात दोबारा कभी नहीं की, मानो जैसे वो उसे भूल चुका हो। कुछ तो मीनल और डेविड के बीच था जो दोनों को करीब ला रहा था, कुछ तो था जिसकी पर्देदारी थी और साथ ही साथ जानने की तड़प। ऐसे ही एक रोज दोनों की मुलाकात एक अलग सी जगह पर हुई।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
8: ठक ठक
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अरे माँ ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला। ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई। मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है। सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
1: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का।
0: डेविड ने मीनल से पूछा,
2: सो मीनल तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया?
0: मीनल स्माइल करते हुए बोली, नहीं सर, पता नहीं, या कहिए कि जिससे मैं प्यार समझ रही हूँ वो प्यार है भी या मेरी ख्याली दुनिया है। डेविड इस पर बोला,
2: इतना सब सोच लेती हो?
0: सिर्फ सोचती ही नहीं हूँ, किताबें पढ़ती रहती हूँ, शायरियाँ और कविताएं भी लिखती हूँ।
2: अरे वाह, नॉट बैड, तो कुछ सुनाओ फिर।
0: अभी? सर पक्का सुनाऊंगी, पर आज नहीं।
2: क्यों? चलो कोई बात नहीं, फिर कभी। पर मीनल ये शौक कभी ना छोड़ना, और हो सके तो कहानी भी लिखना शुरू करो। तुम्हारे पास खूबसूरत अल्फाज हैं, तो कहानी भी अच्छी लिख लोगी।
0: और फिर डेविड और मीनल की इस बात के बाद डेविड के लिए मीनल के दिल में एक खास जगह मुकम्मल होने लगी थी। उस रोज उसने कुछ और कविताएं भी अपनी डायरी में संजोई, कुछ तंज से भरी, कुछ प्यार में डूबी हुई। ऐसा ही एक पन्ना कहता था, आग को क्या पता होगा तपिश क्या है, ये उस पतंगे से पूछो जो दिए में जला है। जख्मों से क्या पूछते हो चुभन की टीस, कांटों से पूछो उसकी भी शिद्दत रही थी। ना जाने ये शिद्दत मोहब्बत के किस रंग को जन्म देने वाली थी, ना जाने कौन सा रंग खिलने वाला था इस मोहब्बत के, इस इश्क के रंग में। ये तो तभी पता चलेगा जब पलटेंगी अगला पन्ना इश्क का।
1: एक रंग इश्क का।

0: ठीक है, इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
8: कॉल करें 7070-7563 या 7070-7542 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
11: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
12: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
11: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
12: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
11: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
13: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
14: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
13: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
14: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
13: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
14: जानकारी है तो कॉल करें 6252-62112 पे।

0: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक, गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर

0: महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ।
1: मेरे पति अभी संन्यास नहीं ले सकते, ये अभी पराजित नहीं हुए हैं। शास्त्रों में माना गया है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है और इसीलिए आपको मुझे भी पराजित करना होगा। मुझे पराजित कर ही आप मेरे पति को अपना शिष्य बना सकते हैं। यदि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो आप अपनी पराजय स्वीकार लीजिए।
2: इतिहास में शायद ऐसे शास्त्रार्थ, डिबेट या बहस का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है। इस शास्त्रार्थ का नतीजा क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि प्रश्न पूछने वाली महिला का नाम उभय भारती था और पशुपेश में पड़े सन्यासी कोई और नहीं, जगत गुरु आदि शंकराचार्य। नमस्कार, मैं अनुपम खेर, भारतवर्ष में आपका स्वागत है। भारतवर्ष के इस एपिसोड में कहानी उस महान सन्यासी की जिनकी लिखी किताबों को हम में से बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, जिनके लिखे श्लोक उससे भी कम लोग जानते हैं। लेकिन जब सवाल जीवन और मृत्यु का हो, व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच के संबंधों का हो, उसी सन्यासी के विचार 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के विचार बन जाते हैं। जब एक राजनीतिक भारत की जगह एक आध्यात्मिक भारत की चर्चा होती है तब इसी महामानव की याद आती है। भारतवर्ष में इस बार महागाथा जगत गुरु आदि शंकराचार्य की।
0: यह है आज के भारत का राजनीतिक मानचित्र। लेकिन क्या राजनीतिक सीमाएं ही भारत को बनाती हैं? अब आप एक आध्यात्मिक भारत की रूपरेखा देखिए। उत्तर में हिमालय की गोद में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूरब में गोवर्धन मठ। इस आध्यात्मिक भारत के पीछे जिनकी सोच है उन्हें ही जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं।
3: रक्षा के दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से, जो है आध्यात्मिक एकता की दृष्टि से, ये सारी चीज है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो मतलब ऐसे व्यक्ति हो नहीं सकते दूसरे जो इस तरह का चिंतन रखते हो, और उन्होंने सफल प्रयोग किया।
0: आज से 1200 साल पहले जब भारत राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि धार्मिक तौर पर भी बटा था, तब धर्म के नाम पर आडंबर था, कर्मकांड था। जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं वो 84 से भी ज्यादा अलग अलग संप्रदायों में बटा था। यहां तक कि बौद्ध धर्म में भी तंत्र मंत्र करने वालों का बोलबाला था।
4: बौद्ध धर्म का जो उस समय स्वरूप है वो हीनयान नहीं है, महायान नहीं है, वो समय है जब वज्रयान आ गया है, यानी तांत्रिक बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है, जिसके कारण से समाज में धर्म के नाम से विकृतियाँ आने लगी हैं। एक तरफ ये दृश्य है, दूसरी तरफ क्या है कि हिंदू धर्म जिसे आप कहते हैं, वैदिक धर्म कहते हैं, उसमें एक मूर्ति पूजा वाले संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, सूर्य की पूजा करने वाले सौर संप्रदाय, गणपति की पूजा करने वाले गणपत संप्रदाय, शक्ति पूजा वाले शाक्त संप्रदाय, ये आपस में संघर्षशील हैं। इनमें आपस में बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं हो रही हैं।
0: इन हालात से धर्म को निकालने के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की पैदल यात्रा की थी। मकसद था भारत को धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर एक करना। भारत का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा होगा जहां की यात्रा आदि शंकराचार्य ने नहीं की हो। उन्होंने भारत के हर कोने में अलग अलग धर्म और संप्रदायों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और धर्म विजय की नींव रखी।

0: इस महान दार्शनिक और धर्म की रक्षा करने वाले आदि शंकराचार्य की जीवन यात्रा शुरू होती है केरल के एर्नाकुलम जिले के काल्टी या कलाडी गांव से। निम्बूद्रीपाद ब्राह्मणों के उस गांव में शिव गुरु नाम के विद्वान रहा करते थे। कहते हैं भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने शंकर रखा। आमतौर पर इतिहासकारों की राय यही है कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था, यानी आज से करीब 1200 साल पहले। कुछ लोग आदि शंकराचार्य का जन्म 2500 साल पहले भी मानते हैं। जन्म से ही शंकर अपनी अद्भुत प्रतिभा से सबको चकित कर रहे थे। कहा जाता है कि वो इतने प्रतिभाशाली थे कि 3 साल की आयु में ही मातृभाषा मलयालम सीख ली, वेदों को पढ़ डाला, धर्म के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने लगे।
1: वधोहे को बंधा हुआ कौन है?
2: विषयानुरागी, वासनाओं में जो अनुरक्त होता है वही बंधनग्रस्त है।
1: वासनाओं में जो अनुरक्त है, घोर नरक क्या है?

0: तभी पिता शिवगुरु का देहांत हो गया।
1: पिता की मृत्यु इतनी छोटी उम्र में हो गई। अब माँ और बेटा ही एक दूसरे का सहारा थे। माँ पुत्र के लालन पालन और भविष्य को लेकर चिंतित थी। परंपरा के अनुसार माँ ने 5 साल की उम्र में बालक शंकर का उपनयन संस्कार करवाया। इसके बाद बालक शंकर को शिक्षा के लिए आचार्य के पास भेजा गया। यहाँ एक चमत्कार हुआ। जिन शास्त्रों के अध्ययन में शिष्यों को 20 वर्ष लग जाते थे, उसे बालक शंकर ने 2 वर्ष में ही समाप्त कर दिया और वापस माँ के पास कलाड़ी लौट आए।
0: बालक शंकर के बारे में जो कहानियां कलाड़ी के साथ साथ पूरी दुनिया में चर्चित हैं, उनमें से एक इस पूर्णा नदी से भी जुड़ी हुई है। अब इसे पेरियार नदी कहते हैं। अभी यह नदी कलाड़ी को छूकर निकलती है, लेकिन शंकर के समय यह गांव से काफी दूर बहा करती थी और उनकी माँ को पानी और स्नान के लिए जाने में काफी दिक्कत होती थी। माँ को परेशान देखकर बालक शंकर ने प्रार्थना की और पूर्णा नदी ने धारा बदली। लेकिन माँ की चिंता कुछ और ही थी। एक दिन अगस्त ऋषि बालक शंकर के घर पहुंचे।
2: हे देव, मेरे बालक को लंबी आयु का आशीर्वाद दीजिए।
3: ये संभव 8 वर्ष इसके उपरांत 8 वर्ष अर्थात 16 वर्ष फिर कुछ कारणवश और 16 वर्ष अर्थात
4: आचार्य
2: केवल 32 वर्ष। आप क्या कह रहे हैं देव? नहीं नहीं
0: तीस वर्ष की आयु में पुत्र के देहांत की बात सुनकर मां कांप उठी। दूसरी तरफ मां की इस चिंता से अलग बालक शंकर कुछ और ही सोच रहे थे।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7055006144 या 7870331444।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
11: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
12: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
11: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
11: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
11: और 90971602।

0: आयोजन करेगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। और मौसम विभाग ने आज पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने 15 अगस्त से अनुमंडलीय और जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज और उच्च स्वास्थ्य संस्थान में अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अनावश्यक रेफरल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने और इसके लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। श्री चौधरी ने अस्पतालों में नर्सों की पदस्थापना पर विशेष ध्यान देने और उन्हें यथासंभव उनके गृह जिलों में पदस्थापित करने पर विचार करने के भी निर्देश दिए। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रदेश में विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को अब 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही है। पटना के अधिवेशन भवन में योजना की औपचारिक शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी मजदूर को आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं दिया गया तो सरकार उसे अपने कोष से बेरोजगारी भत्ता देगी। उन्होंने कहा कि अकुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी को 255 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए रोजाना कर दिया गया है। श्री कुमार ने कहा कि अकुशल मजदूरों का मस्टर रोल बंद होने से 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो बकाया राशि पर 0.05% प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि मनरेगा की अव्यवस्थाओं और खामियों को दूर करने के मकसद से विकसित भारत जी रामजी योजना को लाया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को फायदा मिलेगा।
1: जिस तरीके से मनरेगा को भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया गया था, ये तमाम चीजों को खत्म करने की सोच के साथ और सही मायनों में जो लाभार्थी हैं उनको इस योजना से जोड़कर इसका लाभ मिले, इस सोच के साथ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लंबे समय से इस योजना पे कार्य हो रहा था, इसको लाया गया है, इसको लागू किया गया है। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में इसका लाभ भी देश की एक बड़ी आबादी को देखने को मिलेगा।
0: इस बीच केंद्रीय मंत्री श्री पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात कर राजगीर में दो युवकों की हत्या और आरा में भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की जानकारी दी। श्री पासवान ने इन मामलों में निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने का आग्रह किया है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसके लिए स्वयं सृजित राजस्व जुटाने को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कार्यशाला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने, कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा करने और वित्त आयोग के अनुदानों के प्रभावी उपयोग के लिए व्यावहारिक रणनीतियों का आदान प्रदान करने का मंच भी प्रदान करेगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने केंद्र सरकार से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए 1,120 करोड़ रुपए की मांग की है। श्री तिवारी ने इस संबंध में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य के लिए विशेष बजट के आवंटन से विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि गंगा नदी का कायाकल्प एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, वैज्ञानिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों के बीच लगातार सहयोग से यह महती कार्य किया जा सकता है। गंगा नदी के लिए बनाई गई एम्पावर्ड टास्क फोर्स की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री पाटिल ने यह बात कही। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि अब तक 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित लागत वाली 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 363 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 21,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। राज्य निर्वाचन प्राधिकरण ने 37 पैक्स चुनाव के लिए प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार 6 जुलाई को प्राथमिक कृषि साख समिति स्तर पर प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 8 जुलाई को जिला सहकारिता पदाधिकारी की ओर से सूची निर्वाचन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। दावा आपत्ति और अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया 23 जुलाई तक पूरी होगी। इधर पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। उपचुनाव में 3,79,000 मतदाता भाग लेंगे। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि उपचुनाव के लिए पटना सदर के भूमि सुधार उप समाहर्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। उपचुनाव के लिए 6 से 13 जुलाई तक नामांकन लिए जाएंगे। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कल से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यगत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
1: बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जट्टा आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: मौसम विभाग ने आज पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ वज्रपात की आशंका है।
2: दिनांक 3 जुलाई राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर मॉनसून की सक्रियता से पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, बक्सर, सारण, वैशाली, बेगूसराय और खगड़िया समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे अधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश होने से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीवान का जीरादेई सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रेलवे बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी है। बोर्ड के अनुसार 4098 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इधर बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट पद की कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 28 जुलाई को होगी। निगरानी जांच ब्यूरो ने शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग में तैनात अवर सचिव अमोद मिश्रा को 20,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इधर पटना पुलिस ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन और GST के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के मामले में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, कई पासबुक, 6 लाख से अधिक नकद और 7 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। शिवहर जिला प्रशासन ने शिवहर थाना अध्यक्ष सहित जिले के 4 थानों में नए थाना अध्यक्ष पदस्थापित किए हैं। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने नव पदस्थापित पुलिस कर्मियों को 24 घंटे के अंदर योगदान देने का आदेश दिया है। शेखपुरा जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 333A बरबीघा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का काम आज से शुरू हो गया है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रियंका कुमारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अतिक्रमण से यातायात संचालन, सड़क सुरक्षा और आम जन की परेशानियों को दूर करने के मकसद से यह कार्रवाई की जा रही है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 105 ग्राम मादक पदार्थ भी बरामद किया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट से भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा बिहार। भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री, विधायक और अफसर नपेंगे। दैनिक जागरण ने राज्य में टोल टैक्स से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सड़कों की चौड़ाई के अनुसार लगेगा टोल टैक्स, अब तक 50 सड़कें चिन्हित। दैनिक भास्कर ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, बांकीपुर से जन सुराज के पीके खुद लड़ेंगे चुनाव, भाजपा से नीलू रेस में सबसे आगे। प्रभात खबर लिखता है, नीट जेईई में बोर्ड परीक्षा के अंकों पर मिल सकता है 50% तक वेटेज। आज अखबार का शीर्षक है, पटना मेट्रो का मलाही पकड़ी तक परिचालन शुरू। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगों की होगी टीबी स्क्रीनिंग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अगस्त से अनुमंडलीय और जिला अस्पताल से उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने के निर्देश दिए। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज्य मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। और मौसम विभाग ने आज पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: Pick it up, hello, now pick your phone up.

0: अपने पसंद के गीत को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029294911। जी हाँ, 8029294911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। और दोस्तों, अब आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आप कहीं भी हो, अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM से कैसे जुड़ रहे हैं। तो देर किस बात की है, जुड़े रहिए हमारे साथ, भेजते रहिए अपनी फरमाइशें और बनिए इस संगीत भरी महफिल का हिस्सा। तो चलिए बढ़ाते हैं इस सुरीले सफ़र को आगे और लेते हैं आज की पहली फरमाइश। जानते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता, कहाँ से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आप सुन रहे हैं हेलो माय चॉइस, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज।
1: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मनीषा कुमारी तरिया से।
1: कैसी है मनीषा जी?
2: ठीक हूँ, आप बताइए।
1: हम भी बढ़िया हैं। क्या हो रहा था?
2: अभी बैठी हूँ, खाना खा कर बैठी थी। आपका खाना हो गया?
1: जी जी, मेरा खाना हो गया है।
2: चलिए ठीक है।
1: तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
2: तैनु शरारत सिखावा जद नैना लड़ा।
1: सुनाना भी है
2: जी मैम आपको और अपने दोनों दीदी को और छोटे भाई को और रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आर्जेंट।
1: ओके, चलिए तो प्ले करेगा ना आपके?
2: जी मैम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो माय चॉइस में कॉल की।
2: जी थैंक यू मैम।
1: मोस्ट वेलकम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 FM में।
1: प्रणाम प्रणाम
0: जी। प्रणाम जी। जी आज हमी बानी। सब बढ़िया बा। अपने के बताए कैसन बानी, घर परिवार सभी लोग कैसन बा?
1: सब लोग ठीक
0: बा। हम भी ठीक है बानी। मनीष मिश्रा बात कर दे।
1: मनीष कुमार मिश्रा। हमारा तो निकला ठीक ठाक बानी।
0: कैसे
1: सही अनुमान होता?
0: अच्छा, मतलब अनुमान लगा के कारण जान सकता नहीं?
1: कारण क्या जान सकता नहीं,
0: मतलब कैसे अनुमान लागल कि हम ठीक ठाक नहीं थी?
1: ठीक ठाक जब शो में आई ले, जब बोली ले तो वही पता चल जाएगा की ठीक ठाक बानी की नहीं ठीक ठाक।
0: अच्छा अच्छा चली।
1: वो तो ऐसे बोल रहे की हाँ चकाचक बारिश भी भय लगे।
0: अभी कहाँ इंतजार बटे बारिश के। तो गाना कौन सुनवा दे?
1: गाना सुनवा दिया एगो अंजलि यादव के गाना बा, सीधा साधा दिलवा के कत्ल कैलू
0: जी।
1: सुनवा दे।
0: सुनवाए के भी बा।
1: इतना हमारा नाम से जाने वाला लोग सब लोग सुन ली आप कर रहे के।
0: चलिए ठीक बा, तो प्ले करते नहीं गाना?
1: प्ले करे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने कॉल देने। प्रणाम।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
8: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
8: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
8: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
8: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
8: बोलबम, हर हर महादेव।
9: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका। जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
10: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
11: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
12: हेलो, नमस्कार मैडम।
13: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिमझिम में।
12: जी, आप भारती जी बोल रहे हैं?
13: सोनी बात कर रहे हैं।
12: सोनी
13: जी,
12: आपसे हमको शिकायत है, पहली बार आज बहुत दिनों के बाद मिली हो। मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरपुरा से।
13: जी जी,
12: है ना, आज कितने दिनों के बाद मिली है। कल आपका हम प्रोग्राम सुने हैं, वो वाला लाइव वाला, उसमें कौन सा आदमी पूछा है कि हम पान बहुत ज्यादा खाते हैं।
13: बोले हैं कि आप पान के शौकीन हैं।
12: बताइए, हम पान खा के बात करते हैं क्या?
13: नहीं, और ये बिमलेश जुड़ते हैं क्या थावे के तरफ से कहीं से?
12: अच्छा,
13: हाँ, तो वो बोले कि आप कुछ खाते खाते बात करते हैं, आपके बातों से ऐसा लगता है।
12: मेरा आवाज ही मोटा है तो हम क्या करें, बोलिए।
13: नहीं, वो तो मैं बोली उनको कि ऐसा है, बाकी अब मुझे नहीं पता कि वो खाते हैं या नहीं खाते हैं।
12: ऐसा ही बोल रहे थे कपूरपुरा वाले भाई साहब।
13: हाँ हाँ, मन्नान भाई।
12: तो पान खा के बात करते हैं क्या, पर इतना ही हम पहले सुने, जब रेडियो को जैसे वॉल्यूम ऑन किए ना, तो यही आवाज पहले मेरे कानों पे आया। और उससे पहले क्या प्रोग्राम हुआ हमको पता नहीं है।
13: अच्छा,
12: लेकिन हाँ, वही प्रोग्राम सुनने के लिए खोले, जब हम टाइम नहीं मिला, जब टाइम मिला तो अपना खोल कर सुनने लगे, इन्हीं का आवाज आया है ना।
13: पता नहीं था समय पे आप रेडियो ऑन किए हैं।
12: हाँ, एकदम बिल्कुल सटीक एकदम समय पे किए हैं ऑन, है ना। अब हम किसी शिकायत अपना बोल भी नहीं रहे घर में कि देखो ना, हमारे पान खाने का जो है मेरा शिकायत आ चुका है, है ना।
13: तो ऐसा क्या बात है? नहीं होता है कि अनुमान लगाना, तो वो ऐसे बोले तो हम बोले कि अब मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम उनसे बात होगा तो बोले कि पूछिएगा, हमें उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अगर वो सुन रहे हैं तो वो खुद ही बोलेंगे, जवाब देंगे।
12: नहीं नहीं, ऐसा कोई बात, पान तो खा ही लेते हैं, पर ऐसा कोई ये नहीं है कि पान हम नहीं खाए हैं, नहीं खाते हैं, खाते हैं, ऐसा ये नहीं है कि हम बात करते वक्त जो पान खा लिए हो, है ना, तो वैसा नहीं है बात मेरा। लेकिन वो शिकायत किए हैं तो सीखी किए हैं, कभी ना कभी तो खा ही लेते हैं।
13: नहीं, शिकायत नहीं बोले, शिकायत बोल के नहीं बोले, वो बोले कि ऐसा लगता है कि कुछ खाते हुए बात करते हैं। तो वो बोले कि हो सकता है पान के शौकीन हो तो पान खा रहे हो, ऐसा नहीं, बात बस बात हुई है, शिकायत के तौर पर ना वो बोले है ना, ये उनका सवाल था कि पूछिएगा,
12: पूछिएगा, तो हम उनसे पहले हम ही आपसे पूछ दिए हैं, बात को काटिएगा नहीं।
13: नहीं नहीं, काटने की, हम बोले वहाँ शो में ही बोले कि मुझे पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर वो सुन रहे हैं जहाँ से भी, तो इसका रिप्लाई वो जरूर देंगे जब भी उनसे बात होगी, लेकिन जवाब मिलेगा,
12: बोल दीजिएगा उनसे भाई साहब कि हम पान खाते हैं, कभी कभार खा लेते हैं, है ना, पर वो जो बातें होती है उस टाइम पे हम नहीं खाते हैं, और हम मेरे आवाज ही है तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा।
13: नहीं नहीं, वो तो सही है, लेकिन
12: हम तो ज्यादा तो कभी कभी तो नाम भी नहीं लेते हैं, बातों बातों में झील जाते हैं, है ना, कभी नाम भी लेते हैं, लेकिन नाम लेना जरूरी है और जगह का नाम लेना भी जरूरी है, इसमें लोग बाकी लोग सुनेंगे तो कैसे पता होगा कि कौन सा
13: लिस्नर है, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए क्या कि आदमी जुड़े कहाँ से है, कौन है।
12: आज आपका प्रोग्राम आएगा ना, वो
13: लाइव तो आ जाएगा ही,
12: लाइव आएगा ना,
13: लाइव आएगा,
12: तो उसमें कैसे, उसका नंबर भी नोट नहीं किया ना लाइव वाला का, उसी में कॉल करके हम भी बोले।
13: उसमें नंबर है 72-77-16-65-96 पे कॉल कर सकते हैं।
12: 72-77-16-65-96
13: जी
12: है ना। तो हाँ। कितने बजे कॉल होता है? हर रोज होता है क्या?
13: हर रोज 12 से 4 के बीच में शो चलता है, लाइव रहते हैं। हाँ, तो 12 बजे के बाद आप कभी भी जब भी रेडियो ऑन करिए, बस शो सुनना शुरू करिए, कॉल कर सकते हैं आप।
12: तो इसमें लिखते हैं, रुकिए, 72 कितना?
13: 77-16-65-96
12: 16-65 रख लिए हैं। और इसी को हम कॉल करेंगे 12 बजे से लेकर कितने बजे तक मैडम?
13: 4 बजे तक।
12: 4 बजे तक 12, 1, 2, 3, 4 वापस कितना बड़ा शो चलाती है जी आप?
13: बीच में आधा घंटे का ब्रेक होता है, न्यूज चलता है ना दोपहर समाचार।
12: तो हम तो देखते हैं कि आप इतना स्पीड में आप बोलती जा रही हैं, इतने बोलती सकते नहीं है क्या मैडम?
13: सकते हैं, तो पानी लेके बैठते हैं, पानी पीते रहते हैं।
12: अरे बड़ी स्पीड, इतना स्पीड में आपका वो पढ़ लेना, जान लेना, बोल लेना, हम तो कहते हैं कि ये ऊपर वाला कहाँ से दिमाग आया है, कितना सोच है।
13: नहीं, वहाँ तो फास्ट होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ काफी सारे लिसनर होते हैं, और गाना बजे या ना बजे मैसेज तो सबका शामिल करना है।
12: अच्छा, कॉल भी उठा लेती है उसी टाइम में?
13: हाँ, उसी में एक व्हाट्सएप से रहता है, इंस्टाग्राम से भी फरमाइश होती है, कॉल से भी होता है।
12: व्हाट्सएप से करेंगे क्या?
13: जिससे मर्जी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ना चाहे तो वहाँ भी मैसेज हो सकता है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज, अब या फिर आप बोल के वॉइस भेज सकते हैं अपना, उसमें होता है ना वॉइस रिकॉर्डिंग का।
12: हाँ,
13: तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपने आवाज में अपना बात।
12: ना, जैसे अभी कॉल करके हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे उसमें नहीं कर सकते हैं?
13: तो उसमें जो नंबर अभी लिखा है तो उसमें कॉल भी है, 3 माध्यम है उसमें शो में जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप है, कॉल है, इंस्टाग्राम है। आप जो माध्यम है उपस्थित उस माध्यम
12: उसी में बोलेंगे, आप भी से बोलेंगे, पान वाला बात उसी में बोलेंगे।
13: सही रहेगा।
12: बहुत दिनों के बाद मैडम मिली है, इतना हमको खुशी हो रहा है कि क्या बताएं मैडम।
13: नहीं, आते तो डेली हैं, लेकिन अब लाइव वाले में रहते हैं, दूसरा काम करते हैं, बाकी वो लोग
12: हम समझ रहे हैं। तो कोई गाना सुनाइए ना, बहुत दिनों के बाद आप मिली है जी, आप ही के मन से आज गाना सुनने का दिल करता है।
13: ठीक है, तो हम अपने मन से
12: सुना दीजिएगा।
13: अच्छा, कव्वाली सुनना है?
12: हाँ, कोई कव्वाली जो है वो ये वाला एल्बम का कोई कव्वाली भी सुनवा दीजिए।
13: अच्छा, पुराना कि नया? में
12: पुराना नया क्या, कव्वाली कव्वाली होता है, दूसरा का नाम है कव्वाली, बहुत तरह।
13: हाँ, वो तो है।
12: अब हम नहीं कहेंगे भोजपुरी गाना, नहीं कहेंगे वो कोई गलत गलत गाना का, हम नहीं कहेंगे
13: गलत गलत गाना। तो
12: जब आपसे सुनवाना है, हमको सुनना है, तो कव्वाली के माध्यम से हमारे लिए सही रहेगा।
13: जी जी, बिल्कुल।
12: हाँ, तो कोई सुनवाइएगा। एक दिन भारती जी बोले थे, आप ही मेरे गाने में चॉइस का कोई बजाइए ना, तो कह रही हैं कि कौन सा, आखिर कोई नाम फिल्म का तो बताइए। ये वो हमने कहा कि बहुत पुराना फिल्म है, एक हंटर वाली, एक सज्जो रानी, ढूंढते रहिएगा, है ना?
13: तो सुनाई थी
12: ना, तो वो सज्जो रानी का सुनाई है एक गाना, सुना दिए, तो वो भी मेहनत कर रही है,
13: करना ही पड़ेगा।
12: आप थोड़ा थोड़ा बताते रहिएगा।
13: बताते हैं कुछ,
12: रख रहे हैं मैडम।
13: ठीक है,
12: सलाम अलैकुम।
13: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं कॉल किया।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 9939966999।
12: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट RJ सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
13: नमस्ते,
12: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
13: बालवीर सुंदरपुर
12: जी, कैसे हैं बालवीर जी?
13: ठीक है, अपन बताइए।
12: हम भी बढ़िया हैं।
13: बारिश हो रहा है क्या उधर?
12: कल हुई थी, आज तो नहीं हुआ है।
13: इधर तक बहुत ज्यादा हो रहा है।
12: चलिए बढ़िया है, तो आज आप इंजॉय करिए बारिश।
13: जी जी जी जी, खातरी ना खोल बरसा भीजे नाने, खातरी खोल ना बरसा सही है गाना पुराना।
12: एक बार और बताइए, आवाज कट रही है।
13: खातरी ना खोल ना बरसा भीजे ना जाने, नेटवर्क के भाई ने पकड़े
12: जी। और गाना डेडिकेट भी करिएगा
13: हमारा।
12: चलिए तो प्ले करे गाना आपका।
13: नमस्ते,
12: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, इसमें कॉल।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: अफ्ताक अलम बरारी सरकेस।
1: जी, कैसे हैं अफ्ताक जी?
0: अब ठीक है, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। और सर बताइए, घर परिवार में आपके सभी लोग कैसे हैं?
0: ठीक है, आप घर में?
1: मैं भी बढ़िया हूँ।
0: दिन का कैसा हालत है?
1: दिन का हालत तो जैसा आपके उधर है वैसा ही है, ज्यादा दूर पे थोड़ी है।
0: बहुत गर्मी है।
1: गर्मी तो काफी है, हवा भी नहीं चल रहा।
0: गाना सुना दीजिए।
1: जी, गाना सुना देंगे, बता दीजिए नाम गाने का।
0: नाज शरीफ।
1: तो नाज शरीफ अगर आपको याद हो तो दो लाइन गा के आप ही बता दीजिए।
0: नहीं मैम, आप नाम उनसे प्लीज।
1: देखिए, नाज शरीफ के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो अगर आप बता दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा।
0: मराबा मराबा या मुस्तफा
1: गा के बता दीजिए।
0: उतना नहीं याद है मैम।
1: नहीं याद है? अच्छा, चलिए ठीक है,
0: आपने बता दीजिए।
1: अच्छा, और गाना डेडिकेट भी करिएगा नाज शरीफ।
0: जी मैम, सब कोई।
1: चलिए तो प्ले करें।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
9: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: पिक इट अप, पिक इट अप।
14: हेलो,
13: नाउ पिक योर फोन अप।
14: हेलो,
13: पिक इट अप, पिक इट अप।
14: Now
13: pick your phone up.
14: Hello.
15: जब फोन रिंग दे बजती है तो कहते हैं हेलो।
16: तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिव्यू 90.4 हमें।
1: मेरा नाम शोभा पांडे है। मेरा नाम शोभा पांडे है, गोपालगंज से हाजीपुर से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, तो
1: गाना सुन रहे हैं।
0: जी जी, कौन सा गाना सुना दे बता दीजिए आपको।
1: बाघवा इलबा।
0: बाघवा इलबा टुनटुन यादव का?
1: क्या
0: टुनटुन यादव के आवाज में है वही ना?
1: हाँ हाँ हाँ वही।
0: और सुनाना भी है
1: आपको और पूरे रेडियो रिव्यू परिवार को और मेरे भाई बहन है।
0: चलिए कुछ ले करेगा ना।
1: ओके
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माई चॉइस में कॉल।

0: जी बता, आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
1: नाम तो हरिंदर प्रसाद पड़ेगा
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं हरिंदर जी?
1: बक्सर से।
0: बक्सर से
1: राकेश जी, भारती जी आपके पास कॉल किए थे बक्सर से।
0: अच्छा, हाँ राकेश भारती जी के मित्र बोल रहे हैं।
1: कॉल आया था आपके पास?
0: हाँ हाँ, बात हो चुकी है उनसे।
1: पार्टी दे रही है आप?
0: अच्छा, पार्टी चाहिए आपको भी?
1: चाहिए ना, हम तो साथ में है।
0: हाँ तो बोले हैं तो उनसे कि पार्टी उधार रहा, जिस दिन मिलेंगे उस दिन पार्टी देंगे। अब ऐसे तो फोन पे नहीं होगा ना, आइए कभी गोपालगंज तो पार्टी देते हैं।
1: आएंगे, हम भी आएंगे साथ में उनके साथ में। वो हमारे जीजा जी है।
0: स्वागत है आप सभी का गोपालगंज में।
1: वो राकेश जी मेरा जीजा जी है।
0: अच्छा, जीजा जी है। ओहो, फिर तो बढ़िया है, तब तो साथ में आना बनता है।
1: साथ में ही आएंगे।
0: आइएगा तो पहले बता के आइएगा ताकि हम भी रेडी रहेंगे।
1: सही, एक्टिव रहेंगे। सही, और सब सुनाइए, सब ठीक है? खाना पीना हो गया?
0: सब बढ़िया है, खाना पीना खा के ही आते हैं घर से।
1: हम लोग का भी सही है।
0: तो गाना कौन सा सुनवा दे बता दीजिए।
1: सुनवा दीजिए नीलकमल का कोई भी गाना।
0: नीलकमल जी का कोई भी गाना? अच्छा, और डेडिकेट भी से रहेगा, एक तो भारती जी रहेंगे।
1: पूरा अरेंजिंग रेडी वाला जितना भी है आप भी है सब कुछ।
0: चलिए तो प्ले कर दे गाना।
1: तो ठीक है, प्ले करिए।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस कॉल।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
12: तो दोस्तों छोटा सा ब्रेक था और अब ब्रेक हो चुका है खत्म। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को दिल से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे अपने जिले की आवाज पर। अगर आप भी अपने पसंद के गीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर 8029294911। जी हाँ, 8029294911। और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस संगीत भरी महफिल को आगे बढ़ाने का। जानते हैं कौन है हमारे अगले श्रोता, कहां से जुड़ रहे हैं और कौन सा गीत बन रहा है उनकी यादों और एहसासों की आवाज़। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की ओर, सुनते हैं उनकी पसंद का एक शानदार नगमा सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
0: मनीषा कुमारी तरह सिंगर से
1: जी। कैसे हैं मनीषा जी?
0: ठीक हूँ, आप बताइए।
1: अभी बढ़िया है, क्या हो रहा है?

0: होता है।
1: अभी तो कॉल लगा रही थी, खाना खा के अभी और कॉल लगा रही थी आपके पास।
0: अभी तो कॉल लग गया ना अभी।
1: जी मैम, आपका खाना हो गया है?
0: हाँ जी, मेरा खाना हो गया, खाना पीना खा के आए हैं, क्योंकि अब आप लोग से बात करनी है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ना।
1: चलिए ठीक है,
0: तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
1: आप भारती मैम बोल रही हैं?
0: सोनी बात कर रहे हैं।
1: पहचान
0: कोई बात नहीं,
1: सब बढ़िया है ना?
0: हाँ जी सब बढ़िया एकदम। आप बताइए आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं?
1: सब कोई ठीक है घर परिवार।
0: चलिए
1: तो आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक है ना?
0: हाँ जी हाँ जी, सब कुछ बढ़िया एकदम, मस्त प्रकार से बिंदास है।
1: चलिए ठीक भी रहना चाहिए।
0: तो गाना कौन सा सुनवा दे बता दीजिए।
1: मैम अपने पसंद का कोई सुनवा दीजिए,
0: तो ये गड़बड़ हो जाएगा।
1: हाँ सुनवा दीजिए,
0: आज सुनवा दें।
1: हाँ
0: अच्छा ठीक है, सुनवा देंगे। इतना बताइए कि आपको किसकी आवाज में सुनना है, कुछ तो हेल्प करिए आप।
1: नेहा कक्कर की आवाज में सुनवा दीजिए कोई अच्छा वाला। दिल गलती कर बैठा है।
0: दिल गलती कर बैठा है, ये तो उसका है ना, जुबिन नौटियाल का है ना?
1: हाँ वो भी आया है और नेहा कक्कर दोनों।
0: नेहा कक्कर, हाँ चलिए तो वो गाना प्ले कर दें।
1: जी मैम
0: जी, और गाना डेडिकेट भी करिएगा।
1: जी मैम, अपने घर में सब कोई को और आपको और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजे को और भारती मैम को।
0: ओके चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना।
1: जी मैम
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमाई चॉइस में कॉल।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: हाँ जी, सोनी जी या भाटी जी?
1: सोनी जी बात कर रहे हैं, आप राकेश भाटी?
0: हाँ जी।
1: जी कैसे हैं?
0: बढ़िया संजय
1: जी। अभी क्या हो रहा था, खाना पीना हुआ?
0: हाँ खाना हुआ, अभी खाना खा करके अभी बैठ के फोन लगा रहा था तो लग गया।
1: चलिए बढ़िया बात है कि फोन लगाया और लग गया।
0: कब से तब से कितने दिन से बातें नहीं हो रहा था भाटी जी से बात।
1: आज सोचे कि हम ही बात कर ले, थोड़ा काफी दिन हुआ सभी लोग से बात की है। ऐसे तो मुलाकात होता ही है लेकिन बात करने का अलग मजा है।
0: हाँ,
1: है ना?
0: हाँ जी है। हम कब से सोच रहे थे कि सोनी जी से कब बात।
1: चलिए बात हो गया, तो गाना कौन सा सुना दे आज?
0: गाना सुनना था हमको, पुराना फिल्म लगाना है अंदाज फिल्म का, तो हिंदी सॉन्ग है आएगा मजा बरसात का, उसी में लगाना है।
1: आएगा मजा बरसात का
0: अंदाजे का लगाना है।
1: हाँ अंदाज का ही है।
0: तो वही वाला सुनना था।
1: सुनवाना भी है?
0: हाँ सुनवाना तो सब, हम लोग तीन आदमी है साथ में, हरिंदर जी है, पप्पू जी है, हम है, बलराम जी है, मंगलू यादव है, और अपना ग्रुप है 4-5 आदमी का। हाँ तो सब लोग में मतलब हम ही वो मतलब मैसेज वैसेज या सब कुछ करते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या फिर करो, आपका फोन लग जाता है या आपका फरमाइश पूरा हो जाता है, हम करते हैं तो एक सप्ताह लगता है।
1: ऐसा नहीं है, होता है कभी कभी किसी का कॉल जब बज जाता है ना तो वो कॉल बार बार बजते जाता है।
0: हाँ नहीं जैसे भोजपुरी है ना मैसेज वाला में, तो उसमें हम मतलब दूसरे दिन पर मैसेज करते हैं तो हमारा बज जाता है, उन लोगों का नहीं बजता। उन लोगों का होता है कि आपका एक सप्ताह पूरा नहीं हुआ है।
1: नहीं तो आप एक सप्ताह बाद ही मैसेज करते हैं ना, फरमाइश देते हैं।
0: हाँ तो वही हम सब मतलब शिकायत कर रहा था कि आपसे क्यों आपका फरमाइश बज जाता है, हमारा नहीं बजता है।
1: कोई नहीं खुद बच जाएगा।
0: तो हम बोले कि हम तो भाई पुराने लिस्नर है, हमारा तो बजेगा ही बजेगा।
1: अच्छा चलिए बात होगी फिर।
0: ठीक है संजय, सब बढ़िया बना
1: है, और भी कॉल लेना है?
0: और संजय बढ़िया बना है?
1: जी जी सब बढ़िया है एकदम।
0: बर्थडे वाला बाकी मिठाई अफेक्ट ना मिल रहा हमको।
1: अच्छा बाकी रहता हूँ उधार, जहिया भेट हो तहिया खा ले।
0: ठीक है,
1: अब फोन पे तो नहीं दे सका।
0: ना ना बोल सही बात,
1: जहिया गोपाल का जाए तहिया दे दे पार्टी। ठीक
0: है, ठीक है संजय, ठीक है, बहुत बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद सोना कॉल के लिए।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87894 18744।
11: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: नमस्कार मैम
13: जी। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
12: धनेश कुमार मिश्रा, दिल्ली से।
13: जी कैसे हैं धनेश जी?
12: आज आवाज बदली बदली लग रहा है, कौन बोल रहे हैं आप?
13: जैसा हम नहीं पहचान पाए वैसे ही समझिए।
12: अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। आज आवाज बदली बदली लग रहा है ना। चलिए, और सब?
13: सब बढ़िया है।
12: आज मौका मिल गया?
13: हाँ मौका मिल गया, आज से बात कर ले, ज्यादा दिन हो गया।
12: मैं भी याद किया था ना।
13: हाँ हाँ
12: मैं भी आज याद किया था कि आज आप ही आ जाओ, थोड़ी बात हो जाए।
13: हाँ बोलते हैं ना, याद करो सच्चे दिल से तो वो हो जाता है।
12: हाँ जिस दिन, हाँ ये तो माना हुआ बात है, जिस दिन याद किए हैं जिस दिन आप मिले हैं, ऐसी बात नहीं है।
13: आप दिल से याद करते हैं इसीलिए।
12: हाँ हाँ उस दिन भी याद किया था तो मिले थे, आज भी याद किए हैं तो मिल ही गए,
13: ये तो और भी अच्छी बात हो गई।
12: तो आज बारिश थोड़ी हो रहा है कि नहीं?
13: आज बारिश नहीं हुआ, आज तो धूप निकला हुआ है काफी कड़ाके वाली।
12: तो धूप निकला हुआ है तो उधर से बारिश खत्म करके इधर भेजना चाहिए, इधर मर रहे हैं हम गर्मी में।
13: हम तो भेज दिए हैं, हो सकता है कि रास्ते में हो।
12: मैं थोड़ी बहुत आई थी, बुंदा बूंदी तो रात में आई थी। मैं सोचा कि सोनी मैम बोल रहे थे कि भेज रही हूँ इधर से, तो भेज दिए लेकिन हुआ ही नहीं।
13: अब उधर जाते जाते रास्ते में जाते जाते खत्म हो गया होगा पानी, बादल का सारा।
12: खत्म हो गया होगा, दूर पड़ता है ना।
13: दूर भी तो है काफी।
12: चलिए आप सब ठीक है?
13: जी जी सब बढ़िया है। तो बता दीजिए गाना कौन सा सुना दें?
12: आप सुना दीजिए बबीता सागर के ही, लेकर अच्छे में गिलवा टूट जा रहा है वह सुना दीजिए।
13: अच्छा बबीता सागर क्या है?
12: हाँ
13: ओके,
12: ये सुनाना है आपको और भारती जी को। हाँ और जितने हमारे नाम से जानने वाले हैं सारे सुन लेंगे।
13: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना,
12: प्ले कीजिए।
13: ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल
14: कीजिए।

0: सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, नाम बता दीजिए।
0: मैं अहमद अली सरयाबाद नंबर 1 से, आप कौन
1: हैं? सोनी बात कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंडिया में।
0: आपसे बात करके बहुत दिन हो गया मैम, टाइम नहीं मिलता, ऐसा जगह काम कर रहे हैं सर, नेटवर्क नहीं लगा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है।
1: नेटवर्क आजकल बहुत इशू कर रहा है,
0: तो ऐसा अंदर काम है ना मैम, तो भी नहीं सुन पा रहे हैं, बहुत अभी दिन भर दिन नहीं लगता है, तो भी नहीं सुन पा रहे हैं, क्या करें?
1: कोई नहीं, जब समय काम भी जरूरी है, काम
0: सबसे जरूरी है मैम, काम से ही सब है।
1: काम बिल्कुल जरूरी है, काम पहले काम, फिर उसके बाद कुछ भी है।
0: अच्छे है ना?
1: जी जी बिल्कुल बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम लोग तो अच्छे हैं। कितना दिन हो गया जो आइए, करीब कितना 5 दिन तो सो नहीं सुन रहा हूँ आपका।
1: कोई नहीं, काम पहले निपटा लीजिए, फिर सो आराम से एकदम बिंदास सुनिएगा।
0: फोन करने के लिए काम छोड़ के बाहर निकले थे।
1: तो कौन सा गाना सुनवा दे आज आपको?
0: आज हमको गाना सुनवाइए तारे की बाहो में मूवी है, उसका गाना सुनवाइए, कितना सुकून है, कितना आराम है, पाप में
1: जी, और सुनवाना भी है।
0: हाँ सुनवाना तो है, सबसे पहले तो आपको सुनवाना है और भारती मैम को, अक्री को और चंद्रान भाई को और दिलीप भाई को, राजेश जी को और जो भी रेडियो यहाँ से भी सुन रहे हैं अक्री को।
1: चलिए ठीक है, फिर बात होगी।
0: ठीक है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल किया।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
6: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
13: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
5: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
14: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करें 8570-32042 पे।
15: पिक इट अप। Now pick your phone up.
16: Hello.
15: Pick it up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up.
16: Hello.
17: So phone. एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
18: हेलो
19: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
18: नमस्कार। नमस्कार सोनी जी। नमस्कार
19: जी। नमस्कार, क्या हाल चाल
18: जी? मैं यूट्यूबर से बता रही थी, पप्पू यादव।
19: कैसे हैं पप्पू जी?
18: बहुत बढ़िया, आपसे काफी दिनों बात हुई। और क्या हाल है?
19: सब बढ़िया एकदम।
18: बारिश हो रही है आपकी तरफ?
19: कल हुई थी,
18: आज नहीं हुई है।
19: नहीं, आज तो मौसम गर्मी वाला है, एकदम धूप निकला हुआ है।
18: ओहो, हमारी तरफ तो अभी 6 बजे से काफी बारिश हुई है।
19: इधर से बारिश अब आप लोगों की तरफ चली गई है।
18: आपने भेजी, बढ़िया।
19: कल काफी बारिश हुई है यहाँ, दिन भर पूरा दिन बारिश हुआ है। कल 9 बजे
18: तो बढ़िया है, पहले आपने फर्स्ट बाजी मार दी है।
19: नहीं, इससे पहले कहीं हो रही थी बारिश, तो हम बोले थे कि वहाँ से भेजी है, तो हमें बात हुई थी।
18: अच्छा
19: फिर कल यहाँ हुआ तो कल बाकी लिस्टनर लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम बोले ठीक है। तो आज कहीं दूसरे जगह हो रही है बारिश।
18: चलिए आप प्रार्थना करवा लिया करेंगे जब भी एड्रेस हुआ करेंगे, बारिश दिक्कत हुआ करेगी।
19: बिल्कुल प्रार्थना तो कर ही रहे थे कि बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश बहुत जरूरी था, बारिश होना
18: बहुत जरूरी, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, फेल हो गए
19: और फसल के लिए भी जरूरी था।
18: बहुत जरूरी है क्योंकि धान वगैरह गाड़ जाएंगे ना, ये
19: हम लोग को तो गर्मी लग रहा है, तो हम लोग बहुत सारे उपाय है कर लेंगे, लेकिन फसल के लिए कोई उपाय नहीं है।
18: बिल्कुल आप तो एसी में बैठे
19: हैं, तो अभी जब तक ऑन एयर है एसी में रहते हैं,
18: जब तक ऑफ एयर होते तो थोड़ा बाहर हो जाते हैं,
19: बाहर हो जाते हैं एसी से,
18: फिर ठंड रहते हैं
19: एसी में, तो ठंड लगता है।
18: हाँ सही बात है, एसी में कितना टेम्परेचर हो जाता है? माइनस
19: में नहीं रखते हम लोग, नॉर्मल रखते हैं, फिर माइनस में रखने के बाद पता चला बाहर निकलने के बाद बीमार हो जाएगा आदमी ना, सरद गर्म हो जाएगा।
18: ये बात तो सही है, दिसंबर का आनंद लेना है तो माइनस करो।
19: हाँ तो दिसंबर का आनंद नहीं लेते हैं, बस नॉर्मल रखते हैं कि गर्मी का पता ना चले।
18: बिल्कुल सही बात है, या तो 20 रखो या फिर 24 रखो।
19: हाँ वैसे ही रहता है, 20 से 24 के अंदर रहता है, उससे नीचे नहीं आता।
18: सही बात है। और अब अपने स्टाफ कितने आ गए? अब नए आ गए हैं,
19: नहीं अभी है स्टाफ है, तो अभी तो रिकॉर्डिंग भारती जी ही करती थी, आज सोचे काफी दिन बाद चलो आज हम करते हैं, एक घंटे देखते हैं।
18: अच्छा भारती जी से मेरी बात हुई थी,
19: तो ज्यादातर वही बात करती हैं आजकल रिकॉर्डिंग।
18: तो आज लाइव शो करेंगे,
19: आज भी करेंगे।
18: अच्छा बढ़िया बात है, अभी गर्मी भी रिकॉर्ड बहुत तोड़ गया था, एसी वगैरह सब फेल हो गए है ना, शॉर्ट बहुत हो गए थे एसी, तब ज्यादा दिक्कत होती है आउटरों में, उनमें बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं वो।
19: हाँ वो सब हीट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो स्थिति ठीक है अभी। तो गाना कौन सा सुना दे?
18: गाना आज मेरे ना है, मैं 18 वर्ष की हो गई, मैं क्या करूँ, मेरी चुंदरी लंबी हो गई, हल्का आदमी छोंगे या कुलदीप नारायण जी, ये सॉन्ग सुनना है।
19: बड़ा ही गाना डेडिकेट भी करिएगा किसी को।
18: बिल्कुल स्पेशली आपके लिए डेडिकेट रहेगा, फिर आपसे काफी दिनों में बात हुई है, अभी सोता काफी बात कर रहे थे, बहुत बिगी जा रहा था, बहुत मुश्किल से कॉल लगा है,
19: बजने के बाद सभी लग जाते हैं कि मेरा कॉल लग जाए, मेरा कॉल लग जाए।
18: अब वो लोग ट्राई कर रहे होंगे, आपके पास तो बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे,
19: बहुत सारे तो वेटिंग बंद करके रखते हैं क्योंकि परेशानी होती है रिकॉर्डिंग करने में।
18: हाँ ये बात है।
19: हाँ तो बंद रहता है, जैसे ही कॉल करता है तुरंत दूसरा कॉल आ जाता है।
18: हाँ वो तो तुरंत ही, वो तो लग बाई चांस है। और घर परिवार में आपकी सब ठीक है?
19: जी जी सब कोई बढ़िया है,
18: बढ़िया ही होना चाहिए।
19: तो बात बहुत हुई, फिर बात होगी।
18: बिल्कुल
19: जी, और भी लिसनर है वो लोग परेशान हो रहेंगे।
18: हाँ बिल्कुल, स्पेशली आपके लिए डेडिकेट रहेगा, और हमारे जितने श्रोता सुना लाइव सुनेंगे उनके लिए, सबके लिए डेडिकेट रहेगा।
19: ओके चलिए, तो प्ले करेगा ना?
18: जी
19: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो माय चॉइस में कॉल।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
10: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। आप सुन रहे हैं अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM और मैं हूँ आपके अपने रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। उम्मीद है कि गीतों का ये सुरीला सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर और जानते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन है, कहां से जुड़े हैं और कौन सा गीत उन्होंने अपनी पसंद के रूप में चुना है। तो आइए सुनते हैं अगली फरमाइश हेलो माई चॉइस में, सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
11: हेलो मैम, सलाम, नमस्कार।
12: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है।
11: 90.4 FM है।
12: जी मैम कैसे हैं?
11: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
12: हम मास्टर जटा सोनी में बोल रहे हैं।
11: जी जी
12: मैम, अभी कॉल कट गया, रिंग हुआ पूरा।
11: नहीं इधर तो कॉल आया ही नहीं है।
12: नहीं मैम, रिंग हुआ था लेकिन कट गया ऑटोमेटिक।
11: हो सकता है नेटवर्क इशू होगा, इधर कॉल नहीं पहुँचा है क्योंकि अभी दो कॉल हम रिकॉर्ड किए, आपका तीसरा कॉल है।
12: जी मैम, हम बहुत ज्यादा कोशिश में थे कि पहला कॉल लग जाए, सोनी मैम से बात हो जाए।
11: चलिए पहला नहीं, खैर लेकिन बात तो मेरे से हो गया।
12: मैम तो कितना नंबर पे हैं हम?
11: तीसरे नंबर पे हैं आप।
12: जी ये बताने के लिए धन्यवाद।
11: जी
12: सब बढ़िया मैम, नाश्ता पानी हो गया?
11: हाँ जी खाना हो गया है।
12: और भी अच्छा है ये बात। जी मैम आप तो बहुत अकेले मतलब दोनों शो करती हैं?
11: नहीं दोनों नहीं करते, अभी तो भारती जी आ गई हैं तो हेलो माय चॉइस शो कर लेती हैं। आज सोचे काफी दिन हो गया है तो मैं बात कर लूं।
12: मैम भोजपुरी एक्टर बहुत ज्यादा अच्छे से चलाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर संडे को टाइम निकाल कर जुड़ते हैं।
11: जी जी धन्यवाद, क्या आप टाइम निकाल के जुड़ते हैं हमारे शो से?
12: जी मैम बस आपका शो अच्छा चलता है इसलिए आपको पूरा नाम बोल रहे हैं।
11: जी जी
12: जी मैम, तो मुझे गाना सुनना था।
11: जी बिल्कुल बताइए कौन सा गाना सुना दे आपको?
12: सबसे अलग एक गाना सुनना है जो सबको पसंद आएगा, शीशे का था दिल, ऐसा ही कुछ है ना गाना,
11: पत्थर का जमाना था।
12: हाँ ऐसा ही कुछ गाना है, बहुत पहले सुने थे, आपको भी सुना दे हम भी सुन ले।
11: काफी बढ़िया गाने की फरमाइश है और काफी दिन बाद फरमाइश पहुँचा है इस गाने की।
12: मैम तो ले कीजिएगा पूरा फुल सॉन्ग।
11: ओके फुल सॉन्ग प्ले करेंगे।
12: मैम तो कब तक बज जाएगा? जाते जाते बता रही
11: हूँ 5 से 7 के बीच में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, हेलो माय चॉइस में कॉल।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो दोस्तों अब वक्त हो चला है आज के हेलो माई चॉइस से विदा लेने का। आपकी फरमाइशों और प्यार ने इस महफिल को और भी खास बना दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसी के साथ दीजिए मुझे यानी आरजे सोनी को जाने की इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, लेकर आएंगे आपकी पसंद के और भी खूबसूरत गीत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए अपने जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना

0: एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, सुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाय, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 9097160602।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 97714861464।
9: Excuse me boss, you have a text message।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू शो SMS फरमाइश के साथ समय 9:26 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो आप पुराने गाने का फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप नए गाने का फरमाइश करें और अपने गाने के लेकर इंतज़ार करें और आपके गाने प्ले ना हो और आप सुन ना पाएँ और कार्यक्रम की समाप्ति भी हो जाए, तो आप डायरेक्ट पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और हम बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरा करेंगे। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, समीर आलम जंगलिया से और सॉन्ग सुनना है और गाने का बोल देते हैं दिल ले गया परदेसी। डेडिकेट इरफान भाई, कमरान भाई और ग़ुलाम हुसैन, अहमद अली, साहिल भाई और दिलीप भाई, सूफिया वसीम, शगुफा करीम, रूबीना नाज, सफाक शाहजहाँ और हिना हजरा, अनामका गुड़िया, सविता ब्यूटी, शबनम जरीन और शबनम सिद्दीकी, नीतू रोशनी, सबीना, सबा आशा, निशा, तब्बू और सजदा, संतरा और आपको। तो चलिए सबकी आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल कर ले, फिर आपके गाने प्ले करते हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप और मैं आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ तो बिल्कुल बहुत बढ़िया और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ आप भी। और इस मैसेज को करते हैं रोहित जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो रेडियो रिमझिम, नमस्कार सभी दोस्तों को और सोनू भाई आपको भी, और मैं राजेश प्रसाद सूरत से और आपको सुन रहा हूँ। बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज

आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्ते, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करते हैं शगीर अंसारी जी फ्रॉम तेजपुर आसाम से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि छोड़ दिया उसने हमें किसी और का वास्ता देकर, हम खुद ही तड़पते हैं हम अपने ही आंसू का रास्ता देखकर। हेलो सर, नमस्कार, मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करते हैं सुजीत जी। तो सुजीत जी, आप भी बने रहे हमारे साथ, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, मैं प्रियंका और गांव एक डनवा से, और गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल हम शमीर आलम के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने।

काफी प्यारा गाना सुन रहे हैं हम सभी रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचते जा रहे हैं, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि हाय हेलो रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम, मैं एमपी महमूद केरला से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने का फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। थैंक यू सो मच सर, आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि गुड इवनिंग सर, हरिकेश कुमार गौतम जी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, क्या चाहूँ रब से तुम्हें पाने के बाद, किसका करूँ इंतज़ार तेरे आने के बाद, क्यों मोहब्बत में जान लुटा देते हैं लोग, मैंने भी यह जाना इस करने के बाद। सुनो भाई नमस्कार, सगीर अंसारी जी की सुपर सॉन्ग, हम भी जुड़ गए हैं। दिलीप राम जी, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। और सगीर अंसारी जी के गाने नहीं सुन रहे थे अभी हम सभी, समीर जी के गाने सुन रहे थे, और सगीर अंसारी जी भी जुड़े हुए हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं। यहाँ पे रोहित जी की और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। गाने का बोल दिया गया है, साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा। तो चलिए आपके गाने हम प्ले करते हैं, रोहित जी सुनते हैं आपको पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझिम 94.4 एफएम पे।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं

0: मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लवराज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: Excuse me, boss. You have a text message.
3: थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमछिम 94.4 FM पे। सोशल ला SMS फरमाइश का, और काफ़ी प्यारा गाना सुन रहे थे हम सभी ब्रेक से पहले, और इस गाने के फरमाइश करने वाले थे रोहित जी। और यहाँ पे मैसेज करते हैं और लिखते हैं कि सुनो भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और आपको धन्यवाद है रेडियो एमछिम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइश यहाँ पे करते हैं हमारे श्रोतागण राजेश प्रसाद जी सूरत से, और गाने के फरमाइश करते हैं धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। ये गाना सबसे पहले लिखे हुए आपको और सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ सुनना चाहता हूँ। हमारे मैडम जी भी हैं, तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं, और हमें लगता है कि उन्हीं के उपरांत इस गाने के फरमाइश किया गया है। चलिए, अच्छी गाने हैं, सुनते हैं आपके पसंद के गाने। हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे एंजॉय करते हैं।

रेडियो 94 एफएम सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और आगे ही मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई गाना बजाने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए राजेश जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है अगले गाने की फरमाइश और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे करते हैं सुजीत जी और इनके तरफ से गाने की फरमाइश किया गया है तेरा शहर छोड़ जाऊँगा। प्रेमनगर बस्तरा राजा लालगंज मिर्जापुर से मैसेज किए हुए हैं, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे कुछ और भी मैसेज पहुँचे हुए हैं, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है लिखा गया है कि हाँ भैया हमको गाना सुनना है, मैं बुलेट चौधरी तीन भेड़िया से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर नमस्ते, मैं संदीप प्रजापति बंदीपुर जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, और मुझे एक सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हैं, गाने प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली गाने की फरमाइश।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें।

0: और एक ही छत के नीचे ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, मॉड्यूलर ओटी, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9779-714-86164।

छोड़ा सबरी हो गया खत्म और ब्रेक बात ना, आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे। और यहाँ पे आगे मैसेज और अगली गाने की फरमाइश, अगली गाने की फरमाइश यहाँ पे हम पूरी करते हैं। और इस गाने की फरमाइश करते हैं एमपी से महमूद केरला, एमपी महमूद केरला से, और कहते हैं कि मेरा भी एक गाने का फरमाइश है और बॉर्डर फिल्म का गाना है संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि जितना प्यार है आपसे उससे और ज़्यादा पाने को जी चाहता है, जाने वो कौन सी खूबी है आप में कि हर रिश्ता आपसे बनाने को जी चाहता है। सुनो भाई नमस्कार, और मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, सुपर सॉन्ग दिलीप राम जी मैसेज करते हैं। आगे मैसेज अभी टाइप कर रहे हैं तो बिल्कुल टाइप करते रहे, और फिलहाल हम गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगले पसंद, अगले श्रोतागण की पसंद के गाने बॉर्डर फिल्म से संदेश से आते हैं।

हम सभी आधे से ज़्यादा सुन चुके हैं और आधे बाकी हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और कहा जा रहा है कि मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। चलिए आपकी सॉन्ग सुनाते हैं और इस मैसेज को करती हैं प्रियंका गांव एक डेढ़वा से, और इन्होंने गाने की फरमाइश करती हैं चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, और गदर टू मूवी से इस गाने की फरमाइश कर रही हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आपसे कहेंगे कि आप थोड़ा ध्यान देंगे कि आगे इससे भी पुराने गाने का फरमाइश करने की प्रयास करेंगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय मैं भी हूँ, मेरा भी वेलकम कीजिए। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबीना खातून श्यामपुर से जुड़ी हैं, ब्रदर हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि शुक्रिया सुनो भाई प्ले करने के लिए सॉन्ग। तो चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए, आप भी बन रहे हमारे साथ। फिलहाल आगे भी गाने एंजॉय करने हैं तो सुना जाए अगली फरमाइश चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं।

0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम,
7: सुनो दिल से।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956 97 644।
10: चांदनी

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे।

0: बेफिक्र और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166264498 पे।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।

माई से जो है भारती जी ही प्ले करेंगी, मैं बस इनके साथ बैठी हूँ और इनको ऑब्जर्व करूँगी। और फिलहाल आप सब मैसेज करिए, शो से जुड़िए। शो से जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 9857288291 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम, पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं, या फिर कॉल करिए हमें 7277165696 पे। जो भी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हैं उनके लिए कॉल का माध्यम है और आप कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। फिलहाल बिना देरी की आज के शो की आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत से गाने के साथ। जब तक आपकी मैसेज आती है तब तक एंजॉय करते हैं इस गाने को। और बताइए मेरी आवाज़ आप सभी के पास पहुंच रही है कि नहीं, और ऐप कैसा चल रहा है ज़रूर बताइए। और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और बता दें कि आज मेरे साथ ऑन एयर भारती जी भी हैं और आप सभी की फरमाई से भारती जी भी प्ले करने वाली और ज़्यादा वही करने वाली। फिलहाल बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में, जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज हैं। मनीष राग हैं फाजिल नगर से, बहुत बहुत स्वागत है। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ चुके हैं और नाम मेंशन नहीं है, नाम ज़रूर बताइए। लिख रहे हैं कि सोनी जी हम भी जुड़ गए, हमारा भी हाजिर लगा दीजिए। रंजन जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हाजिरी की बात है तो बिल्कुल लग चुकी है। और यहाँ मैसेज है और लिख रहे हैं कि हाय भारती जी, सोनी जी नमस्कार, इरशाद मास्टर आपके कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है इरशाद जी आपका भी। और यहाँ दिनेश मिश्रा जी हैं, लिख रहे हैं कि मैं दिनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। सोनी जी, सोनी मैम आपको बहुत बहुत शुक्रिया भारती मैम को मौका दिए, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करते हैं शो में। और बिल्कुल मौका तो मिलना चाहिए सभी को, और ये मैं नहीं दी हूँ मौका, मेरे हाथ में तो बिल्कुल नहीं है। और आगे यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हरे कृष्णा नमस्कार, गुड्डू कुमार जुड़ चुके हैं सऊदी अरब से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और गाने की फरमाइश है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ मैसेज है, विशाल जुड़ चुके हैं देवरिया से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, फरमाइश है, बिल्कुल प्ले करेंगे। और यहाँ डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी हैं जय छपरा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, लिख रहे हैं कि आज मुझे भी गाना सुनना है, तुझे आज़ाद कर दिया मैंने अपने दिल से, बिल्कुल फरमाइश है, प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति रिदास जी हैं लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से, लिख रहे हैं कि मैं भी जुड़ चुकी हूँ, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और आगे यहाँ अनिल जी हैं छोटपुर से, लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सोनी जी एंड मोस्ट वेलकम भारती जी, और वॉइस योर चॉइस में आज तो ब्लास्ट हो जाएगा। ओहो, और देखते हैं ब्लास्ट होता है कि क्या होता है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी, अनिल जी है छोटपुर से। और यहाँ और भी सारे मैसेज है, लिख रहे हैं मेरे तरफ से सभी श्रोताओं को जुम्मा मुबारक बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोल दिया। सगीर आलम अंसारी हैं तेजपुर आसाम से और लिख रहे हैं कि मेरी तरफ से, जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और आगे यहाँ आरजे अमन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, फरमाइश है, बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्ते सोनी जी और साथ में दिव्या जी, आप दोनों का निजाबू दीजिए सऊदी अरब से, नमस्कार आप दोनों को, एक साथ प्रोग्राम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होगा। चलिए ठीक है, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है भारती जी को। और यहाँ विमल कुमारी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और भी कई सारे मैसेज हैं, इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ भी काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। मेहताब सिद्दीकी हैं, धर्मेंद्र तिवारी है, एक और इश्मी है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम को। फिलहाल आज की पहली फरमाइश हम प्ले करने जा रहे हैं, वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है देवरिया से, चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।

0: केसरिया तेरा, ये वाला सॉन्ग सुनना है मैम।
1: ओके, यही वाला सॉन्ग सुनना है। विशाल जी, हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं। एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे, काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश अरिजीत सिंह की आवाज में। एंजॉय करिए आप सभी विशाल जी के फरमाइश पे ये खूबसूरत सा गाना रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश थी केसरिया, और गाने की फरमाइश करने वाले थे विशाल जी देवरिया से, और इनकी तरफ से मैसेज है लिख रहे हैं कि ओहो सॉन्ग डेडिकेट है स्पेशल वन के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगली फरमाइश की तरफ हम बढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ कुछ मैसेज है, दीनानाथ यादव हैं कुवैत से, बहुत बहुत स्वागत है। प्रमुख जी जुड़ चुके हैं लुधियाना पंजाब से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून प्यारी उद्घोषक महोदय जी और रेडियो रिमझिम सुनने वाले मस्त श्रोताओं बंधुओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी प्रमुख जी। और आगे यहाँ और भी कुछ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी हाजिर लगा दीजिए। पाजी यूपी चौहान से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बिल्कुल हाजिरी लग चुकी है। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैं सुनील साहू मधुसूदन जिला गुना मध्य से, और सुनील जी और भारती जी को प्यार भरा नमस्कार सुनील साहू जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश जो यहाँ है हमारे पास वो प्ले करने वाली है भारती जी। तो चलिए भारती जी लेते हैं अगली फरमाइश को, किसका लीजिएगा।
1: तो यहाँ अगली फरमाइश लेने जा रहे हैं हम आरजे अमन जी का, तो उनके तरफ से गाना है अगर दिल कहे कि, और सॉन्ग को प्ले करते हैं, सभी सुनते रहिए।
0: तो चलिए अगली फरमाइश हम एंजॉय करते हैं आरजे अमन जी की तरफ से फरमाइश है, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है अगर दिल कहे। तो एंजॉय करिए इनकी पसंद के गाना रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश हमारे पास पहुंची थी आज अमन जी की तरफ से, और इनकी तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, लिख रहे हैं कि बस अब एक हाँ का इंतजार है, रात ही हुई गुजर जाएगी, अब तो बस उलझन है साथ मेरी नींद कहाँ जाएगी कहाँ आएगी, सुबह की किरण ना जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी, क्या बात है। और है कुछ कह नहीं सकते इसके लिए। और आगे यहाँ और भी सारा मैसेज है, लिख रहे हैं कि अब आप चली जाएंगी क्या, बिल्कुल नहीं, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। और भारती जी आई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं जाने वाले हैं, जब वो है तो सोचे कि वो भी लाइफ में आए, जैसे मैं हेलो माई चॉइस में कभी कभी चली जाती हूँ। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्कार जी प्रणाम, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ और हम आगल बनी हमरो हाजिर लगा दी, बिल्कुल राहुल हाजिर लग चुकल बाटे। और आगे यहाँ एक अगला मैसेज है, और मैसेज है भारती जी के लिए, तो मैं चाहूँगी कि यही मैसेज शामिल करें। और
1: भारती जी आपको भोजपुरी बोलना आता है क्या? अगर भोजपुरी बोलना आता है तो थोड़ा सा बोलिए ना प्लीज। जी बिल्कुल आवेला, कहे ना आवेला, हम भी भोजपुरी बोले नहीं।
0: और ये मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि भारती जी को मौका दीजिए मैम पढ़ने के लिए, बिल्कुल दे रहे हैं भारती जी को भी मौका। और अगली फरमाइश प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले समय है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर आप सभी की फरमाइशों के साथ।
2: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज, CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर, कॉल 9170856587।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है
1: योर वॉइस योर चॉइस में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली फरमाइश की तरफ, व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि मेरा गाना भी सुनवा दीजिए सोनी जी और भारती जी। बिल्कुल, और आज गाना सारा भारती जी प्ले करने वाली है, तो मैं तो नहीं सुनवा सकती, भारती जी के हाथों में है कि ये किनका गाना आज प्ले करने वाली है और सुनवाने वाली हैं। फिलहाल यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा बोलती हैं भोजपुरी प्रमुख जी हैं लुधियाना पंजाब से, चलिए अच्छा लगा। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं मैडम जी, हमको भी गाना सुनना है। और बारिश वाला दिनेश लाल यादव निरहुआ की आवाज़ में चार महीना, अच्छा, और सुनवा दीजिए। बालाघाट से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल आपकी फरमाइश है। और आपकी फरमाइश जो है हम बुधवार को प्ले किए थे तो अभी नहीं हो सकता है, अगली फरमाइश एक सप्ताह बाद ही प्ले कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश जो पहुँचा हुआ है हमारे पास कॉल के माध्यम से है, तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार दीदी
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में
2: जी। नमस्कार, जुड़ी बहुत अच्छा लगा था और भारती मैम भी भोजपुरी बहुत अच्छा बोला था।
1: चलिए रहुआ सबे के साथ ऐसे ही रहो कि भारती जी भी कर पाए रहुआ सबे के साथ, क्योंकि नया नया बानी तभी थोड़ा सा दिक्कत हुई रहुआ लोनी के समझे में।
2: कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा भी
1: तो सपोर्ट कर लो इन्हीं हो के। बिल्कुल जी,
2: बहुत अच्छा बोला था नहीं भी सब, और हेलो एती का हेलो फरमाइश भी अच्छा करा था नहीं, इन्हें कोनो दिक्कत नहीं है।
1: तो अपन नाम बता दी, अपन परिचय दे दी
2: जी। हम पप्पू कुमार साहब बोला था नहीं, पढ़ा रहा बढ़ारिया से
1: जी। जी, तब का हाल चाल बा
2: मैम? रहुआ से कुछ शिकायत था, हम नाम बोला था नहीं तो रहुआ ठाकुर जोड़ देता नहीं।
1: ना ना, ठाकुर रहुआ के ना जोड़नी है, एक जानी पप्पू ठाकुर व्हाट्सएप मैसेज पे भी जुड़े नहीं। अब सोनू कुमार के नाम से चार जनी भालो, तो जगह के नाम से बोले के पड़े ना, तो फिर पता ना चली कि कौन सोनू कुमार है।
2: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, तो एक जानी पप्पू ठाकुर जुड़े नहीं, वहाँ के बोलने हम रुआ के ना बोलने। सब बढ़िया बात है।
2: अच्छा, तो मैं मेरे गाना सुना दे।
1: बिल्कुल बता दी, कौन गाना सुने के
2: लिए जोड़ी मैंने अच्छा लगा था यही तरह गाना बा। आँखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत से क्या चीज होती है यार, यही गाना सुना दीजिए।
1: जी बिल्कुल, प्ले कर लेंगे।
2: कैसा रहेगा सभी श्रोताओं को और आपको भी?
1: जी जी बिल्कुल
2: जी, थोड़ा गुनगुनाइएगा मैडम लोग।
1: ओके, पूरी कोशिश है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, गाना प्ले कर दिए, एंजॉय करिए।
2: थैंक यू मैम,
1: वेलकम।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे पप्पू जी की फरमाइश थी पड़ाना बढ़रिया से और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश, आंखों में नींद ना दिल में करार। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, उससे पहले यहाँ काफ़ी सारे हमारे पास पहुँचा हुआ है मैसेज और मैसेज है, लिख रहे हैं कि ये गाना सुन के मुझे उस सखा की याद आ गई जो इस चैनल से गायब हो चुकी है। ओहो, और पता नहीं अब कभी जुड़ पाएंगी या नहीं, बहुत दुख भरा गाना है ये। और मैसेज के साथ है प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से, और मुझे लगता है कि शायद मैं उस सखा को आपकी जानती हूँ, और अगर बात होती है तो मैं ज़रूर बोलूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और यहाँ राम कुमार पांडे जी हैं लंदन से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। नौशाद अली जी मोतिहारी जिला से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लिख रहे हैं कि सोनी जी और भारती जी आप दोनों का मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है जी, और साथ में प्रोग्राम चलाने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। काश ऐसे ही हर रोज़ चलता और आप दोनों एक साथ प्रोग्राम सुनते, बहुत मज़ा आता। और रिमझिम अधिकारी से गुजारिश करूँगा कि इस दोनों को एक साथ प्रोग्राम करने की कृपा करें, कराने की कृपा करें। ओहो, और मैसेज के साथ है मोतिहारी जिला से नौशाद अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आगे एक और यहाँ मैसेज है गाने की फरमाइश के साथ, रंजन कुमार जी जुड़ चुके हैं तमको ही रोड कुशनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरमाइश से प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो आदि गुड आफ्टरनून, मैं संदीप प्रजापति और बंदीपुर से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और फरमाइश से बिल्कुल प्ले करने की कोशिश है। और यहाँ एक और मैसेज है, और सनी जी जुड़ चुके हैं फ्रॉम सिवान से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है उनकी तरफ से, और लिख रहे हैं कि आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आगे एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि निरहुआ हिंदुस्तानी का कोई भी गाना प्ले कर दीजिए, बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि देख के बाद मेरा नंबर ला दीजिए, बिल्कुल आपकी बारी आते ही हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। बीमर कुमारी जी हैं थावे से, बहुत बहुत स्वागत है। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है।

0: और यहाँ लिख रहे हैं कि साथ अगर दोगे मुस्कुराएंगे जरूर, प्यार अगर दिल से करोगे तो निभाएंगे जरूर, राह में कितने कांटे क्यों ना हो, आवाज़ अगर दिल से दोगे तो आएंगे जरूर। और मनीष जी, आपकी यानी कि फरमाइश जो है हम कल ही प्ले किए थे और अगली फरमाइश एक सप्ताह बाद पूरा होती है, आपको पता है। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी आज हमसे नाराज़ हैं क्या? बिल्कुल नाराज़ नहीं है, अजय जी हैं अयोध्या से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या तुम्हें पता है ये गुलशन मेरे दिल भर आने वाले हैं गाने की फरमाइश के साथ हैं। तो पूरी कोशिश है आपकी फरमाइश जो है हम प्ले करें। फिलहाल यहाँ आगे बढ़ेंगे और अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो है मेरे पास, जा तुझे आज़ाद किया मैंने अपने दिल से, और गाने की फरमाइश के साथ है डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी, जय छपरा कुशनगर उत्तर प्रदेश से। तो इन्जॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।
1: तो आने का बहाना भी तो खत्म हो जाएगा।
2: कैसा बहाना बे? बढ़िया।

0: देखो यार, बार बार निकला क्या, देख रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है, बताओ
1: कर रहा है।

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: ठक ठक
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62 112 पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और फिर से हाजिर है आप सभी के बीच। और यहाँ मैसेज है काफ़ी सारे पहुँचे हुए हैं और डॉक्टर अमित कुशवाहा जी की तरफ से लिख रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मैम गाना बजाने के लिए। मनीष जी लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब पूरे गम में नहीं उनको प्रेम रोग लग गया है, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब का गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून और मुस्तफ़ा जुड़ चुके हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि प्रमुख भैया को प्रणाम बोल दीजिएगा और उनके बिछे हुए साथी जो उन्हें बहुत याद आ रहे हैं वो जल्दी से मिल जाए, नहीं यही कामना है और इसी बात पे अर्ज किया है। और लिख रहे हैं कि इसी बात पे अर्ज किया है, रातें बीत रही है मगर सपने कहाँ हैं, तू मेरे ख्वाबों में है अभी बसा फिर दिल कहाँ है। क्या बात है। और मैसेज के साथ है अनिल जी छोटपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी लाजवाब लाइन है आपकी तरफ से। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि गाना बाजी, विशाल पांडे गोपालगंज से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बिल्कुल काहे नहीं बजेगा गाना और अगर फरमाइश है तो भेज दीजिए। और यहाँ आगे और भी मैसेज है लिख रहे हैं कि गाने का बोल है दिल दुखा के गया। और सुनील कुमार है, सुनील कुशवाहा जी हैं मैहर एमपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गाने की फरमाइश है, बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। फिलहाल यहाँ हम अगली फरमाइश प्ले करेंगे जो हमारे पास पहुँचा हुआ है और अगली फरमाइश भारती जी प्ले करने वाली है। तो चलिए भारती जी अगली फरमाइश लेते हैं।
1: तो यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है हमारे पास विमल कुमारी जी का, तो चलिए प्ले करते हैं इनका सॉन्ग
0: 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। तो एंजॉय करिए विमल जी अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।

90.4 रेडियो रमजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश 16 वर्ष की बाली उम्र को सलाम और फरमाइश करने वाली हैं बिमल जी थावे से, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश से फिलहाल बढ़ेंगे आगे। यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ तक काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं और मुस्तफ़ा जी है काफ़ी इंजॉय किए गाने को। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि अनिल भाई और मत रुलाइए, उसकी याद मत दिलाइए। और प्रमुख सिंह लुधियाना पंजाब से इस मैसेज के साथ एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब के लिए शायरी भेजा हूँ, पढ़कर सुना दीजिए। बिल्कुल और मैसेज है लिख रहे हैं कि नज़र मिले तो प्यार हो जाता है, नजरें मिले तो प्यार हो जाता है, पलके उठे तो इजहार हो जाता है। ना जाने क्या कशिश है चाहत में कि कोई अनजान भी हमारी ज़िंदगी का हकदार हो जाता है। ओहो क्या बात है, और काफ़ी खूबसूरत लाइन। और मनीष राग जी हैं फाजिल नगर कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से, एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि भारती मैम को मेरा नमस्कार है, गुडू कुमार हैं जुड़े हुए हैं रामदेह लद्दाख से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैडम जी रिकॉर्डिंग भेजें। बिल्कुल भेज सकते हैं, फरमाइश से एक सप्ताह हो चुका है तो अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। पाजी यूपी चौवन से है, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, हम भी जुड़ गए हैं और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका बाल कुमार साहनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नेपाल से जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार जी जुड़ चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। गणेश कुमार जी हैं पिपरा नारायण से लिख रहे हैं कहाल बदी, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, और यहाँ संजय देवी जी जुड़ चुके हैं महादेव से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इंस्टाग्राम से जो कि प्ले करने वाली हैं भारती जी, तो चलिए भारती जी लेते हैं अगली फरमाइश को।

0: अरे ये बोल उधर जाके हंस रही है, बोल रही है कि नहीं होगा। तो अगली फरमाइश हमारे पास है इंस्टाग्राम पे धर्मेंद्र तिवारी जी की तरफ से, और इनको सुनना है करीना पांडे की आवाज़ में गाना। तो चलिए प्ले कर रहे हैं आपकी फरमाइश से पहले आपके पसंद का गाना तोहरा ला केहू जियला करीना पांडे की आवाज़ में। एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर
1: अपन मन की बात।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में।
6: तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की तरफ और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करेंगे, और यहाँ मैसेज है काफी सारे हमारे पास पहुंचे हुए हैं। और मैसेज लिख रहे हैं, हेलो मैम नमस्ते, मैं यूपी 44 सुल्तानपुर से और मेरा नाम शत्रुघ्न गुप्ता है, और मुझे भी गाना सुनना है जिसकी फरमाइश मैं भेज रहा हूँ, और आपके तरफ से दो गाने की फरमाइश है, तो कौन सा प्ले करना है बिल्कुल बताइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, नाम मेंशन नहीं है तो नाम पता ज़रूर मेंशन करिए आप कौन है कहाँ से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। और पप्पू ठाकुर है काटिया से, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पप्पू जी, और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपना नाम पता ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि अब साथ में हमारे भारती जी भी हैं तो उनको पता चलना चाहिए कि आप लोग आखिर जुड़ कहाँ से रहे हैं और कौन है और कहाँ से। तो नाम पता साथ में मैसेज के ज़रूर मेंशन किया करिए जब भी आप लोग मैसेज करिए। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते प्रणाम सुनी जी कैसी हैं, और भारती जी आप कैसी हैं, मैं रोहित देहरादून से और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका
5: जी। जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं।
6: और यहाँ भारती जी तो बिल्कुल बढ़िया है, यहाँ मुस्तफ़ा जी की तरफ से भी फरमाइश पहुँच चुका है, शामिल करेंगे आपकी भी फरमाइश को, थोड़ा वेट करिए। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मैडम जी रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकते हैं क्यों नहीं। और मैसेज करने वाले हैं गुड्डू कुमार जी जो कि जुड़े हुए हैं लेह लद्दाख के, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी एक बार फिर से। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश है कॉल के माध्यम से, तो चलिए भारती जी बात करिए और गाने की फरमाइश को प्ले करिए।
7: हेलो
5: हेलो
7: नमस्ते
5: नमस्ते जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
7: तो खूब बढ़िया, हवा बहुत है।
5: हवा तो बहुत है।
7: बस्ती सोने जी भाभी जी मैंने बहुत ही अच्छा लगा था।
5: अच्छा जी,
7: तो गाना सुना दी
5: बता दे गाना
7: बीए का पकड़ा।
5: अच्छा जी
7: हाँ,
6: और क्या चराव था जी बीए करके बकरी, क्या चराव था बकरी, बकरी चराव तब हम नहीं देखत के हुके
7: यह
6: बात सही बाटे
7: हमनी के बारे में बिहार में जाते हैं सब देखते हैं टाउन में आते हैं।
6: तो चलिए और गाना प्ले कर दे बनी।
7: नमस्ते
6: जी नमस्ते,
5: बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रिम जो मैं कॉल किए।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, गाने की फरमाइश थी रामाजी प्रसाद की तरफ से थावे से। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि और लिख रहे हैं कि हम पहली बार भारती जो को सुन रहे हैं और हमारे तरफ से उनको नमस्कार बोलिएगा। बिल्कुल बोल दिए हैं
1: जी, बिल्कुल आपको भी मेरा नमस्कार।
0: और मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपके। और फरमाइश है, बिल्कुल आपकी फरमाइश नेक्स्ट रहेगी। और यहाँ आगे मैसेज है, लिख रहे हैं कि सिस्टर सॉन्ग प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। और मैसेज करने वाले हैं संदीप प्रजापति जी, बंदीपुर जिला से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ा वेट करिए, आपकी बारी आते ही हम प्ले कर रहे हैं। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि 1 वीक हो गया। जी हाँ, बिल्कुल पता है कि 1 वीक हो गया। और नाम पता जरूर मेंशन करिए आप लोग साथ में, और आप लोग पीछे का मैसेज डिलीट कर देते हैं, तो जब भी वॉइस भेजिए तो नाम पता मेंशन किया करिए। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जुग जुग जिया राउर दोनों लोग के जोड़ी बहुत ही अच्छा लागत बाटे आप दोनों जन के। अच्छा, बदगुजन, ओहो, और चलिए बढ़िया बाटे कि हमने के दोनों जन के बदगुजन अच्छा लागत अटे। और रोवा सबे के साथ ऐसे ही बकैती चलत रहो हमने के। और मैसेज करे वाला बानी राम कुमार पांडे जी लंदन से, बहुत बहुत धन्यवाद बटे। और अगला फरमाइश जो हमारा पास बाटे, विशाल पांडे जुड़ल बानी और यहाँ के सुने के बाद गाना, तो चलिए राउर गाने के फरमाइश भी प्ले कर दे बानी। और इन्जॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।
2: तुम ऐसा क्यों कर रही हो तुम, आखिर हुआ क्या है?
3: आखिर मैं तुमसे प्यार क्यों करूं? तुम्हारे पास न गाड़ी है, न बंगला है, न पैसे हैं, किसी काम के लायक भी नहीं हो तुम।
2: अरे हम तुमसे दिल से प्यार करते हैं तन्नू, और प्यार कोई जाति मजहब रुपया पर।
3: और ये मेरे होने

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर।
1: और यहाँ अगली फरमाइश से पहले मैसेज है, लिख रहे हैं कि भारती जी इसको पढ़ें, और भारती जी के लिए मैसेज है। तो चलिए भारती जी, जब आपके लिए है तो मैं क्या ही बोलूं। और मैसेज है मुस्तफ़ा जी है सऊदी से, तो चलिए भारती जी इनका मैसेज शामिल कर दीजिए आप ही।

0: बोलिए
1: टीचर, हॉस्पिटल में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? स्टूडेंट, अगर बेहोश नहीं किया और मरीज ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टर को कौन पूछेगा?
2: ये बात तो बिल्कुल सही है और ये तो राज मुझे भी नहीं पता था। और चलिए अगली फरमाइश लेते हैं। और अगली फरमाइश किनका प्ले किया जाए, बताइए, करिए अगली फरमाइश भारती जी, आप ही। और चलिए अगली फरमाइश हम ही लेते हैं। उससे पहले यहाँ कुछ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरे दिल में तेरे लिए प्यार आज भी है, मेरे दिल में तेरे लिए प्यार आज भी है, माना कि तुझे मेरी मोहब्बत पे शक आज भी है, ना में बैठकर जो धोए थे हाथ तूने, पूरे तालाब में फैली मेहंदी की महक आज भी है। ओहो, और क्या बात है। और मैसेज के साथ है मनीष जी, और लिखते हैं कि विशाल जी की फरमाइश लाजवाब है, विशाल जी को मेरे ओर से धन्यवाद बोलिएगा। बिल्कुल बोल दिए हैं, आपकी ओर से धन्यवाद। और जी हाँ बिल्कुल। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि वक्त ने फंसाया लेकिन परेशान नहीं हूँ, वक्त ने फंसाया लेकिन परेशान नहीं हूँ, हालात से हार जाऊँ मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। और मनीष मिजाजी यादव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जदा वैशाली से और गाने की फरमाइश है, दिल क्या करे साहब। तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्रे करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ आगे मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा गाना प्ले कर दीजिए हमारा। बिल्कुल एक एक करके सबकी गाने की फरमाइश प्ले कर रहे हैं। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा गाना चल रहा है मैम, और हम भी जुड़ चुके हैं और बिल्कुल आपका भी गाना चलाएंगे। फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे। मुस्तफ़ा जी जुड़े हुए हैं सऊदी से और इनकी तरफ से फरमाइश है, तो चलिए आपकी फरमाइश जो है प्ले कर दिए। नशा छोड़बा कि ना, एंजॉय करें अपने गाने को रेडियो रिमझिम पर।

और यहाँ निजामुद्दीन जी है सऊदी अरब से लिख रहे हैं कि सोनी जी गाना तो बहुत ही अच्छा बज रहा बा, लेकिन भारती जी उसके साथ गुनगुना देती तो, और मैसेज भी पढ़े तो अच्छा है। जी हाँ, भारती जी भी पढ़ ही रही हैं मैसेज, और थोड़ी सी फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा ये दिक्कत कर जा रही है, और आप लोग नाम पता मेंशन नहीं कर रहे हैं जिससे ये कंफ्यूज हो जा रही है। और मुझे तो पता है मैसेज देख के कि आप कौन है कहाँ से, रोज़ रोज़ पढ़ पढ़ के मैं पहचान चुकी हूँ, लेकिन इनके लिए थोड़ी सी परेशानी है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सभी जब भी मैसेज करिए अपने साथ में नाम पता ज़रूर मेंशन किया करिए, ताकि इनको परेशानी नहीं हो मैसेज शामिल करने में आप सभी की।

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे फरमाइश था मुस्तफा जी का, काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश। और यहाँ समर जिंस जी जुड़ चुके हैं जामों से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि क्या फनी सॉन्ग चल रहा है और बी करके बकरी चलाओ था जी हाँ। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि ओके जी हाँ बिल्कुल, आप लोग नाम पता साथ में मेंशन किया करिए। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि अगर आपका शो फेसबुक लाइव पर दिखता तो और मज़ा आ जाता, तो इसके लिए आपको संदेश मिला मैं मैसेज करिए, हो सकता है वहाँ से आपकी बातों पे गौर किया जाए और इस बात पे भी ध्यान दिया जाए। मैसेज करने वाले हैं मुस्तफ़ा जी सऊदी से। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिए बिल्कुल। और यहाँ आगे मैसेज है, लिख रहे हैं कि चलते चलते राहों में उनसे मुलाकात हुई, चलते चलते राहों में उनसे मुलाकात हुई, वो कुछ सरमाई फिर सहम सी गई, दिल तो हमारा भी किया कि कह दे उनसे अपने दिल की बात, पर कमबख्त इस दिल की इतनी हिम्मत ना हुई हो। खैर दिल की नहीं हुई, आपकी होनी चाहिए थी कहने के लिए। और आगे यहाँ मैसेज है जो कि भारती जी शामिल करने

0: लिए। तो चलिए भारती जी,
1: दोस्त शादी के बाद जिंदगी कैसी है? पति, पहले लगता था जिंदगी में कुछ कमी है, अब लगता है जिंदगी की जिंदगी ही कम है।
0: क्या बात है। और मैसेज के साथ है दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से, और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज है। तेजपुर आसाम से है सगीर आलम अंसारी जी, बिल्कुल आपकी फरमाइश नेक्स्ट है। फिलहाल यहाँ फरमाइश है हमारे पास मध्य प्रदेश से, और फरमाइश प्ले करिए भारती जी।
1: तो यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है सुनील कुशवाहा जी का MP से,
0: और गाना है दिल दुखा के गया। तो एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

पहुंच चुका है, लिख रहे हैं कि दिल से धन्यवाद, थोड़ा आप भी गुनगुना देते तो बहुत अच्छा लगता रेडियो रिमसिम में। और सुनील कुशवाहा जी हमैया रेमपी से, तो बिल्कुल गुनगुना देते लेकिन आपकी ये जो गाना है वो AI वर्जन है और AI वर्जन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, सुने नहीं है इसलिए दिक्कत होता है। फिलहाल इंजॉय करिए और सुनते रहिए।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
6: ठक ठक।
7: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
8: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए व्हाट्सएप मैसेज की तरफ अपना रुख करते हैं। तो यहाँ मैसेज आया है, कैप मोबाइल गोंडा यूपी गाना सुनाना है। भारती जी, आप मेरा पैसे शामिल करिए और आप ही अपने पसंद का गाना प्ले कर दीजिए। तो
1: और यहाँ कैफ मोबाइल जी हैं गोंडा यूपी से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और लिख रहे हैं कि भारती जी आप मेरे मैसेज को शामिल करिए और आप ही अपने पसंद का गाना प्ले कर दीजिए। बिल्कुल, और भारती जी प्ले कर देंगी। और आगे लिखते हैं कि कोई भी गाना, हिंदी भोजपुरी, और मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपके गाने की पसंद हो। बिल्कुल, आप भारती जी के गाने की पसंद जानना चाहते हैं, प्ले करेंगे। फिलहाल थोड़ा वेट करिए क्योंकि गाना सोचने में समय लगता है। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने पर जो मेंटली प्रॉब्लम होता है वही भारती जी के साथ हो रहा है अभी। और बट कोई बात नहीं, बी केयरफुल, फॉलो टू सोनी जी। जी हाँ बिल्कुल। और लिख रहे हैं कि डरने की क्या बात है जब सोनी जी साथ हैं। बिल्कुल, डरने की कोई बात नहीं है, और सोनी जी ही नहीं बाकी सारे श्रोता भी भारती जी के साथ है। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है और करिश्मा कुमारी जुड़ चुकी हैं पिपरा नारायण से। बहुत बहुत स्वागत है, लिखे का हाल बा दी। बिल्कुल बढ़िया बा, अपने के बताई कि कैसन बानी और फरमाइश बा, तो बिल्कुल प्ले करे के कोशिश बा। कौन गाना के फरमाइश, यहाँ तो चार पांच गाना के नाम लिख के भेज दिल बनते, एगो नाम कोनो गाना के क्लियर करी, हम जरूर प्ले करें और गाना के फरमाइश। फिलहाल अगला फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है जम्मू से जुड़े हुए हैं दीपक जी, और इनको सुनना है गाना वीर जरा से जानम देख लो मिट गई दुनिया। तो इंजॉय करिए इस खूबसूरत से गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 90.4 सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, दीपक जी की फरमाइश थी जम्मू से और इनकी तरफ से मैसेज लिख रहे हैं थैंक यू, और आप थोड़ा गुनगुना दीजिए बीच बीच में। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज पहुँचे हुए लिख रहे हैं कि सोनी जी भारती जी नमस्कार, मैं नंद कुमार शर्मा सिंगलौरी मध्य प्रदेश से, और गाने की फरमाइश है जीने की तमन्ना है तुम मेरी ज़रूरत हो धन्यवाद, और इस गाने के साथ है बहुत बहुत स्वागत है आपका, और लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और दीपक जी हैं, और आगे एक और यहाँ मैसेज है और इस गाने को काफ़ी इंजॉय किया है मुस्तफ़ा जी हैं, और लिख रहे हैं कि आप आए तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, तो बताइए भारती जी।
1: मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी आप सबके बीच जुड़ी हुई हूँ।
0: और मैसेज है कैफ मोबाइल गोंडा यूपी की तरफ से, और अगली फरमाइश है यहाँ लिख रहे हैं कि मैडम जी बहुत देर हो गया है वेट करते करते, बिल्कुल देर हो चुका है और अब आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, फिलहाल यहाँ अगली फरमाइश हम लेंगे, हमारे पास कॉल पहुँचा हुआ है तो बात करेंगे, देखते हैं कौन है कहाँ से और फरमाइश क्या है गाने की।
2: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: कैसी है?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: बढ़िया है, क्या हो रहा है?
1: बस आप सबसे बातें हो रही हैं।
2: अच्छा, और सब बढ़िया है?
1: जी जी बिल्कुल।
2: खाना मैं खा ली है?
1: हाँ हाँ हमने खा लिया, आपने खा लिया क्या?
2: हाँ जी।
0: देखिए बोल रही हैं कि खा ली है, सो कर रही हैं और खाना खा ली है।
2: आपकी आवाज बहुत क्यूट है दीदी।
1: धन्यवाद।
2: बोल रही हूँ आपकी आवाज बहुत क्यूट है।
1: जी जी बिल्कुल, धन्यवाद।
0: अपना परिचय भी दे दीजिए श्रोताओं को।
2: बोल रहे हैं शिल्पी कुमारी, गाना रखुआ।
0: अच्छा अच्छा, तो कौन सा गाना सुनवा दिया जाए शिल्पी जी?
2: मेरे दी से बात कर लीजिए दी।
0: अच्छा अच्छा बिल्कुल करवाइए।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्ते दी, राधे राधे आप दोनों को मेरी तरफ से।
0: ओ नमस्ते राधे राधे, कहाँ थी इतने दिनों से, क्या हाल है बताइए।
2: बिल्कुल मस्त है, और आपको सुनकर तो और मस्त है, और मैं पटरी लग गई।
0: जी जी मुझे भी आपको सुन के बहुत खुशी हुई दिल से सच में।
2: और जो आपने गाना सुनाया था ना, जो आंखों में नींद न दिल में करार, बड़ा मीठ लगल है जी।
0: हाँ मीठ लगल है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, और बता दी गाना कौन सुनवाई, और फिलहाल हम तो पहचाना था नहीं भारती जी साथ में बानी, तो नाम पता अपन जरूर बता दी भारती जी के, और बाकी श्रोता लोग भी जान जाओ।
2: जी जी जी, और पता है सोनी दी, भारती दीदी से बात भाई ना हुआ से, तो आज वो ऑलरेडी हमारे पहचाना तो कम, बाकी बिना देरी किए हम नाम बता देता नहीं। हमारा नाम रानी कुमारी, हमारे घर है।
0: जी जी, तो कौन गाना सुने के बाद रानी जी बता दी?
2: अरे आज सोनी गा रहा है तो सोचे तनी पूरे धमाल मचा लो, ताजी ये गाना बजा दी लो, कि तनी देखल गरी हमारा के काजी। हाय हाय बोल दिए।
0: बिल्कुल
2: गुनगुनात रही, और रेडियो में तो सबसे जबरदस्त गाना बाजल है, और का बोले जा खाली से जो कॉल कहनी है दिए का बकरी चराव था, तो 100% बात सही बा दीदी, हम यो के चारा में इकले नहीं सकता, अक्सर चीजिए लौके और उन्हें के गाना बड़ा जबरदस्त रहला।
0: चलिए अच्छा बात, और गाना भी प्ले कर दे बनी, तनी देखल करी हमारा के कम जी। जी जी बिल्कुल, देखल भले कम करी लेकिन सुनल पूरा करी, ठीक बा।
2: बिल्कुल शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सो में कॉल करनी, और हमेशा जुड़त रही।
2: जी जी, और गाना सब कोई के सब आ रहे बा, और खास करके न्यूज़ के सुना दी तनी जोर तोर से।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सो में कॉल करनी, एंजॉय करिए अपन गाने के।
2: जी बाय दी।
0: जी

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे।
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: ST ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए ST ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
10: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
10: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
11: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
12: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
11: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और 2:06 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, देखते देखते 2 घंटा निकल गया और पता भी नहीं चला। फरमाइशों की बात करें तो काफ़ी सारी फरमाइशें हमारे पास पहुंची हुई है और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहन की चॉइस अच्छी है, शुक्रिया है इस बहन को जिसने ये गाना सुनवाया। और मैसेज के साथ है नाम है इनका जम्मू से दीपक राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे एक और यहाँ मैसेज है और कैफ मोबाइल गोंडा यूपी से लिख रहे हैं कि हमें लगा यह लग रहा है कि ये भूल गई है कि हमें रेडियो रिमझिम में फ़ोन लगाए, हमको लग रहा है कि किसी रिश्तेदार के पास फ़ोन लगाए हैं। और फरमाइश तो बहुत झकास है और हमारा गाना भी प्ले कर दीजिए भारती जी। जी हाँ बिल्कुल, आपकी गाने की भी फरमाइश जो है नेक्स्ट है और इन्होंने आपकी गाने की फरमाइश जो है सोच रखा है कि क्या प्ले करना है। और कैफ मोबाइल गोंडा यूपी से हैं, लिख रहे हैं कि आप, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे अपना, और अगली फरमाइश जो हमारे पास है भारती जी प्ले करिए।

0: तो अगली फरमाइश है यहाँ यूपी 44 सुल्तानपुर से, जिनका नाम है शत्रुघ्न गुप्ता।
1: और चलिए शत्रुघ्न गुप्ता जी की तरफ से फरमाइश पहुंची है, पिया बिहारिया इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 104 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश हमारे पास पहुंची थी सुल्तानपुर 44 से और शत्रुघ्न गुप्ता जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी गाना सुनाने के लिए। और आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि देखिए एक गाना प्ले करने में आपको कितना टाइम लग रहा है और आप सोच रहे हैं कि कौन सा गाना प्ले करें। बिल्कुल समय नहीं लग रहा है, गाना सोच चुकी है, लेकिन यहाँ बहुत सारे फरमाइश थे जो पहले से, तो सोचे पहले उसे शामिल कर दें। और यहाँ आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि वाह रामा जी भैया रहुआ एकदम यूनिक आदमी है, रघुआ के गीत के फरमाइश खातिर 100 रुपये के सलाम बटे हो, 100 तोपों की सलामी और गर्दा उड़ा देनी रघुआ और तनी बारिश करा देती तो और मज़ा आ जाए। और मैसेज करने वाले अनिल जी छोटपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे यहाँ और मैसेज है, शामिल करेंगे लेकिन उससे पहले समय की कमी है, तो चलिए बिना देरी की अगली फरमाइश प्ले कर रहे हैं। और अगली फरमाइश है, यहाँ कैफ मोबाइल यूपी गोंडा से पहुँचा हुआ है और इनको सुनना है भारती जी के पसंद का। तो भारती जी गाना कौन सा सुनवा रही हैं बताइए।
1: गाने के बोल हैं दिल तेरा आशिक।
0: ओहो काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश, तो एंजॉय करिए आप अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि पता चल गया आपको भी तड़कता भड़कता गाना अच्छा लगता है, बहुत ही जबरदस्त गाना। और कैफ मोबाइल गोंडा यूपी की तरफ से एक और यहाँ मैसेज है।

मैसेज लिख रहे कि ओह मैम, और पाजी यूपी चौहान से है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ मैसेज है, और ये मैसेज हम शामिल करेंगे दोपहर समाचार के बाद। रोहित जी हैं देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। एंजॉय करिए रेडियो 90.4 FM को। फिलहाल गाना चल रहा है कैफ मोबाइल गोंडा यूपी से, उनकी फरमाइश है।

0: बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: बोलो बाबा अमरनाथ की जय। बाबा अमरनाथ बम बम।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
2: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
6: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
7: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
8: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
9: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
10: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
9: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
11: आज ही संपर्क करें 7388894700 या
13: 9198869793।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 2:46 हो चुके स्टूडियो घड़ी में और 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ और हमारे साथ भारती जी भी है। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98-527-88-291 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ, या फिर कॉल करिए 72-77-16-65-96 पे, या फिर रेडियो रिमझिम इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं। और यहाँ बढ़ेंगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ और काफ़ी सारे मैसेज हैं हमारे पास और मैसेज ये लिख रहे हैं कि नमस्ते संजय यादव जी दुबई से जुड़ चुके हैं, क्या हाल है मैम? बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करिश्मा कुमार जी हैं, लिख रहे हैं कि मेरा बारी नहीं आएगा। बिल्कुल आपकी बारी आएगी और आपका गाना भी जरूर प्ले होगा। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सुनी जी गुड आफ्टरनून, और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? और मैसेज के साथ है दुर्गेश कुमार जी आजमगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आप सभी से पहले भी बोली हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि आज मेरे साथ कार्यक्रम में भारती जी भी हैं साथ देने के लिए, तो आप लोग मैसेज करिए तो साथ में अपना नाम पता जरूर मेंशन करिए। मुझे पता है लेकिन भारती जी को नहीं पता है, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि आप कौन है कहाँ से, क्योंकि उनको मैसेज शामिल करने में परेशानी हो रही है। तो आप नाम पता जरूर मेंशन करिए। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हेलो जी नमस्ते राधे राधे, और कल मेरा गाना नहीं बजा था, आज प्लीज़ बजा दीजिए गाना और मैं तेरे शहर छोड़ जाऊँगा। अनामिका चौधरी है लालगंज मिर्ज़ापुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मेरा फरमाइश कब बजेगा? 12:42 का फरमाइश है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ अगली फरमाइश प्ले करेंगे, उससे पहले यहाँ और फरमाया मैसेज लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग सोनी जी, इरशाद मास्टर जी हैं धनाव से। और एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि फरमाइश मेरी है पर पसंद भारती जी का है। जी हाँ बिल्कुल, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश थी दिल तेरा आशिक। और आगे यहाँ एक और मैसेज है और मैसेज के साथ है संजय जी कर्नाटक से बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुकी है और गाने की फरमाइश तो नहीं है। और लिख रहे हैं कि चाहने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, चाहने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती, पाना तो सब चाहते हैं सब कुछ मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत साथ नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल, और काफ़ी खूबसूरत फरमाइश। और साथ में इनके हैं संजय, सोनू, शिवराज, रत्नेश, अफजल, सोनू, अभिषेक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो में, बने रहिए साथ में। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे और अगली फरमाइश जो हमारे पास है, और यहाँ अभी अभी दस्तक दिया है नईम जी है जामतरा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका और वॉइस के माध्यम से। तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। और कॉल आप लोग बिल्कुल नहीं करिए, व्हाट्सएप कॉल करना है तो कॉल के लिए नंबर है 72-77-16-65-96 पर कॉल करिए, लेकिन व्हाट्सएप कॉल नहीं करिए। फिलहाल यहाँ वॉइस प्ले कर रहे हैं, सुन रहे हैं कौन सी गाने की फरमाइश है हमारे पास। विजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, इनकी फरमाइश पहुँची है हमारे पास।
1: हेलो मैम सोनी जी नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनौल नरहट नवादा से बोल रहा हूँ, आपके प्रोग्राम सुन रहा हूँ मैम। और हम साइकिल के दुकान किए हुए हैं, साइकिल बना रहे हैं, इधर बगल में समोसा भी बन रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। मुझे एक गाना सुना दीजिए, बहकी बहेला पुरवैया संग संग हम हूँ बहेला, ये भोजपुरी सॉन्ग है, बजा दीजिएगा मैम, अच्छा लगता है। सभी दोस्तों को भी सुनाना चाहता हूँ, जितना भी सुनने वाले सब लोग हैं सभी को। धन्यवाद मैम जी।

और यहाँ संजय यादव जी हैं दुबई से, लिख रहे हैं कि अच्छा गाना बाबा मैम जी, हाँ काफी खूबसूरत गाना। और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ, लिख रहे हैं कि मैडम जी फोन बंद बता रहा है।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश थी विजय कुमार जी थे और इनकी तरफ से, और लिख रहे हैं कि वेरी गुड मैडम जी, गाना सुन रहे हैं हम। और नवादा से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है, नईम अंसारी जी है जाम तारा से। तो नईम जी, हम आपको बता दें कि आपके गाने की फरमाइश जो है हम बुधवार को प्ले किए थे और अभी एक सप्ताह नहीं हुआ है। और यहाँ तारकेश्वर माझी जी जुड़ चुके हैं दुबई से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लिखते हैं कि देखते ही देखते गुजर गया ये साल भी, फिर भी ना जाने क्यों तुझसे मिलने की आस है, और ये इश्क मोहब्बत की बातें मेरे सामने ना किया कर मेरे दोस्त, मैं करके देखा है ये सब बकवास है। और मैसेज के साथ है तारकेश्वर माझी जी दुबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं भी हूँ बिल्कुल। और सुनीता जुड़ चुकी है, अब लिख रहे हैं कि ये गाना डेडिकेट है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सुनीता को फ्रॉम मुंबई से, और अपना नाम ज़रूर बताइए कि आप कौन हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पप्पू ठाकुर जी हैं, बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, फिलहाल बने रही है हमारे साथ। और यहाँ अगली फरमाइश जो हम प्ले करेंगे हमारे पास पहुँचा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है और बहुत देर से इंतजार कर रही है और बोल रही हैं कि बजा दीदी प्लीज़। तो बिल्कुल गाना प्ले कर ले रही, राहुल कृष्णा जी इंजॉय करिए अपन गाना के। और गाना बटे हमको, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे। तो चलिए प्ले कर दे वाणी, एंजॉय करिए अपन गाना के।
1: हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे।
0: और बस करिए अब प्लीज, ज्यादा बोली मत, अपन गाना एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सो

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी काफी खूबसूरत गाने की फरमाइश हमारे पास पहुंची है पिपरा नारायण से करिश्मा कुमारी जी की तरफ से और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज भी पहुंच चुका है, तो चलिए सुनते हैं वॉइस मैसेज को। और
1: थैंक यू दीदी मेरे गीत प्ले करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। लेकिन मेरे भैया का गीत क्यों नहीं बजा रहे हैं, जल्दी बजा दीजिए दीदी।
0: जी बिल्कुल, आपके भैया का भी गाना बजाएंगे। और आगे यहाँ और सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि क्या कोई गलती हुआ है आपसे। बिल्कुल गलती नहीं हुआ है, और यहाँ नई मंसारी है जामतार से लिख रहे हैं कि क्या गाती हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ और भी मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्ते सोनी जी, हम भी जुड़ गए हैं और कल मेरा फरमाइश किए थे, गाना चला नहीं था क्योंकि हमें कोई बिल्कुल नहीं, किसी से कोई गलती नहीं हुई है। काफ़ी सारी फरमाइश रहती है और किसी न किसी का तो बचेगा ही, और फरमाइश छूट जाने का मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई गलती हुई है। और साधु राय जी है छपरा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ संजय यादव जी हैं, लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम। और यहाँ प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून वंस अगेन एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज है, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमसे दूर जाओगे कैसे, हमसे दूर जाओगे कैसे, दिल से हमें भुलाओगे कैसे, हम वो खुशबू है जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे। और काफ़ी खूबसूरत लाइन पाजी ओपी चौहान से है। और आगे लिखते हैं कि दिल ने जिसको अपना कहा उससे बढ़कर कोई नहीं, दिल ने जिसे अपना कहा उससे बढ़कर कोई नहीं, आप साथ हो तो सब अपना है वरना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। हो भी कहाँ से लाते हैं इतने गहरी गहरी शायरियाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। और मैसेज करने वाले हैं संदीप जी। और एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि ओके भारती जी के लिए है, तो भारती जी शामिल करिए।
2: चिंटू भाई जल्दी उठ, भूकंप आ रहा है और सारा घर हिल रहा है। पप्पू सो जा भाई, घर गिरेगा तो हमें क्या, हम तो किराएदार हैं।
0: और ये लाइन पहुँचाने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंच रहा है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है कहां से और गाने की फरमाइश क्या है। भारती जी
3: हेलो।
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम।
3: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
4: बहुत बहुत स्वागत है, क्या हो रहा है मैडम, सब ठीक ठाक है मैडम?
3: जी जी सब ठीक, आप अपना बताइए।
4: हाँ सब ठीक है मैडम, और बताइए खाना पीना हो गया सर?
3: जी जी अभी खा के आए हैं।
4: अच्छा, जब समाचार खोलने के बाद जो मिलता है टाइम से खाते हैं ना?
3: हाँ हाँ,
4: टाइम भी बहुत कम रहता है ना आप लोगों के पास।
3: जी
4: फास्ट होना पड़ता है आपको।
3: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
4: एक गाना है मैडम, अल्लाह करम करना लिल्लाह करम करना पर बढ़ते।
0: आप दूसरे गाने की फरमाइश कर दीजिए।
4: जी मैडम,
0: बोल रहे हैं कि आप दूसरे गाने की फरमाइश कर दीजिए, ये गाना हम नहीं प्ले कर पाएंगे इस शो में।
4: ये गाना क्या हुआ मैडम, ये सस्ती ठीक है मैडम?
0: ये धार्मिक गाना है, इसके लिए
4: जी
0: बोल रहे हैं ये धार्मिक गाना है। आप कोई भी ऐसे हिंदी गाने हैं, भोजपुरी गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं, आप प्ले करवा सकते हैं उससे फरमाइश कर सकते हैं। ये क्या गाना क्या था, एक बार फिर से बताइए गाना क्या था?
4: अल्लाह करम करना लिल्लाह करम करना देखत पे रहम करना परवरदिगार ए आलम।
0: जी जी
4: ये सलम पे भूखा है। ये तो आप सुनाना चाहते हैं, आप लोग हैं और देखने वाले तमाम।
0: चलिए तो प्ले कर दिए गाना आपका।
4: ठीक है मैडम
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के, एंजॉय करिए गाने को।

0: ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड।

और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है
1: 90.4 FM रेडियो रंजिम में, और यहाँ बढ़ेंगे आगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, और काफी सारे हमारे पास मैसेज है और अभी मैसेज शामिल करेंगी भारती जी। चलिए,
0: आप ही बोल दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है।
1: ओके, चलिए, तो यहाँ अगला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है। रोहित जी हैं देहरादून से, लिख रहे हैं कि पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक ही है, कब जंग छेड़ दे किसी को नहीं पता, और हस्बैंड और हिंदुस्तान की शाम एक ही है, कब तक सहेगी किसी को नहीं पता। बात तो बिल्कुल सही है, और इतनी भी सही नहीं है, कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। और आगे यहाँ और भी मैसेज है। अनिल कुमार जी जुड़ चुके हैं दरभंगा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि वो तो था एक गुजरा हुआ ज़माना, जब हर कोई था रेडियो रेडियो का दीवाना, फिर से वही मधुर आवाज़ सुनाई देती है, अब आ गया है रेडियो रिमझिम का जमाना। और इरशाद मास्टर जी है धनाव से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम 1 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। बिल्कुल, आप लाइन में लगे हुए हैं और आपका भी बारी आने वाला है। और यहाँ विनोद कुमार चौहान जुड़ चुके हैं विलेज को, वहीं से बहुत बहुत स्वागत, लिख रहे हैं नमस्कार जी प्रणाम। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि दोपहर के बाद फिर से जुड़ चुके हैं आपसे रेडियो रिमझिम से, बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाना भी अच्छे चल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैयर एमपी से सुनील कुशवाहा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और यहाँ आगे एक और मैसेज है हमारे पास, और उमा शंकर सिंह जी जुड़ चुके हैं साथ में, इनके हैं अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह, रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं कि सोनी मैडम जी नमस्कार, और हम लोग ही आपके कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, गीत बहुत ही अच्छा चल रहा है। चलिए, आप सभी का स्वागत है। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा सनम सबसे प्यारा है सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल, आपकी फरमाइश है, और जैसा कि हम बोले हैं कि अभी आपका 1 सप्ताह नहीं हुआ है। यहाँ दिलीप राम जी जुड़ चुके हैं सिंहौरा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी दिलीप जी, और फरमाइश है प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, और एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, पहले इसे शामिल कर ले फिर बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और यहाँ अगला मैसेज है, प्रमुख सिंह लुधियाना पंजाब से, लिख रहे हैं कि आरजे सोनी जी की मधुर आवाज, भारती जी की मुस्कान है खास, दोनों जब साथ मंच सजाए, हर दिन में हर दिल में खुशियों की दीप जलाए, बातों में अपनापन, हंसी में प्यार, सुनने वाले करते हैं बार बार इंतजार, ऐसे जोड़े सदा यूं ही मुस्कुराती रहे, हर महफिल में अपनी छाप छोड़ती रहे। क्या बात है प्रमुख जी, और बहुत बहुत धन्यवाद ये लाइन पहुंचाने के लिए। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिए। बिल्कुल, आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, बहुत ही देर से इंतजार कर रहे हैं, और सुबह 12 बजे ही इनका मैसेज आया था। और चलिए गणेश जी, हम आपका फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है।
2: गुड आफ्टरनून सोनी मैम, मेरे को गाना सुना है हिंदी सॉन्ग चोरी चोरी वो मेरे पास आए, खिड़की के नीचे से यही गाना सुना है, मेरे को बजा दीजिए।

और गणेश जी, जो आपके गाने की फरमाइश थी वो सही नहीं था और स्टेज शो का गाना था, इसलिए वो गाना नहीं प्ले किया। फिलहाल इसी गाने को एंजॉय करिए रेडियो 90.4 FM पर।

0: रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का, और अभी गाना सुन रहे थे गणेश कुमार थे पिपरा नारायण से। और बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ बिना देरी किए, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है। और पप्पू ठाकुर जी है बगही बाजार गोपालगंज से, तो प्ले करते हैं इनकी वॉइस को और सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: नमस्कार, सुनिए मैं पप्पू ठाकुर खटिया जिला गोपालगंज से जुड़ चुका हूँ आपके शो में, और आपके शो के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आज एक सप्ताह हो गया है मेरे फरमाइश को। सो आज मेरा एक फरमाइश है, जरूर सुनाइएगा, और गाने का बोल है, मैं एक लाइन दो लाइन गा के सुना दे रहा हूँ। घुंघरू की तरह बधता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बधता ही रहा हूँ मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी

0: कभी टूट टूट के और मिट मिट के बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। तो ये मेरा फरमाइश है, जरूर पूरा करिएगा। नमस्कार
1: जी। हाँ बिल्कुल, काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश आपकी तरफ से, और आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, और पप्पू ठाकुर जी जुड़े हुए हैं कटिया से, तो एंजॉय करिए अपने गाने को, और किशोर कुमार की आवाज़ में काफ़ी खूबसूरत गाना, आप सभी भी एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर।

0: तो यहाँ पप्पू ठाकुर जी की तरफ से मैसेज पहुँच चुका है और लिख रहे हैं थैंक यू सोनी जी और भारती जी गाना प्ले करने के लिए।
1: और बढ़ते हैं आप छोटे से ब्रेक की तरफ, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18744।
9: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
10: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
9: तो देर मत कीजिए,
10: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो यहाँ व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है। संदीप
1: प्रजापति जी हैं
0: जो अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हैं, और
1: यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची है इनकी तरफ से, नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। तो चलिए संदीप जी आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

90.4 रेडियो रिंसन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम सब गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश जो हमारे पास पहुंची थी संदीप प्रजापति है जो कि अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और उनकी तरफ से मैसेज पहुंच चुका है और बढ़ेंगे आगे। यहाँ लिख रहे हैं कि फिर से किसी ने उसकी याद दिला दी, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए और सैड सॉन्ग मत बजाइए प्लीज। ओहो ठीक है, जब सैड सॉन्ग आ रहा है आप अपना कान बंद कर लीजिए। और मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से, लेकिन जिसे सुनना है वो तो सुनेगा ही और मुझे तो सैड सॉन्ग काफ़ी पसंद है। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे कि भारती मैम नमस्ते, और संजय यादव हैं दुबई से, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि लो फिर आगे हम स्वागत नहीं करिएगा हमारा, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आगे यहाँ है कि लिख रहे हैं नाइस सिंगिंग, ओहो और सिंगिंग यहाँ तो भारती जी कर रही थी। और मैसेज करने वाले हैं आरजे अमन जी, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी भारती जी ये नाइंसाफ़ी हो रहा है, और किस बात के लिए नाइंसाफ़ी हो रहा है बताइए। और इरशाद मास्टर जी है धनाव से, और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए दी, और आपका भी धन्यवाद है। आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैडम जी, और सोनू जी हैं गौसिया से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं एक बार फिर से कहूँगी कि अभी जब भी आप लोग मैसेज कर रहे हैं अपना नाम पता साथ में मैंसन किया करिए, ताकि भारती जी को नाम ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। और मुझे तो खैर पता है, लेकिन आप लोग फिर से नाम पता मेंशन करिए ताकि भारती जी को परेशानी नहीं हो, इनको आप लोगों का नाम पता नहीं मिल रहा है। और आगे एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम जी, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल लगा चुके हैं आपकी हाजिरी। और लिख रहे हैं कि रोज़ मैसेज कर ला से नाराज ना होनी, बिल्कुल ना हम कहे ला नाराज होके हम रुगवा लोग रोज मैसेज करें था बिल्कुल करी, और रुगवा लोग खाते तो हम भी आए, अगर रुगवा लोग मैसेज ना करें तो फिर हम रह जी अले कोई फ़ायदा ना हो, और रुगवा लोग जुड़े नहीं तो हमरो अच्छा लगे ला। और फिलहाल यहाँ मैसेज बाटे लिखा तनी कि बारिश हो रहा बा मैडम जी, वहाँ होता कि ना तो हमने के यहाँ तो काफ़ी गर्मी बाटे और जी हमने के बारिश नहीं के होता। और मैसेज करे वाला बानी मिस्टर कुमार जी मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत स्वागत बटे एक बार फिर से। और अगला फरमाइश की तरफ बढ़े, मगर अगला फरमाइश जो हमारा पास पहुँचल बटे वो बटे सिनोरवा से, दिलीप राम जी जुड़ल बनी, और गाना सुने के बाद चली रहा और गाना भी प्ले कर दिल बनी, इन्जॉय करिए अपन गाने के, सुनत रही रेडियो रिमझिम के।

प्रमुख जी हैं, लिख रहे हैं कि इस गाने को सुन के भी उसकी याद आने लगी है। तो भाई आप ही बताइए कि हम किस टाइप का गाना बजाएं कि आपको उसकी याद ना आए, और कौन सा गाना प्ले करें आपके लिए जरूर बताइए। और यहाँ कैफ मोबाइल गोंडा से है, काफी एंजॉय कर रहे हैं गाने को। और यहाँ अमन प्रजापति जुड़ चुके हैं थावे से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-567 या 97-7-14-86-164।
2: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: गुला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 90.4 FM रेडियो रिमझिम में आपके अपने कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। 3:44 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और काफ़ी कम समय बचा हुआ है और फरमाइशों का सिलसिला जो है अभी भी जारी है और बढ़ेंगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। तो मैसेज है, लिख रहे हैं कि आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जी हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। और दुर्गेश जी है आजमगढ़ से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज है। गणेश कुमार जी हैं, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग दी। और एक और यहाँ मैसेज है, सगीर आलम अंसारी है तेजपुर आसाम से, बोल रहे हैं कि दिलीप राम जी की पसंद नीमन लागल। ओहो चलिए बढ़िया बात, अच्छा लागल। तो और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं मैम मज़ा आ गया सुनकर। और अमन प्रपति जी हैं थावे से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है, फीडबैक है, लिख रहे हैं कि दिलीप भाई का गीत सुनकर मज़ा आ गया। दिलीप भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप भाई का हाल चाल है। उमा शंकर मिश्रा जी हैं रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और आगे यहाँ मैसेज है, भारती जी
1: सोनी मैम नमस्कार। नमस्कार करना हम भूल गए थे, गाना बड़ी ही लाजवाब रहे।
0: अच्छा, और मैसेज करने वाले हैं राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका शो में। और अगली फरमाइश की तरफ रुक करेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है कॉल के माध्यम से, तो चलिए भारती जी बात करिए और गाने की फरमाइश प्ले करिए।
1: हेलो
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4
2: FM। जी सोनी जी दोनों को एक नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार बा, बहुत बहुत स्वागत बा।
2: क्या हाल चाल बा?
0: ठीक निमन बैठे।
2: अरे बहुत इंतजार करते हैं हम इतनी घड़ी जाए, अब तो जुमा रहे 2 घंटा से ही विलंब हो गई 1.5 घंटा। तो अभी वो गाना सुना दीजिए।
1: बताएं कौन सा गाना सुने?
2: हेलो
1: जी बताएं कौन सा गाना सुने?
2: डार्क डी फायर मूवी के
1: गाना के नाम बता दी।
2: गाना के बोल, परदेसिया परदेसिया, एक लबा ना इतना बता सजना मेरी कौन है तू तेरी कौन हूँ मैं।
1: जी जी
2: जी। और हमने के बहन जे नौशाद भाई बड़न महफूज भाई बड़न जे बैठल बन जाए जा खेत में मछली देखते जा आज पानी ना के तब मछली चल कर।
0: अच्छा, तो मछली पकड़े के तैयारी होता का?
2: हाँ ना रख ली बन जा जाल वो मछली के दिन में सुकरे सुकरे फंसा ली ना जाए ऊपर ही से हमने।
0: अच्छा अच्छा हाँ चलिए बढ़िया बात, तब बरसात भर मछली पकड़ी लो।
2: आई जब मोबाइल में सुनते बन जा पकड़ा हम।
0: तो गाना प्ले कर दे बनी।
2: ठीक बा, पूरा गाना सुनाए?
0: जी जी बिल्कुल। और पूरा तो ना लास्ट में काटे के पड़ी हमरा गाना का, कि गाना वो काफी लंबा बाटे।
2: 5 मिनट के 5.5 मिनट का नहीं,
0: 9 मिनट के गाना बा।
2: जी
0: जी
2: ठीक
0: ठीक, और समय कम बाटे।
2: जी ठीक
0: ठीक, तो एंजॉय करी गाना के। बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल करने।

दोनों का प्रोग्राम सुन के विवेक भारती का प्रोग्राम याद आ रहा है, सखी सहेली जैसा। और सोनी मैम और भारती मैम नमस्कार। और मैसेज करने वाले हैं विनोद कुमार जी, विलेज कोमई से बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम भारती मैम से कहिए कि एक बार हमारा भी कॉल रिसीव कर ले, कितना दिन से फोन लगाओ तनी। और मैसेज करने वाले हैं अमरजीत शुक्ला जी दुबई से, बहुत बहुत स्वागत आपका।

0: 90.4 रेडियो रमजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और अभी गाना सुन रहे हैं। गाने की फरमाइश थी इरशाद मास्टर जी की तरफ से धनाव से और बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है उससे पहले यहाँ व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे मैसेज है। संजय कुमार जी जुड़ चुके हैं कोलकाता से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि भारती मैडम जी को मेरा प्रणाम, मैं प्रणाम करता हूँ और सोनी मैडम जी को भी। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम और भारती मैम आप दोनों का आज का बकैती बहुत ही अच्छा लगा और ऐसे ही दोनों में लगे दोनों लोग लगे रहिए, बाय बाय अभी के लिए। और मैसेज करने वाले हैं धनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि कुछ लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, कसम खा के कब आपकी खुशी और हक खा जाते हैं पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही कहा आपने। और अनिल जी है छोटपुर से। और आगे यहाँ और भी सारे मैसेज है। और सगीर आलम अंसारी जी हैं तेजपुर आसाम से, एक बार मैसेज करिए, आपका मैसेज गुम हो गया, आपकी गाने की फरमाइश थी। और यहाँ गुरु नानकपुरा बठिंडा पंजाब से किशोर सबलिनिया जो जुड़ चुके हैं, सवित्री सबलिनिया है, सुमन सबलिनिया बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि बाय बाय सोनी दी, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय भारती जी। और गणेश कुमार जी हैं पिपरा नारायण से, बिल्कुल कल फिर मिलेंगे आपसे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है तेजपुर आसाम से सगीर आलम अंसारी जी की, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: तेजपुर मैं सगीर आलम अंसारी तेजपुर आसाम से गाना सुनना है सोनू निगम के आवाज़ में, एल्बम का नाम है बेवफा सनम और बोल है मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे सख्त इसका मलाल है। ये गाना सुनना है मुझे और इस गाना को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ भाई दिलीप राम, आज़ाद अंसारी, राम कुमार पांडे, बरजू बबुआ, कामरान भाई और जितने भी रेडियो रिमझिम के सुनने वाले हैं, सभी भाइयों बहनों को मेरे तरफ से ये गाना डेडिकेट है। मैं सगीर आलम अंसारी तेजपुर आसाम से, गाना सुनाने की कष्ट करें, धन्यवाद
0: जी। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है हम प्ले कर दिए, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे। और यहाँ मैसेज है अभी अभी जुड़े हुए हैं और नाम मेंशन नहीं है, नाम है इनका अनुराग पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लिख रहे हैं कि बाय बाय

0: रिहाज सगीर आलम जी की तरफ से मैसेज भी पहुंच गया धन्यवाद का और फीडबैक पहुंचा हुआ है, तो चलिए पहले फीडबैक सुनते हैं।
1: मैं सगीर आलम अंसारी तेजपुर आसाम से, गाना सुनना है सोनू निगम के आवाज में, एल्बम का नाम है बे और बोल है
0: और ये सगीर जी क्या किए हैं कि पहले वाला वॉइस ही फिर से रिपीट करके भेज दिए हैं। खैर अपना गाना एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। 3:58 हो चुकी है और यहाँ काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए, लिख रहे हैं कि बाय बाय मैडम जी, फिर मिलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और अनिल जी भी लिख रहे हैं बाय बाय। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि परदेसिया गाना इतना अच्छा, कितना मैं आपको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं आ रहा हूँ। ऐसा बात नहीं है, आप ध्यान आ रहे हैं और सभी ध्यान आ रहे हैं। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैडम जी बहुत ही बढ़िया गुड सॉन्ग और अच्छा लगा। और मैसेज कहने वाले हैं किशोर शबरिनिया जी, बिल्कुल एंजॉय करिए और आप सभी दीजिए आज के इस शो से हमें यानी आरजे सोनी और आरजे भारती जी को जाने की इजाज़त। फिर मिलेंगे आप सभी से अगले कार्यक्रम में, मैं तो नहीं लेकिन इसके बाद अगले कार्यक्रम में भारती जी आप लोगों से फिर मिलेंगी हेलो माई चॉइस में। तब तक के लिए आप सब सुनते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, दीजिए इजाज़त।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस, और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम,
8: सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं, तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
0: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 9097160602।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो 90.4 FM। सुनो।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हो। 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779714864।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
3: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
9: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
3: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
9: सुनो दिल से।

0: हमारा संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 90971602।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर हर महादेव।
6: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते,
1: क्या हाल है?
2: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
1: मेरा भी ठीक है। क्या हो गया है, सर्दी जुकाम हो गया है क्या?
2: नहीं,
1: गाना सुनना हुआ हिंदुस्तानी मूवी से उड़ जाएगी ये मैना।
2: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
1: सभी लोगों को। और बस
2: और सब ठीक है ना?
1: आप लोगों का तो आवाज तो सेम ही होते जा रहा है, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। आप उनकी सिस्टर है क्या? पेड़ पौधा भी अलग अलग होता है, इंसान भी अलग हो जाता है, आप लोग का आवाज एकदम सेम होते जा रहा है।
2: हो जाता है कभी कभी सेम।
1: हाँ वही ना, कभी कभी शो आपका जब चालू होता है ना 5 बजे, तो उस टाइम किसी से कॉल पे बात होता है तो लगता है कि आप हैं या वो हैं। हाँ, एक रेडियो तो है कि आदमी को जोड़ के रखा है, अननोन आदमी भी इतना अच्छा से बात करता है।
2: जी जी। हाँ, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM। नमस्ते।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, वालेकुम
0: अस्सलाम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: रेशमा बोल रहे हैं पठानपुर से।
0: जी कैसी हैं आप?
1: हम क्या अपना बताइए।
0: हम भी अच्छे हैं।
1: नाश्ता हो गया मैम?
0: मेरा हो गया। आपका?
1: हमारा भी हो गया। तबियत ठीक है मैम?
0: तबियत ठीक है। और बताइए,
1: कल हुआ तो खूब?
0: कल तो बारिश बहुत हुआ था।
1: पानी तो आंगना भर गया था पानी तुम्हारे।
0: कल उसकी वजह से मौसम थोड़ा ठंडा है। अच्छा है हुआ।
1: गाना सुना दीजिए मैम, रितेश पांडे के।
0: बता कौन सा गाना?
1: हमरों के याद तहरावे लेकिन आए जान।
0: अच्छा, और ये गाना किसी को सुनाना चाहिए?
1: आपको सुनवाएंगे और जितना लोग सुनता है रेडियो न्यूज सभी को।
0: जी बिल्कुल।
1: बहुत मुश्किल से फोन लगा मैं। दो हफ्ता से फोन लगे नहीं रहे। हमारा सोमवार का लगाना, शुक्रवार का, फिर आज लगा।
0: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं।
1: सुनते
0: रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: आज ही आए। डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो,
12: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
11: लालबाग बोल रहे हैं।
12: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
11: ठीक है, मैं बताइए।
12: मेरा भी ठीक है। क्या हो रहा है अभी?
11: धान रुकवा रहे हैं।
12: अच्छा जी, तो बीज तैयार हो गया है?
11: बीज तैयार हो गया, बारिश से या पानी से रुकवा रहे हैं?
12: इतना पानी लगा हुआ है।
11: हाँ, पानी लगा हुआ
12: है, ये सब तो बढ़िया है।
11: आज का फिल्म है वो कर्म।
12: और गाना कौन सा है?
11: गाना है तीन दिया है जान भी देंगे।
12: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
11: दूधी है, गुड़िया है, सूरज है, विकास है, दूरी है, रंजीत है। थोड़ा गाना लंबा है, थोड़ा गाना।
12: तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM। नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
0: आवाज पहचान रहे हैं?
2: विकास कुमार बोल रहा हूँ, हिमतापुर से।
1: अच्छा जी, हाँ हाँ पहचान गए अब।
2: और बताइए और क्या हाल चाल है मैडम?
1: मेरा तो बढ़िया, आप अपना बताइए।
2: बस बढ़िया है।
1: क्या हो रहा है अभी?
2: अभी तो कंपनी में ही काम धाम थोड़ा डाउन चल रहा है अभी।
1: क्या हो गया है?
2: आज तो मैडम आपका आपका कॉल बहुत कोशिश नहीं करना पड़ा, आज तो बहुत जल्दी लग गया।
1: टाइम भी तो देखिए, टाइम हो गया, इधर 12:18 हो रहा है।
2: अच्छा,
1: तो इधर थोड़ा कम कम कॉल आता है इसीलिए।
2: अच्छा, 11 बजे से बहुत ज्यादा आता है?
1: हाँ, 11 बजे से 12 बजे के बीच बहुत ज्यादा कॉल आते हैं, उधर बिजी रहता है, इधर थोड़ा स्लो हो जाता है।
2: बहुत बहुत बंदे लगाते हैं 11 बजे से। और बताइए मौसम उधर कैसा है गोपालगंज में?
1: मौसम ठीक ही ठाक, बारिश हुआ है।
2: अच्छा, कल का बारिश हुआ है?
1: तो आज थोड़ा मौसम ठीक है, मतलब उतना गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी है,
2: कोई 20-25 का टेम्परेचर होगा।
1: हाँ हाँ
2: इतना होगा। आज मेरे को पवन सिंह का आज भी गाना सुनवाइएगा, वो गाना नहीं है पिया दो ये जाम अपने हाथ से जाम, यही गाना।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
2: सॉन्ग रेडियो रिन्यूम का जितना सुनने वाले हैं सबको।
1: अच्छा।
2: सबसे पहले आपको।
1: जी जी चलिए ठीक है। और सब बढ़िया है ना?
2: और सब बढ़िया है जी मैडम।
1: जी जी, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: ठीक है मैडम, ओके मैडम, नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: हेलो, नमस्ते मैम।
11: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
12: कैसी हूँ
11: मैं? अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा मीना जी बोल रहे हैं पूना मोड़ से।
12: ये क्या हाल चाल है?
11: ठीक है, अपना बताइए।
12: बस मेरा भी ठीक ही है।
11: हाँ सुनना है।
12: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है?
11: गाना नहीं है, चुन्नी में।
12: हाँ हाँ है,
11: वही गाना सुनना है।
12: ठीक है, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
11: आपको लिखने बाद दोस्त सुना है उन सबको।
12: बिल्कुल, तो फिर गाना प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
0: बहुत बात कॉल लगल बा हमार।
1: का हो गइल बा?
0: कॉल लगते है बिजी बताओ तो खाली। हमारा गाना बाजे रहे है 5 बजे। आज भी गाना सुना है आदमी
1: तो बता दी कौन सा गाना सुने।
0: गाना बजा दे खेसारी लाल के कौन अपने पसंद का जो बजा रहे हैं बजा दे।
1: ना ये पड़ी तो रोवा बताई पड़ी
0: ना सुना दी।
1: वो तो बारिश होते रहे तो बारिश के साथ कहे की कौन गाना बढ़िया देख के बजा देता नहीं।
0: अच्छा बारिश तो आज हम भैल रात में धूप निकल बा बहुत चीज धूप निकल बा। अभी मौसम ठीक बा, बारिश के मौसम नहीं छे, मौसम रात के रहिए
1: अपने
0: पसंद को बजवा ले बजा दे।
1: अच्छा तो खेसारी लाल के गाना चले ठीक बा। और ये गाना क्यों कितना है?
0: बिजली महतो संतोष महतो।
1: अच्छा
0: रमेश महतो।
1: चलिए फिर ठीक बा, गाना प्ले करता नहीं सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
11: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94-512-11-001।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
14: नमस्कार
13: जी,
14: मैं सुरेश कर बोल रहा हूँ, पेरनीवा जिला देवघर झारखंड से।
13: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
14: बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं?
13: हम भी अच्छे हैं।
14: आप सुना दीजिए मैम, प्यासा सावन का गाना।
13: कौन सा सॉन्ग?
14: प्यासा सावन का है, किशोर कुमार और राधा भोसले की आवाज में है। जी के बोल हैं, और मेरी चमक छल लो, इस तरह से जीत के बोल रहे हैं।
13: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
14: जी सबसे पहले मैम आपको और रेडियो के जितने लिसनर हैं सबों को, और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, मदन कुल हैं, प्रभुक हैं, राजकुमार हैं, किसी में कुल हैं, किसी में प्रसाद यादव हैं, उन सब सारे काफी को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
13: जी जी बिल्कुल, तो चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
14: ओके मैम।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेम जी 94 एफएम में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते
1: जी, कल नंबर
0: ना तो
1: बहुत है बिजी पटो।
0: अच्छा तो कॉल आई तो केव कहीं कह सकता है, बिजी नु बताई
1: फोन करे हम बहुत गजन होता फोन जल्दी लगा।
0: अच्छा
1: तो बताए कैसन बनी, अच्छा बनी नो?
0: हाँ हम तो ठीक बने रहो, बताए रहो कैसन बनी।
1: हमने अच्छा बनी, नशा पानी हो गया ना। जितना फोन करे उतना सब हमारी फरमाइश कर लो। आज अपना मतलब सुना, आज रहो अपना मतलब सुना, हम सुना अच्छा लगते
0: है। गाना प्ले करते नहीं सुनत रही सबके साथ रेडियो रेंजन 90.4 FM।
1: जी मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करे 87894-18744।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करे 87894-18744।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, नमस्ते मैडम जी।
13: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
14: भाटी जी बोल रही क्या? भाटी जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना से।
13: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
14: बस खाना खा रहे हैं और बरसात हो रही है हमारे इधर।
13: अच्छा जी, अभी बारिश हो रही है आपके यहाँ?
14: जी जी जी।
13: चलिए तो बढ़िया है।
14: और सॉन्ग सुनना था मुझे,
13: बता दीजिए कौन सा गाना।
14: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है राम अवतार।
13: और गाना
14: गाना है तेरे बेवफाई का शिकवा करूँ तो।
13: और काम किस में डेडिकेट भी है?
14: ये सबसे पहले यहाँ को है गजराज सिंह लोधी है रेलाई से, और मांगीलाल जी कंदेल है मांगीलाल दाखल है बड़ा गाँव से, और गोपाल हो जाए ककवास से। सॉन्ग कब आएगा?
13: फर्स्ट ऑफ
14: ठीक है
13: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।
14: धन्यवाद
15: तेरी

0: हेलो
1: हेलो हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: इसके वजह से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार ग्राम प्रधान पीड़ितापरण बिहार से संजय कुमार सर।
0: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: जी, मेरा हाल खबर बढ़िया है। आप अपने आपकी रिमझिम संपूर्ण परिवार कैसी है? अभी आप संपूर्ण परिवार कैसे हैं?
0: हम सभी ठीक है।
1: चलिए, कामना करते हैं कि अच्छा गया, स्वस्थ रहिए, आप लोग खुश रहिए, हम भी खुश रहे, अपना मनोरंजन करें, आप भी मनोरंजन कराइए।
0: जी जी बिल्कुल।
1: मौसम बताइए थोड़ा कैसे है? मौसम हमारे पास तो बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: कल का बारिश हुआ है इधर, तो मौसम अभी फिलहाल ठीक है थोड़ा।
1: हमारे पास परसों बारिश हुआ था, कल का नहीं हुआ, परसों बारिश हुआ था। चलिए, कभी इधर कभी उधर बारिश होता जाएगा, कभी इधर गर्मी कभी उधर गर्मी। गर्मी के दिन आए, प्रकृति के नियम है तो चलते ही रहेगा। उसका हम लोग अपना फरमाइश में आया, पहले गाना हमारा बजा दीजिए। ऐसे करके गाना है ना, वही संस्कृत कुछ डिस्कस के आप कर सकते हैं।
0: जी,
1: मित्र लोग आप करते हैं कुछ सबसे तो पहले डिस्कस करके आपको रेडियो इंजिन संपूर्ण परिवार को और दोस्त लोग खाना समा शादी जी हमारे उत्तम कुमार जी राम लक्ष्मण खान दीपक दास ठाकरे वाले मतलब गुरु सावन गुरुगिरी राजेंद्र यादव भारती संत लाल गौतम हमारे नाम भी जाना पहचान तमाम दोस्तों विशेष करके शंकर चंद्र स्तंभ जी मोहम्मद सलाज अंसारी मजोलिया का विशेष कर दोनों को सुनाते हुए अभी विदा लेंगे। नमस्कार।
0: रेडियो रूम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।

0: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
8: जी मैम, गुड मॉर्निंग।
7: गुड मॉर्निंग,
8: मेरा नाम विजय कुमार है।
7: जी
8: मैम,
7: क्या हाल चाल है आपका?
8: ठीक है मैम। हाँ मैम,
7: क्या हो रहा है अभी?
8: अभी तो लाइट कटा हुआ है मैम, बैठे हुए हैं।
7: अच्छा,
8: गाना का फरमाइश था मैम, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं जो
7: भी। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
8: जी मैम,
7: बता दीजिए।
8: हमारे मनोज जी है, वीरेंद्र जी है, विजय जी है, राजू जी है, सुरेश जी है, राजेश जी है, रूबी जी है, नेहा जी है, अर्चना जी है, सभी लोग बैठे हुए हैं एक साथ गाना सुनने के लिए।
7: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
8: जी मैम, थैंक यू।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: हम थावे से बोलते हैं नमाज प्रसाद।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: हाल चाल ठीक बात, आपका बरसा हो रहा, धूप चढ़ा बहुत बात।
0: धूप तो ये गई बहुत तेज, गर्मी होती है बढ़ा था।
1: कौन कह रहे हैं जितना बरसा बढ़ रहा बेसी गर्मी हो
0: जाए।
1: गाना सुने बा,
0: बता दी
1: गीत का तो चल मुसाफिर गुनगुनाता चल।
0: हेलो,
1: हाँ
0: कौन सा गाना कनी है?
1: गीत गाता चल मुसाफिर गुनगुनाता चल।
0: गाना क्यों कितना हो के बा?
1: जितना लोग सुनता सब कुछ सुनी, हमारे सब कुछ सुनी।
0: जी जी, सभी ठीक बा। तो गाना प्ले करता नी।
1: नमस्ते,
0: सुना रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM। नमस्ते।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए,
7: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: हेलो, मैं आसाम से महेंद्र राउत बोल रहा हूँ।
9: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM में।
10: मैं सुनना चाहता हूँ, हाँ फीलिंग तो है, माँ मेरे आँखों का तारा है।
9: आपकी आवाज कट कट के आ रही है।
10: तो मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ इसलिए। हाँ फीलिंग का है, माँ मैं तेरी आँखों का तारा हूँ, ऐसे कोई गाना एक है।
9: हाँ
10: तो वह गाना सुने करूँगा।
9: और गाना क्या होगा, सुना होगा?
10: हाँ सुनाने तो बात है, उमेश, मुकेश, सुनील, अनिल, महेंद्र राउत, शशि प्रभा, ऐसा ही लोग और आप और श्रोता।
9: अच्छा
10: सुना दी,
9: तो चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें रेडियो रंजीत 90.4 FM।
10: बहुत अच्छा।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।
1: मैं पप्पू कुमार पढ़ रहा हूँ, पढ़रिया से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: जी मैम अच्छा है, अपना सुनाइए।
0: हमारा भी अच्छा है।
1: मौसम उधर कैसा है मैम?
0: मौसम तो अब तो धूप निकल रहा है, हल्का हल्का गर्मी महसूस हो रहा है। अब
1: तो बारिश हुआ है उधर, कल भी हुआ आज भी हुआ।
0: इस समय बारिश नहीं तो
1: कल बारिश नहीं हुआ है,
0: कल हुआ है, आज थोड़ी हुआ है।
1: हमारे यहाँ तो थोड़ा सा हुआ है, 10-15 मिनट बारिश हुआ। गाना तो सुना दीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा गाना?
1: मेरे पतली कमर लंबे बाल, अरे मेरी उम्र 16 साल।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: रेडियो रेंजी जितने भी सुन रहे हैं सभी सुनेंगे।
0: ओके, और सब बढ़िया है ना?
1: जी मैम बहुत बढ़िया है, अपना सुनाइए। सब आज लोग आते हैं।
0: तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजी 90.4 FM।
1: थैंक यू।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
2: नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629-3-3538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
3: बोलबम, हर हर महादेव।
9: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
10: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
9: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
11: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
9: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
11: जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
9: और 90-97-61-60-02।
12: Pick it up, hello. बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो।
14: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
14: अरे सुबह सुबह परेशान हूँ, फिर जगह पकड़ा।
13: अच्छा, क्या हो गया है?
14: गाना सुनना था मुझे।
13: नाम बता दीजिए अपना।
14: मेरा नाम है बीरेंद्र शाह, पहली बार लगा है।
13: और कहाँ से हैं आप?
14: मेरा यहाँ बरौली थाना मेरा घर है।
13: तो क्या हाल चाल है आपका?
14: सब ठीक है सर।
13: अच्छा, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
14: गाना एक पुराना गीत है, गुरु मानदास से गाया हुआ है, किया था रब से पहले।
13: कौन सा सॉन्ग?
14: जग में किया था रब से पहले, इस टाइम रब से पहले। मैं बहुत दिन पहले देखा था फिल्म में। मिल जाएगा कि नहीं?
13: मिल जाएगा,
14: ढूंढिए उसको।
13: अच्छा, ढूंढेंगे। और गाना किसी को सुनाना भी है?
14: सारा दुनिया सुनेगी, हम भी सुनेंगे।
13: जी जी बिल्कुल,
14: बजेगा उस पर। तो रेडियो में सुनता हूँ बराबर, ठीक है ना
13: जी।
14: तो एक गाना कभी नहीं बैठता है, तो मैं सोचा चलो उसी गाना को मैं सुनना है।
13: अच्छा चलिए, ठीक है, आपके लिए।
14: अभी कलाकार है वो, मैं सुबह से लेकर सारा दिन सुनते रहता हूँ। विविध भारती हुआ, पटना हुआ, जितना प्रोग्राम है ना सब सुनता हूँ
13: जी।
14: अच्छा, सुबह में जी? सुबह के टाइम में
13: वही शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच बजता है।
14: अच्छा
13: जी, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी रंजन,
0: जी क्या हाल चाल है आपका?
1: हम बढ़िया है।
0: और सब ठीक है ना?
1: तो बढ़िया है, काम हो रहा है। हम लोग काम कर रहे हैं फुल रेडियो रंजन।
0: तो अभी बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
1: शुरुआत जी है हथिया मूवी का गाना सुनवा जी, अक्षय कुमार का मूवी है।
0: और गाना कौन सा?
1: उसमें गाना है खबर छुप जाएगी कल के अखबार में, घायल हुआ एक लड़का एक लड़की की प्यार में।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी अपनी आवाज को।
0: जी चलिए फिर, तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: Jab phone din din bajti hai to kehte hain hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
3: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रहे हैं समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार बुधवार शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी। सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
9: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
11: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
12: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
13: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
14: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
13: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
14: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
13: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।
15: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
16: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
15: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
16: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
15: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री ओपीडी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
16: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
15: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा, मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
17: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
17: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
9: क्यों, क्या हुआ है?
10: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
9: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
10: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
9: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
18: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
19: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
18: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
19: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
18: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
19: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
20: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
18: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
21: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
22: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
23: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
22: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
24: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
25: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
26: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
18: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
27: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
28: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
16: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
27: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा में NH 27 पर, दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
16: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
27: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष शग्यो द्वारा।
16: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
27: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
16: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27।
28: 27 गोपालगंज।
27: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थी। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हट रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

तारक नाम के असुर से त्रस्त देवताओं को ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम 5 वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया।

विशेष दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर हुई चर्चा। राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और हडको के बीच समझौता। 1,00,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के MOU पर हुए हस्ताक्षर। प्रदेश में 29 औद्योगिक परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। 6,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। और राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर जीविका समूहों और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आधुनिक हाट बाजार विकसित करेगी। अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में 18 राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों ने भाग लिया। मंत्रालय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। उन्होंने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत 2,76,000 ग्रामीण स्थानीय निकाय शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य राज्यों को आयोग की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उन्हें प्रदर्शन आधारित अनुदानों का अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम बनाना था। राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हडको के बीच 1,00,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक वित्त पोषण का समझौता हुआ है। पटना के संकल्प सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के शहरी विकास के इतिहास में ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होने वाला कदम बताया। उन्होंने बताया कि लगभग 3,00,000 एकड़ क्षेत्र में टाउनशिप विकसित किए जाएंगे और किसानों को लैंड पुलिंग के माध्यम से इस परियोजना का भागीदार बनाया जाएगा। वहीं मुआवजे के लिए आवेदन करने वाले किसानों को 30 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैटेलाइट टाउनशिप में आधुनिक सड़क नेटवर्क, पेयजल, हरित क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिससे लोगों को बेहतर आवास और विश्व स्तरीय शहरी जीवन उपलब्ध होगा। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्याडा की परियोजना समाशोधन समिति ने 29 नई औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के लिए सिकंदरपुर, हथुआ, फारबिसगंज, लोहट, बरियारपुर और फतुहा समेत अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 38 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, प्लास्टिक उत्पाद निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन समेत अन्य औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, साथ ही 3,000 लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की भी संभावना है। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड में 385 एकड़ भूमि पर नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इस परियोजना के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दरभंगा के रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के लिए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया है। इस कमेटी में केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, एक पदाधिकारी और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। यह समिति चीनी मिल को फिर से चालू कराने के उपायों का आकलन करेगी।
राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर जीविका समूहों और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आधुनिक हाट बाजार विकसित करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नाबार्ड और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर हाट विकसित होने से ग्रामीण उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा, जिससे जीविका दीदियों और किसानों की आय बढ़ेगी तथा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मंत्री ने अगले 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक हाट विकसित करने, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ने तथा महिलाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। राज्य सरकार 20 जुलाई से 1100 श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ यात्रा का आयोजन करेगी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत इस यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा का शुभारंभ पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन से होगा। श्रद्धालु सोमनाथ धाम के दर्शन के बाद 26 जुलाई को पटना लौटेंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने हावड़ा और नटेसर के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह ट्रेन 5 जुलाई से 30 सितंबर तक सप्ताह में 3 दिन चलेगी। यह ट्रेन आसनसोल जसीडीह झाझा किहुल शेखपुरा अस्थावा बिहार शरीफ नालंदा और राजगीर के रास्ते चलाई जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान राज्य के उत्तर और दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मुंगेर सदर में सबसे अधिक 20.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट की सुविधा

0: निःशुल्क उपलब्ध कराई है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। केंद्र सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लौसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सीतामढ़ी पुलिस ने रीगा थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र से हुई लूटकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान एक अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देशी कट्टे, 1 देशी पिस्तौल, 2 कारतूस और लूट में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उधर समस्तीपुर और वैशाली जिले की सीमा पर स्थित पंगरा थाना क्षेत्र के बलेगांव के पास पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। वैशाली के पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने बताया कि पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें अमन कुमार को पैर में गोली लगी है। उन्होंने बताया कि मौके से एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। कोसी प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक कुमार आशीष ने सहरसा जिले के सलखुआ थाना में पदस्थापित 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पुलिसकर्मियों पर दलालों के माध्यम से केस प्रभावित करने का आरोप है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि मौके से एक दलाल को भी गिरफ्तार किया गया।
1: ये व्यक्ति सतीश कुमार जो है बहुअरवा गांव का रहने वाला है, जो इसके लैपटॉप पर विभिन्न केसों की फाइल मिली है। ये डायरी लिखने का भी काम करता है और डायरी दूसरे लोगों को बेचने का भी काम करता है। इस प्रकार से पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा था, जिसको तत्काल गिरफ्तार किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत इस पर केस दर्ज कर करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ इसके सांठगांठ में काम करने वाले 10 ऐसे आईओ जिनकी फाइल मिली है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर करके लाइन हाजिर किया गया है। उन पर विभागीय कार्रवाई चलेगी और उनको कठोरतम सजा हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे।
0: भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर एक बालू लदा हाइवा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों पर पलट गया। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भेजा गया है। इधर कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के भिट्ठी गांव के पास ई रिक्शा पलटने से रिक्शा चालक और 1 बच्ची की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर स्थित बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 265 प्रशिक्षु महिला सिपाहियों की पासिंग आउट परेड गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परेड के दौरान प्रशिक्षु महिला सिपाहियों ने आकर्षक मार्च पास्ट, अनुशासित कदम ताल और उत्कृष्ट ड्रिल का प्रदर्शन किया। समारोह में पुलिस उप महानिरीक्षक हरकिशोर राय और पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भोजपुर जिले के जवनिया गांव में गंगा के कटाव से प्रभावित 57 परिवारों को बिलौटी गांव के पास 3-3 डिसमिल भूमि का आवंटन किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से अब तक कुल 127 गंगा कटाव पीड़ित परिवारों को पुनर्वास के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसके साथ ही 40 पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त भी उपलब्ध करा दी गई है। अररिया जिले के चौकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसौना गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 105 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक और भारी मात्रा में शराब के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर मंडल कारा में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया गांव में भूमि विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। समस्तीपुर जिले के तलसिंह सराय थाना क्षेत्र के चकलोमान गांव से पुलिस ने लूट के मामले में 7 साल से फरार चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। दरभंगा में पिछले दिनों एक आभूषण दुकान से लूट के मामले में एसटीएफ की टीम ने मधुबनी जिले के पंडोल से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 14 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

लखीसराय जिला आज अपना 33वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर हुई चर्चा। राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और हडको के बीच समझौता। 1,00,000 रुपए के वित्त पोषण के MOU पर हुए हस्ताक्षर। प्रदेश में 29 औद्योगिक परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। 6,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। और राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर जीविका समूहों और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आधुनिक हाट बाजार विकसित करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
2: और 90-97-61-60-02।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, और मैं हूँ आपकी अपनी

0: लाते हैं और हमारे श्रोताओं को जागरूक करते हैं। और इस बार तो सबसे जरूरी पोषण, अगर हम पोषण अच्छा लेना शुरू कर दें तो आधी बीमारियां हम ऐसे ही कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। हमने सोचा जब पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 मनाया जा रहा है तो हम क्यों पीछे हटे अपने श्रोताओं को ये बताने से।
0: आरजे जी, यही तो रेडियो की खूबी है कि आप अपने श्रोताओं को हर जरूरी जानकारी से हमेशा जोड़कर रखते हैं। पोषण की बात चल रही है तो मुझे अपने ही गांव की घटना याद आ रही है। हमारे गांव में एक नन्ही सी बच्ची है, त्रिशा, घर की इकलौती और सबकी लाडली। प्यार इतना ज्यादा है कि घर के बड़े बुजुर्ग मना भी करते मगर उसके माँ बाप और रिश्तेदार हर रोज उसे चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे और पैकेट वाले खाने लाला कर खिलाते रहे। सोचिए, मासूम बच्ची जब खुश होकर खाती थी तो किसी ने रोकना ठीक नहीं समझा। लेकिन अचानक ही उस बच्ची के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया और हालत ये हुई कि लगातार उल्टियां होने लगी। परिवार घबरा गया, डॉक्टर के पास ले गए। कई दिनों तक इलाज चला। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब इसे बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं देना वरना हालत और बिगड़ सकती है। देखा आपने, थोड़ा सा स्वाद, थोड़ी सी लापरवाही और बच्चों के सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो जाता है।
1: हम अपने श्रोताओं को ये गलती नहीं करने देंगे।
0: जी चलिए, बिना देरी करे अब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की बात करते हैं और इसका थीम है सही आहार बेहतर जीवन, यानी ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ।
1: सही से बताए कि सही आहार का मतलब आखिर क्या और ये हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाता है।
0: सच कहूँ तो पोषण का विषय हर परिवार के लिए उतना ही जरूरी है जितनी घर की नींव। बिना सही पोषण के कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी।
0: देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और तब से लगातार इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि सही आहार, संतुलित खानपान और पोषण से ही स्वस्थ जीवन संभव है। इस साल 2025 का थीम है ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। इसका मतलब है अगर हम सही खान पान अपनाएंगे तो न केवल बीमारियों से बचेंगे बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे।
1: वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन सेहतिया जी, जब हम पोषण की बात करते हैं तो अक्सर सुनते हैं कि भारत में बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे।
0: हाँ अर्जय जी, बिल्कुल। भारत में कुपोषण अभी भी एक गंभीर चुनौती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NFHS5 के आंकड़े हमें बताते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 35.5% स्टंटेड यानी कि कम लंबाई के हैं, 19.3% बच्चे वेस्टेड यानी कि उनका वजन कम है और 32.1% बच्चे अंडरवेट हैं। यही नहीं, एनीमिया यानी खून की कमी भी बहुत बड़ी समस्या है। 6 महीने से 5 साल तक के 67% बच्चे, 59% किशोरियां और लगभग 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं।
1: ओह, ये तो सचमुच चिंता की बात है। तो क्या इसका असर सिर्फ शरीर पर होता है या पढ़ाई लिखाई और कामकाज पर भी पड़ता है।
0: बिल्कुल असर पड़ता है। कुपोषण से बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास दोनों प्रभावित होते हैं। वे जल्दी बीमार पड़ते हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। आगे चलकर वे समाज और देश की प्रगति में भी पूरा योगदान नहीं दे पाते। एक कुपोषित बच्चा बड़ा होकर भी कमजोर रहता है और अक्सर बीमार रहता है।
1: ठीक है, अब ये बताइए कि सही पोषण का मतलब क्या है, हमारी थाली में आखिर क्या क्या होना चाहिए।
0: बहुत अच्छा सवाल। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इसके लिए गाइडलाइंस दी है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी थाली संतुलित होनी चाहिए। इसमें 3 बड़े हिस्से जरूरी हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चावल, रोटी, आलू और अनाज जो हमें ऊर्जा देते हैं।
1: अरे सेहतिया भैया, प्रोटीन का भी तो बताएं और विटामिन का।
0: हाँ हाँ बताता हूँ। एक तो तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है, तो श्रोताओं दूसरा प्रोटीन जैसे दाल, अंडे, दूध, मछली और मांस जो शरीर की मरम्मत और विकास के काम में आते हैं, और तीसरा विटामिन और मिनरल्स जो फल और सब्जियों से मिलते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं।
1: ये सब तो काफी अच्छी जानकारी है, पर सेहतिया जी, लोग सोचते हैं कि तेल, घी से मोटापा और हृदय की बीमारी होती है। खैर, हमारा मन तो बिना चटकारे खाने को मानता ही नहीं।
0: हाँ भाई, यह तो बड़ी समस्या है, पर कभी कभार तो चल जाता है। पर हमारी रोजमर्रा की थाली में थोड़ी मात्रा में तेल घी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। नमक 6 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और सबसे जरूरी, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: तो क्या इसका मतलब है कि हर इंसान को दिन भर में लगभग कितनी कैलोरी लेनी चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, एक औसत वयस्क को दिन भर में 2000 से 2500 कैलोरी की

0: जरूरत होती है, लेकिन ये उम्र, लिंग और काम के अनुसार बदलता है।
1: अच्छा सेहतिया जी, इतना सब कुछ बताया है तो ये भी तो हो सकता है कोई सही मात्रा में ना ले रहा हो पोषण। तो सभी पोषण अंगों का कितना भाग होना चाहिए?
0: प्रोटीन लगभग 50 ग्राम रोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कुल ऊर्जा का 55 से 60% होना चाहिए और वसा यानी फैट 30% से ज्यादा नहीं। साथ ही 25 से 30 ग्राम फाइबर रोज लेना जरूरी है जो हमें फल, सब्जियों और साबुत अनाज से मिलता है।
1: वाह, अब ये तो सबके लिए बड़ी उपयोगी जानकारी है, लेकिन क्या सिर्फ संतुलित आहार से ही सब ठीक हो जाएगा? सरकार भी तो कई कार्यक्रम चला रही है।
0: बिल्कुल, सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जैसे अनीमिया मुक्त भारत। इसका लक्ष्य है बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में अनीमिया कम करना। इसके लिए आयरन, फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, समय समय पर कीड़े की दवाई दी जाती है और जागरूकता फैलाई जाती है। दूसरा है राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस। इसमें स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को साल में 2 बार एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है ताकि उनके पेट में कीड़े ना पनपें।
1: और वो माँ करके एक प्रोग्राम है वो?
0: अरे हाँ हाँ भाई, वो भी बता रहा हूँ, माँ का स्नेह कार्यक्रम। इसका मकसद है कि हर बच्चा जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध पान शुरू करे और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिए। दूसरा है लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर्स। यहाँ बीमार या समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए माँ का दूध सुरक्षित रूप में उपलब्ध कराया जाता है। और तीसरा है पोषण पुनर्वास केंद्र। ये ऐसे बच्चों के लिए है जो गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। यहाँ उन्हें इलाज और पोषण दोनों दिया जाता है।
1: सेहतिया भैया, आप एक और भूल रहे हैं, विटामिन ए वाला एक प्रोग्राम था कुछ।
0: अरे हाँ हाँ भाई, वहाँ भी पहुँच रहा हूँ। और आखिरी है विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। 5 साल से छोटे बच्चों को हर 6 महीने पर विटामिन ए की खुराक दी जाती है।
1: वाह सेहतिया जी, आपने तो सारी जानकारी एक साथ दे दी। लेकिन हमारे गांव के लोग अक्सर कहते हैं कि फल और सब्जियां महंगी है, तो क्या पोषण सिर्फ अमीरों के लिए है?
0: नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पोषण हर किसी के लिए है। हमारी लोकल और मौसमी चीजें जैसे चना, मूंगफली, दालें, गुड़, हरी सब्जियां और मौसमी फल, ये सब बहुत पौष्टिक होते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं। जरूरी है कि हम इन्हें रोज की थाली में शामिल करें।
1: बहुत बढ़िया सेहतिया जी, हमारे गांव और मोहल्ले में लोग पोषण को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। कई बार समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। क्यों ना आप आज हमारे श्रोताओं के कुछ आम मिथकों की सच्चाई बता दीजिए।
0: बिल्कुल, यही तो जरूरी है। चलिए कुछ बड़े मिथकों की परत खोलते हैं।
1: सबसे पहला तो यही सुना है, गर्भवती महिला को ज्यादा खाना चाहिए चाहे जैसा भी हो।
0: देखिए, यह पूरी तरह गलत फहमी है। गर्भवती महिला को ज्यादा नहीं बल्कि संतुलित और पौष्टिक भोजन चाहिए। अगर वह सिर्फ तली भुनी चीजें या सिर्फ चावल रोटी ही खाएगी तो माँ और बच्चा दोनों कमजोर रहेंगे। थाली में हरी सब्जियां, दालें, दूध, फल और अनाज सब होना चाहिए।
1: ठीक है, अब दूसरा मिथक, लोग कहते हैं बच्चों को 6 महीने से पहले ही ऊपर का दूध या खाना देना चाहिए।
0: अरे नहीं, WHO और भारत सरकार दोनों की गाइडलाइन साफ कहती है कि जन्म के पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए, यही उसका सबसे अच्छा और पर्याप्त पोषण है। न पानी, न शहद, न ऊपर का दूध, सिर्फ माँ का दूध।
1: अब सुनिए तीसरा, लड़के को दूध, घी और फल ज्यादा देना चाहिए, लड़कियों को उतना जरूरी नहीं।
0: यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है, यह लैंगिक भेदभाव बच्चों की सेहत बिगाड़ता है। सच्चाई यह है कि लड़के और लड़कियों दोनों को बराबर पोषण चाहिए। किसी को कमजोर रखना मतलब पूरे परिवार और समाज को कमजोर करना।
1: बहुत सही, लेकिन एक और मिथक है, मीठा और जंक फूड बच्चों की सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस दांत खराब करता है।
0: नहीं जी, यह बड़ी खतरनाक सोच है। लगातार मीठा और जंक फूड बच्चों को मोटापा, डायबिटीज और पेट की बीमारियां देता है। सिर्फ दांत नहीं, पूरा शरीर बीमार हो जाता है।
1: अब अगला मिथक, पानी या दाल में डाला गया आयरन फोलिक एसिड पाउडर दवा है और इसमें साइड इफेक्ट होंगे।
0: बिल्कुल गलत, यह सुरक्षित पोषण सुधार तकनीक है। खाने का स्वाद नहीं बिगड़ता और शरीर को जरूरी आयरन मिलता है। इससे बच्चों और महिलाओं में एनीमिया कम होता है।
1: ठीक है, एक और सुना है, खून की कमी सिर्फ औरतों को होती है, पुरुषों को नहीं।
0: गलत फहमी है यह भी, एनीमिया पुरुषों में भी होता है, बस दर महिलाओं और बच्चों में ज्यादा है। खून की कमी किसी को भी कमजोर बना सकती है।
1: और आखिरी मिथक, नाश्ता छोड़ने से वजन जल्दी कम होता है।
0: ये तो सबसे बड़ा झूठ है, नाश्ता छोड़ने से शरीर थका थका रहता है और दिन भर इंसान ज्यादा खा लेता है। सच्चाई यह है कि सही नाश्ता करने से ही वजन नियंत्रित रहता है और सेहत अच्छी रहती है।
1: वाह सेहतिया जी, आपने आज पोषण से जुड़े सारे मिथक तोड़ दिए। मुझे लगता है हमारे श्रोता अब और ज्यादा जागरूक हो गए होंगे। अब अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के मौके पर?
0: मैं यही कहना चाहूँगा कि सही पोषण ही असली धन है। अगर हम अपने बच्चों और परिवार को संतुलित आहार देंगे तो बीमारियाँ कम होंगी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी। इसलिए सब लोग इस सप्ताह यह संकल्प लें कि हम अपनी थाली को रंग बिरंगी और संतुलित बनाएंगे। तो चलिए हम शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें, महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
1: वाह सेहतिया जी, आपने आज बहुत ही काम की बातें बताई हैं। दोस्तों आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, सेहत पोषण बेहतरीन जीवन। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे और सेहतिया जी को जाने की अनुमति। नमस्कार।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
11: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
12: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
13: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
13: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
14: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
13: कॉल करें 85070-32042 पे।
15: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
16: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। प्रबंधक डाक वाहन सेवा बेंगलुरु आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। मोटर वाहन मैकेनिक, कुशल अपहोल्स्टर, कारपेंटर कम ज्वाइंटर और पेंटर। शैक्षणिक योग्यता, वेतन, आरक्षण और सेवा शर्तों के लिए विस्तार से जानकारी दी गई है। 27 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 के रोजगार समाचार पत्र में आवेदन आप इस पते पर भेज सकते हैं। प्रबंधक डाक वाहन सेवा, नंबर 4 बसवेश्वर रोड, वसंत नगर, बेंगलुरु 5600, 01। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय आवेदन आमंत्रित कर रहा है महानिदेशक के एक पद के लिए। योग्यता, अनुभव, आयु सीमा, आरक्षण और सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए आयुष मंत्रालय की वेबसाइट www.ayush.gov.in। इसके अतिरिक्त आप केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS नई दिल्ली की वेबसाइट पर भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। पता है CCRAS.NIC.in। नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड प्रयागराज आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। ऑपरेटर SS इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रिक्तियों की संख्या 8। ऑपरेटर SS फिटर, रिक्तियों की संख्या 5। ऑपरेटर SS इलेक्ट्रीशियन, रिक्तियों की संख्या 6। कनिष्ठ सहायक IMM 3 रिक्तियां। कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट HR रिक्तियों की संख्या 2। कनिष्ठ सहायक वित्त रिक्तियों की संख्या 2 और कनिष्ठ सहायक सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT रिक्तियों की संख्या 2। कार्य अनुभव, आयु सीमा, योग्यता, आरक्षण और नियुक्ति के स्थान तथा सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी आप हासिल कीजिए नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड की वेबसाइट पर, जिसका पता है NAEL.CO.IN। भारतीय नौसेना विभिन्न एंट्रीज के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के आवेदन आमंत्रित कर रही है। ये आवेदन AT-27 कोर्स के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें कार्यकारी शाखा, पायलट, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लॉजिस्टिक्स, नौसेना आयुध निरीक्षण संवर्ग, शिक्षा इंजीनियरिंग शाखा, सबमरीन टेक इंजीनियरिंग, विद्युत शाखा सबमरीन टेक, इलेक्ट्रिकल, नौसेना निर्माण विशेषज्ञ पदों से संबंधित रिक्तियां उपलब्ध हैं। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय नौसेना की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
12: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
17: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
18: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
17: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
18: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
17: संपर्क करें 9939365923।
19: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
20: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
19: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
20: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
21: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
6: प्रसाद क्लिनिक।
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
9: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
8: तो देर मत कीजिए,
9: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
11: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
11: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
12: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
13: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
12: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
12: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक
14: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
15: और 90971602।
16: नमः शिवाय।
17: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
16: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
17: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
16: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
17: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
18: मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
19: India's position on the Indus Waters Treaty।
20: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
18: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
19: India's development assistance।
20: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
18: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
15: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग।
21: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
18: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
22: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
18: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
23: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
18: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। IMD के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। IMD ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
18: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए 2 संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
6: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
11: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
12: क्यों, क्या हुआ है?
11: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
12: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
11: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
12: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।
13: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
14: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
13: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
15: Thank you. नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अलग अलग हादसों में लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का डीएम ने किया निरीक्षण। जनता दरबार में डीएम और एसपी कार्यालय में सुनी गई जनता की फरियाद। एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर किया गया हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल। और पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराकर हुई दुर्घटनाग्रस्त, 4 पुलिसकर्मी जख्मी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिले में कई अलग अलग जगहों पर हादसे हुए जिसमें लगभग आधा दर्जन लोगों के मौत की खबर आई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। एक मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हेमू छपरा गांव से आया, जहां बिजली के करंट के चपेट में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक तेज धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव में गए थे और पेड़ पर पहले से ही टूटा हुआ बिजली का तार गिरा हुआ था, जिसके चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बिजली के करंट लगने से फुलवरिया, जो कुचायकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली का प्लग लगाते समय करंट लगने से एक किशोर की यहां दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में भी पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा गोपालपुर थाना क्षेत्र के दुबे खरिया गांव में भी एक 12 वर्षीय बच्ची रिया कुमारी को सांप ने डस लिया, इसकी भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह दुबे खरिया के प्रमोद यादव की पुत्री थी, खेल रही थी तभी जहरीले सांप ने काट लिया। बच्ची अचेत हो गई, परिजन हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन रास्ते में बच्ची की मौत हो गई। इसके अलावा माधोपुर थाना क्षेत्र के सरया नरेंद्र गांव में भी एक मासूम बच्चे को कोबरा सांप ने काट लिया। इस बच्चे का नाम अंकुर कुमार है और यह रविंद्र कुमार शर्मा का 7 वर्षीय पुत्र बताया जा रहा है। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के महुआ गांव में घर के बाहर खेल रहे एक 8 वर्षीय मासूम को सांप ने डस लिया। आनन फानन में इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यह बच्चा महुआ गांव के रुदल राम का 8 वर्षीय पुत्र रवीश कुमार बताया जा रहा है। परिजन घटना के बाद इस बच्चे को बरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान इस बच्चे की भी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद सभी शवों को सौंपा है। बरसात के वजह से सर्पदंश का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बरसात और उमस भरे मौसम में सांप अधिक सक्रिय हो जाते हैं और भोजन तथा सुरक्षित स्थान की तलाश में घरों के आसपास भी पहुंच जाते हैं। ऐसे में सर्पदंश की घटनाओं में वृद्धि देखी जाती है। लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की गई। इधर दिघवा दुबौली में एक रिश्तेदार के घर से लौटने के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक 22 वर्षीय मोहित कुमार सिंह, पिता ओम प्रकाश सिंह, जो बैकुंठपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं इसका साथी युवक मंजीत कुमार, जो दुधारा थाना गोरेया कोठी जिला सिवान का रहने वाला है, यह गंभीर रूप से जख्मी है, इसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय मोहित की मौत हो गई। घटना के बाद मोहित के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां छात्रावास की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की भी समीक्षा की। छात्रावास परिसर, आवासीय कक्षों, स्वच्छता व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं का उन्होंने निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने छात्रावास की लाइब्रेरी का भी अवलोकन किया। अध्ययनरत छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने लाइब्रेरी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही इन्वर्टर लगाने का निर्देश दिया, ताकि बिजली बाधित होने की स्थिति में भी छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो सके। सबका सम्मान जीवन आसान पहल के तहत जनता दरबार का आयोजन कर जिला पदाधिकारी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 के अंतर्गत संचालित सबका सम्मान जीवन आसान पहल के तहत उपस्थित फरियादियों से क्रमवार संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों को डीएम ने त्वरित निष्पक्ष और प्रभावी निष्पादन करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार मिश्रा ने पुलिस से संबंधित शिकायतों को लेकर पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित अधिकारी को उन्होंने भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कटिया थाना क्षेत्र के बोरई बेली गांव में एक गिरफ्तार आरोपी प्रमोद यादव को छुड़ाने के लिए उसके समर्थकों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। आरोपी को छुड़ाकर हमलावर फरार भी हो गए। इस हमले में एक पुलिस पदाधिकारी समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने मामले में 13 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और अब मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि फरार आरोपी प्रमोद यादव को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। छापेमारी के बाद पुलिस ने आरोपी प्रमोद यादव को पकड़ भी लिया, परंतु उसके समर्थकों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और पुलिस के साथ मारपीट करने लगे, जिसमें 4 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सीसई गांव में देर रात पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग के दौरान सामने से आ रही नीलगाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में वाहन पर सवार 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सिरीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 387 लीटर देशी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक कार भी जब्त की गई। पकड़ा गया आरोपी जनार्दन कुमार पिता गणेश साकिन ओझा बरथरी थाना उरुआ जिला गोरखपुर और दूसरा सुमित पांडे साकिन मिथिया बेलदारपुर थाना बांस गांव जिला गोरखपुर निवासी हैं। इन दोनों को पुलिस ने शराब के साथ पकड़ा है। इनकी गाड़ी भी जब्त की गई है। इधर भोरे थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह आरोपी फरार चल रहा था, तभी पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने छापेमारी कर अभियुक्त अनिल उर्फ राम बिहारी ठाकुर पिता दयानंद ठाकुर साकिन हरामपुर थाना गौरी बाजार जिला देवरिया को विधिवत गिरफ्तार किया है और इसके विरुद्ध अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस आरोपी पर 29/7/2022 में ही पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और तभी से पुलिस इसे ढूंढ रही थी। जिलाधिकारी ने सदर प्रखंड के चौराव पंचायत सरकार भवन में आयोजित टीबी स्क्रीनिंग कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य की प्रगति, लाभार्थियों के पंजीकरण, जांच की प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का उन्होंने जायजा लिया और उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों से स्क्रीनिंग अभियान की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर पेंशनर्स एसोसिएशन जिला गोपालगंज के द्वारा मुकेश कुमार सिंह क्रिकेट खिलाड़ी गोपालगंज के आगमन पर बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ उनको परिजात यानी हरसिंगार का पौधा तथा अंग वस्त्र और पुष्प माला पहनाकर सम्मानित किया गया। उनके क्रिकेट खेल प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। पेंशनर एसोसिएशन के नेताओं ने कहा कि यह जिला ही नहीं बिहार के लिए गौरव की बात है कि ऐसे खिलाड़ी हमारे गोपालगंज के निवासी हैं। सभी लोगों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इसमें जिला अध्यक्ष सह महामंत्री रामेश्वर सिंह और जिला मंत्री रामायण सिंह ने उनके खेल प्रतिभा पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी किया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने 303 लीटर विदेशी शराब के साथ एक कार सवार को नगर थाना क्षेत्र के चैन पट्टी में NH-27 पर पकड़ा। बताया जा रहा है कि इस मामले में कार और शराब को जब्त किया गया है और इसमें तस्कर के गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। साथ ही इस तस्करी के पूरे नेटवर्क को भी खंगालने में जुटी हुई है। पुचका गांव थाना की पुलिस ने पशु तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाते हुए आज ग्राम गुरुमहा स्थित जीन बाबा स्थान के पास एक गाड़ी को पकड़ा, जिस 7 मवेशी क्रूरता पूर्वक रस्सी से बांधकर तस्करी के लिए जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी और मवेशियों को जब्त किया है। इस संदिग्ध पिकअप को रोकते समय पुलिस को देखकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मवेशी और वाहन को जब्त कर अब आगे की कार्रवाई कर रही है। कटिया थाना की पुलिस ने पुलिस की टीम पर हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी का नाम दिनेश यादव है, जो श्री किशुन यादव का पुत्र है और बरई बेली गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जादवपुर थाना की पुलिस ने 390 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी

0: समाधान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय छात्र शक्ति पत्रिका के संयोजक अनीश कुमार ने कहा कि काउंटर पर नामांकन संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की सूची, स्टेपलर, गोंद, पेन, कागज सहित कई आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की गई है। काउंटर लगाने का उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थियों को इधर उधर ना भटकना पड़े और उनका नामांकन आसानी से हो सके। जिला संयोजक हरिओम राय ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष नामांकन के समय हेल्प डेस्क लगाकर बच्चों का सहयोग करता है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अलग अलग हादसों में लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का डीएम ने किया निरीक्षण। जनता दरबार में डीएम और एसपी कार्यालय में सुनी गई जनता की फरियाद। एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर किया गया हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल। और पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराकर हुई दुर्घटनाग्रस्त, 4 पुलिसकर्मी जख्मी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो MGM 90.4 FM पे समय 9:21 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो पुराने गाने की फरमाइश करना है। ये बातें आप सभी के बीच हर रोज निवेदन पूर्वक बताई जाती है। तो आप लोग जैसे कार्यक्रम चले वैसे गाने की फरमाइश करें। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, हम सफरोज अली आखिल टोला से और गाना सुनना है चेहरा तेरे किताबी किताबी। उदित नारायण जी की आवाज़ में तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि जया ना कीजिए ये उमर जनाब। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले कौन है ये तो नहीं बताए हुए हैं, तो आप अपना परिचय दें। फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय, मैं कमलेश कुमार विलेज सविया फील्ड गोपालगंज से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। कमलेश जी, क्या हाल चाल है, बने रहे हमारे साथ। और बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे सफरोज अली जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, चेहरा तेरा किताबी किताबी, उदित नारायण जी की आवाज़ में।

मस्त सॉन्ग उदित जी के आवाज़ों में सुन रहे हम सभी रेडियो MGM 90.4 FM पे शो चल रहा है SMS फरमाइश। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो पुराने गाने की फरमाइश करना है। और एक और बात कि इस सप्ताह में जो भी श्रोतागण आप अपने पसंद के गाने सुन चुके हैं वो दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे, क्योंकि आज सप्ताह का अंतिम दिन है। तो आज तो थोड़ा सा सब्र कर लेंगे कि एक सप्ताह से जो ट्राई कर रहे हैं, जो जिनकी फरमाइश हम पूरी नहीं कर पाए हैं, उनकी भी फरमाइश हम पूरी कर पाएँ यदि आप लोगों का सहयोग हो तो। आगे कुछ मैसेज पहुँचा हुए थे, मैसेज शामिल करेंगे। यहाँ पर आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, हाय सर जी, नमस्कार सर जी, कैसे हैं। मैं प्रीति रैदास, विलेज लकड़ी, दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान, बिहार से, और आज मेरी एक वीक कंप्लीट हो चुकी है। तो आज मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग ने मेरा सोना सजन घर आ गया, फ्रॉम द मूवी दिल परदेसी हो गया से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपकी फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय, मैं शिल्पी और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे। और आप अपने गाने को चेंज करती हैं तो ही आपकी फरमाइश हम पूरी कर पाएंगे, क्योंकि भोजपुरी गाने के फरमाइश की हैं। और हमें लगता है कि इस समय, और हमें लगता है कि ये गाने रेडियो पर भी हम नहीं सुना सकते हैं। फिलहाल आप गाने को चेंज करती हैं तो ही सुना पाएंगे, आपकी फरमाइश पूरी कर पाएंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मैं दीपराज। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और बेरवा से जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपकी सॉन्ग की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि थैंक्स सर, आप सभी आप भी गाइए ना। तो सभी गाने हमें गाने नहीं आते, और कुछ कुछ गाने हैं जो सहयोग कर लेते हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, मेरा नाम है लखन पांडे और मैं सरेवाड़ नंबर 1 से हूँ, और आप गाना बजाएं किशोर कुमार की, और ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो आपकी सॉन्ग तो इस सप्ताह पूरी की है, किया गया है, लेकिन आप यदि जुड़े हुए हैं तो समय अगर हमारे पास बचता है तो पूरा करने की कोशिश भी रहेगा। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। और यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश हम पूरी करते हैं कमलेश जी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। और लिखा गया है कि मुझे लोग कहते हैं कदमों के धूल, प्लीज़ सुना दीजिए। तो चलिए आपकी सॉन्ग प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो 90.4 FM पे।

शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। और हम बताएं कि इनकी फरमाइश हम अभी सुन रहे थे और इनकी फरमाइश इस सप्ताह में हमें लगता है कल नहीं परसों ही सुने थे, और इन्होंने गाने की फरमाइश किए थे दिल जले मूवी से, शाम है धुआ धुआ। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करें और दूसरों को भी सुनने का मौका दें। कमलेश जी, आपसे स्पेशली कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, और जो लोग भी सप्ताह में एक दिन गाने सुन लेते हैं उन सभी से भी निवेदन है कि दूसरों को भी सुनने का मौका दें, क्योंकि बहुत कम समय का यह कार्यक्रम बना हुआ है और आप एक दूसरे को मौका देंगे तो ही वो अपने पसंद के गाने सुन पाएंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि दुनिया को छोड़ो, सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज़ आईने में देखते हो। मुझे लोग कहते हैं कदमों के धूल। सुपर सॉन्ग सोनू भाई, नमस्कार। और हम भी जुड़ गए हैं तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहा हमारे साथ। इस मैसेज को करते हैं दिलीप जी अपने गांव शिहरवा से, और आगे कहते हैं कि जीना है तो खुल कर जियो, घुटकर नहीं। ये ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, पल पल मरने के लिए नहीं। बिल्कुल। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सोनू सर, अनूप यादव लुधियाना पंजाब से जुड़े हुए, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सोनू भैया, मैं स्वीटी शर्मा वृंदावन से, और मुझे सॉन्ग सुनना है दिलबर दिलबर। मैं स्वीटी एक वीक से बहुत दिनों से, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि दिल धड़कता है केहू के प्यार में, ये गाना सुना दीजिए। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे शिल्पी जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि गाना बजाने के लिए थैंक यू सर जी। तो चलिए आपको धन्यवाद है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कमलेश जी कि दूसरों को भी मौका देने का कोशिश करें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं। यहाँ पर प्रीति रैदास की और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है दिल परदेसी हो गया मूवी से, मेरा सोना सजर घर आया। तो चलिए एंजॉय किया जाए आपके गाने के साथ। हम सभी भी हैं आपके साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या

0: 575।
1: Excuse me, boss. You have a text message.
2: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे सोशल लाइफ में फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा सोना सजन घर आया नाइस सॉन्ग, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। शिल्पी गाने को चेंज करते हुए गाने की बोल बताती हैं, दिल धड़के लाके हुके प्यार में, पवन सिंह के ही आवाज़ में। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मैं दीपराज और मेरा पहले गाना कैंसिल कर दिए, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हम खुशनुमा कुमार, हमें भी गाना सुनना है, हम शुभम कुमार और हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिए सर। तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि वेरी नाइस सॉन्ग सुनो जी, और इस मैसेज को करते हैं अनूप जी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि शुक्रिया सर जी सॉन्ग प्ले करने के लिए, मैं अपनी सॉन्ग एंजॉय कर ली, और चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी की और हम सभी भी एंजॉय किए आपके गाने के साथ। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि तेरा नाम लेने की चाहत हुई है, और इस गाने के फरमाइश करने वाले हैं प्रिंस यादव। तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम पूरा करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें और आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं हम सभी अगली गाने के फरमाइश पवन सिंह की आवाज़ में।

0: 94 FM सुन रहे हैं आप सब। सो चल रहा है SMS फरमाइश का और काफ़ी प्यारा शाम। आगे मैसेज और आगे दीपराज जी की मैसेज और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश चेंज करते हुए दिया गया है। गाने का बोल देते हैं, मन मूवी से चाह है तुझको चाहूँगा हरदम। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करेंगे यहाँ पे। आगे कुछ से मैसेज दिख ले, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और तो बिल्कुल सबकी फरमाइश एक एक करके पूरी कर ही रहे हैं, आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। थोड़ा सा आप लोग सब्र करें, फिलहाल हम गाने प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश।
1: शिमारू के नए वीडियोज़

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास।

0: अहाता गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710 3992 या 9765065750।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक के बाद अपना आप सभी का स्वागत है रेडियो एमछिमनी 90.4 एफएम पे सोशल लाइफ एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश करते हैं, हमारा प्यार के बदला में बोला का दिले बाड़ू अनूप जी, तो आप भी बने रहे हमारे साथ और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हमारा भी गाना बजा दीजिए सर, तो बिल्कुल आपकी भी गाने बजाएंगे। और आपसे भी पहले कुछ सुरतगढ़ मैसेज किए हुए, वो भी तो अपने गाने के लेकर इंतज़ार में लगे हुए हैं। अगली गाने की फरमाइश यहाँ पे प्ले करते हैं स्वीटी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है दिल भर दिल भर, तो आपके गाने हम प्ले करेंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज अभी टाइप हो रहे हैं, यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सुनो भैया, शहाबुद्दीन अंसारी फरीदाबाद हरियाणा से जुड़े हुए, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ, आपकी फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और गाने प्ले करते हैं फिलहाल स्वीटी की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने।

फ्रीडोरियम चीम 94 FM सुन दे आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें उस फरमाइश का और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं शुभम जी की और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है झूठी है दुनिया झूठे हैं लोग कहते हैं कि हमारा गाना बजा दीजिए तो चलिए आपके भी गाने हम बजाते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94 FM पे

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और एक कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे देखिए तो समय जो है समाप्ति के करीब आ चुके हैं और यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश और इस गाने का फरमाइश करती हैं नांदनी और गाने का बोल देती हैं प्रेम रतन धन पायो। कल से मैसेज कर रही हैं और इनके मैसेज पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे और जैसे जैसे मैसेज आते जाते हैं तो कुछ मैसेज है जो दब जाते हैं और उसी में से इनका भी मैसेज था। तो चलिए आज आपकी फरमाइश हम पूरी करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आगे मैसेज त्रिपुरवा से सुरेश शाह जी भी पहुँचाए हुए हैं तो आज तो नहीं पूरा कर पा रहे हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और शहाबुद्दीन जी तो आज भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, कल अगले सप्ताह अब पूरी करने की कोशिश रहेगी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारा अभी गाना बजा दीजिए, आज नहीं बज पाएगा क्योंकि समय की समाप्ति हो चुकी है और अंतिम गाने प्ले करने जा रहे हैं और इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। और जो कुछ श्रोतागण छूट जा रहे हैं उनकी फरमाइश अब अगले सप्ताह पूरा करने की कोशिश रहेगा। और जो लोग इस सप्ताह गाने सुन चुके हैं तो एक ही दिन यानी मंडे के दिन सब कोई इकट्ठा ना होंगे, दूसरों को भी मौका देंगे जो आज छूट गए हैं उनको भी अपने गाने सुनने का मौका देंगे तो वो भी अपने गाने सुन पाएंगे। ऐसी थोड़ी सी अपने में सब्र की जिज्ञासा को जागरूक करना है और दूसरों को भी मौका देना है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं अंतिम गाने प्ले करते हुए, काफ़ी प्यारा सॉन्ग है प्रेम रतन धन पायो, और सुनते हैं एंजॉय करते हैं और मिलते हैं फिर अगले सप्ताह। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे।
1: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: और सास पतोह के लड़ाई से बढ़िया बहिमा बॉर्डर के लड़ाई।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: हमार बजरंगी पुलिस बन गई ने।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते,
1: क्या हाल है?
2: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
1: मेरा भी ठीक है। क्या हो गया है, सर्दी जुकाम हो गया है क्या?
2: नहीं,
1: गाना सुनना हुआ हिंदुस्तानी मूवी से, उड़ जाएगी ये मैना।
2: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
1: सभी लोगों को। और बस,
2: और सब आप ठीक है ना?
1: आप लोगों का तो आवाज तो सेम ही होते जा रहा है, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। आप उनकी सिस्टर है क्या? पेड़ पौधा भी अलग अलग होता है, इंसान भी अलग हो जाता है, आप लोग का आवाज एकदम सेम होते जा रहा है।
2: हो जाता है कभी कभी सेम।
1: वही ना, कभी कभी शो आपका जब चालू होता है ना 5 बजे, तो उस टाइम किसी से कॉल पे बात होता है तो लगता है कि आप हैं या वो है। हाँ, एक रेडियो तो है कि आदमी को जोड़ के रखा है, अननोन आदमी भी इतना अच्छा से बात करता है।
2: जी जी। हाँ, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM। नमस्ते।

0: अस्सलाम
1: हेलो, वालेकुम अस्सलाम
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: रेशमा बोल रहे हैं पठानपुर से।
0: जी कैसी हैं आप?
1: हम क्या अपना बताइए।
0: हम भी अच्छे हैं।
1: नाश्ता हो गया मैम?
0: मेरा हो गया, आपका?
1: हमारा भी हो गया। तबियत ठीक है मैम?
0: तबियत ठीक है। और बताइए,
1: कल हुआ तो खूब?
0: कल तो बारिश बहुत हुआ था।
1: पानी तो आंगना भर गया था पानी तुम्हारे।
0: चले, उसके वजह से मौसम थोड़ा ठंडा है, अच्छा है।
1: गाना सुना दीजिए मैम, रितेश कांडे के।
0: बताया कौन सा गाना?
1: हमरों के याद तहरावे लेकिन आए जान।
0: अच्छा, और ये गाना किसी को सुनाना चाहिए?
1: आपको सुनवाएंगे, जितना लोग सुनता है रेडियो सभी।
0: जी बिल्कुल।
1: बहुत मुश्किल से फोन लगा मैं, दो हफ्ता से फोन लगी नहीं रहे। हमारा सोमवार का लगाना, शुक्रवार का, फिर आज लगा।
0: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं।
1: सुनते
0: रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ghinti bajti hai to kehte hain hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: लाल भाई बोल रहे हैं।
6: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
5: ठीक है, मैं बताइए।
6: मेरा भी ठीक है। क्या हो रहा है अभी?
5: धान रुकवा रहे हैं।
6: अच्छा जी, तो बीज तैयार हो गया है?
5: बीज तैयार हो गया है। बारिश से क्या पानी से रुकवा रहे हैं?
6: इतना पानी लगा हुआ है।
5: हाँ, पानी लगा हुआ
6: है। ये सब तो बढ़िया है।
5: आज का फिल्म है वो कर्म।
6: और गाना कौन सा है?
5: गाना है तीन दिया है जान भी देंगे।
6: ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
5: दूजी है, गुड़िया है, सूरज है, विकास है, दिलीप है, रंजीत। थोड़ा गाना लंबा है, थोड़ा थोड़ा गाना।

0: क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो कंपनी में ही काम धाम थोड़ा डाउन चल रहा है अभी।
0: क्या हो गया है?
1: आज तो मैडम आपका आपका कॉल बहुत कोशिश नहीं करना पड़ा, आज तो बहुत जल्दी लग गया।
0: टाइम भी तो देखिए, टाइम हो गया इधर 12:18 हो रहा है।
1: अच्छा,
0: तो इधर थोड़ा कम कॉल आता है इसीलिए।
1: अच्छा, 11 बजे बहुत ज्यादा आता है।
0: हाँ, 11 बजे से 12 बजे के बीच बहुत ज्यादा कॉल आते हैं, उधर बिजी रहता है, इधर थोड़ा स्लो हो जाता है।
1: बहुत बंदे लगाते हैं 11 बजे से। और बताइए मौसम उधर कैसा है गोपालगंज में?
0: मौसम ठीक ही ठाक, बारिश हुआ है।
1: अच्छा, कल का बारिश हुआ है
0: तो आज थोड़ा मौसम ठीक है, मतलब उतना गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी है,
1: वही 20-25 का टेम्परेचर होगा।
0: हाँ हाँ,
1: इतना होगा। आज मेरे को पवन सिंह का आज भी गाना सुनवाइएगा, वो गाना नहीं है पिया दो ये जाम अपने हाथ से जाम, यही गाना।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: सॉन्ग रेडियम का जितना सुनने वाले हैं सबको, सबसे पहले आपको।
0: जी जी, चलिए ठीक है। और सब बढ़िया है ना?
1: और सब बढ़िया है जी मैडम।
0: जी जी, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: ठीक है मैडम, ओके, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone gindi bajti hai to kehte hai hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो नमस्ते मैम।
5: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: कैसे हैं आप?
5: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
6: अच्छा, मीना जी बोल रहे हैं।
5: ये क्या हाल चाल है?
6: ठीक है, अपना बताइए।
5: बस मेरा भी ठीक ही है।
6: हाँ, सुनना है?
5: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
6: गाना नहीं है, चुन्नी में, चुन्नी में।
5: हाँ हाँ है,
6: वही गाना सुनना है।
5: ठीक है, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
6: आपको और साल लिखने वाले दोस्त तक सुना है उनको।
5: बिल्कुल, तो फिर गाना प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
0: बहुत बात कॉल लगल बा हमार।
1: का हो गेल बा?
0: कॉल लगते रहला, बिजी बताओ तो खाली। हमारा गाना बाजा रहे है 5 बजे। आज भी गाना सुना है अभी
1: तो बता दी, कौन सा गाना सुना है?
0: गाना बजा दे खेसारी लाल के, कौन अपने पसंद के बजा रहे हैं बजा के।
1: ना ये परी तो रोवा बताई पड़ी।
0: ना रोवा सुना दी।
1: वो तो बारिश होते रोवे तो बारिश के साथ से कहे कि कौन गाना बढ़िया देख के बजा देता।
0: अच्छा, बारिश तो आज हम भैल रात में, बाहर से धूप निकल बा, बहुत तेज धूप निकल बा। अभी मौसम तो ठीक बा, बारिश के मौसम नहीं है, मौसम रात के रहिए
1: अपने
0: पसंद को बजवा ले, रहुआ बजा दे।
1: अच्छा, तो खेसारी लाल के गाना, चलिए ठीक बा। और ये गाना क्यों कितना है?
0: बिजली महतो, संतोष महतो।
1: अच्छा,
0: रमेश महतो।
1: चलिए फिर ठीक बा, गाना प्ले करता नहीं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: एक बात बताई केकरा हाथ के खाना मिठाई लगे
1: तहारा हाथ के
0: अब केकरा हाथ के मिर्चाई लगे
1: भौजाई के
0: सो क्यूट बेबी एक और बात बताइए

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में।
6: नमस्कार
5: जी,
6: मैं सुधीर कर बोल रहा हूँ, पेरनीवा जिला देवघर झारखंड से।
5: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं?
5: हम भी अच्छे हैं।
6: आप सुना दीजिए मैम, प्यासा सावन का गाना।
5: कौन सा सॉन्ग?
6: प्यासा सावन का है, किशोर कुमार और राधा भोसले की आवाज में है। जीत के बोल है और मेरी चमक छल्लो, इस तरह से जीत के बोल है।
5: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
6: जी, सबसे पहले मैम आपको और रेडियो रंजीम के जितने लिसनर है सबो को, और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, मदन कोल हैं, प्रभुक हैं, राजकुमार हैं, किसी में कोल हैं, उसमें प्रकाश यादव हैं, उन सब सारे काफी को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
5: जी जी बिल्कुल, तो चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
6: ओके मैम।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेमजी 94 एफएम में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते
1: जी, कल नंबर
0: ना तो
1: बहुत बिजी बता।
0: अच्छा तो कॉल आई तो केव कहीं कह सकता था, बिजी न बताई
1: फोन करे हम बहुत गजन होता फोन जल्दी लगा।
0: अच्छा
1: तो बताए कैसन बनी, अच्छा बनी न?
0: हाँ हम तो ठीक बने, रहो बताई रहो कैसन बनी।
1: हमने अच्छा बनी, नशा पानी हो गया
0: ना
1: जितना फोन करे उतना सब हमारी फरमाइश कर लो। आज अपना मत सुना, आज रहो अपना मत सुना, हम सुना अच्छा लगते
0: गाना प्ले करते नहीं सुनत रही सबके साथ रेडियो रेंजन 90.4 FM।
1: जी मैडम जी नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, नमस्ते मैडम जी।
3: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजर 90.4 FM में।
2: भाटी जी बोल रही क्या? भाटी जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना से।
3: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: बस खाना खा रहे हैं और बरसात हो रही है हमारे इधर।
3: अच्छा जी, अभी बारिश हो रही है आपके यहाँ?
2: जी जी जी।
3: चलिए तो बढ़िया है।
2: और सॉन्ग सुनना था मुझे,
3: बता दीजिए कौन सा गाना।
2: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है राम अवतार।
3: और गाना?
2: गाना है तेरे बेवफाई का सिकवा करूँ तो।
3: और सॉन्ग किसको डेडिकेट है
2: ये? सबसे पहले आपको है गजरा सिंह लोधी है रेलाई से, और मांगीलाल जी कंदेल है मांगीलाल धाकल है बड़ा गाँव से, और गोपाल हो जाए ककवा से। ये सॉन्ग कब आएगा?
3: परसों।
2: ठीक है,
3: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।
2: धन्यवाद।
4: तेरी

0: हेलो
1: हेलो हेलो नमस्ते
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार ग्राम प्रधान पंडिता परम बिहार से संजय कुमार सर।
0: जी क्या हाल चाल है आपका?
1: जी मेरा हाल खबर बढ़िया है। आप अपने रेडियो संपूर्ण परिवार कैसे हैं? अभी आप रेडियो संपूर्ण परिवार कैसे हैं?
0: हम सभी ठीक है।
1: चलिए कामना करते हैं की अच्छा गया, स्वस्थ रहिए, आप लोग खुश रहिए, हम भी खुश रहे, अपना मनोरंजन करें, आप भी मनोरंजन कराइए।
0: जी जी बिल्कुल।
1: मौसम बताइए थोड़ा कैसे है मौसम? हमारे पास तो बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: कल का बारिश हुआ है इधर, तो मौसम अभी फिलहाल ठीक है थोड़ा।
1: हमारे पास परसों बारिश हुआ था, कल का नहीं हुआ, परसों बारिश हुआ था। चलिए कभी इधर कभी उधर बारिश होता जाएगा, कभी इधर गर्मी कभी उधर गर्मी। गर्मी के दिन आया प्रकृति के नियम है तो चलता ही रहेगा उसका। हम लोग अपना फरमाइश में आया, पहले गाना हम आया बजा दीजिए। तारा तो ऐसे करके गाना है ना, वही संस्कृत कुछ विक्स के आप कर सकते हैं
0: जी,
1: नित्य नित्य आप करते हैं कुछ। सबसे तो पहले डिस्कस करके आपको रेडियो इंजिन संपूर्ण परिवार को आज दोस्त लोग सिखाना तमाम शादी जी हमारे उत्तम कुमार जी राम ठाकरे गुरु सावन गुरु गिरी राजेंद्र यादव भारती संतलाल गौतम हमारे नाम भी जाना पहचान तमाम दोस्तों विशेष करके शंकर शंभू जी मोहम्मद सलाह अंसारी मझोलिया का विशेष करके उनको सुनाते हुए अभी विदा लेंगे।
0: नमस्कार। रेडियो रूम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
1: hello, hello, hello, hello, hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: जी मैम, गुड मॉर्निंग।
6: गुड मॉर्निंग,
5: मेरा नाम विजय कुमार है।
6: जी
5: मैम,
6: क्या हाल चाल है आपका?
5: ठीक है मैम। हाँ मैम,
6: क्या हो रहा है अभी?
5: अभी तो लाइट कटा हुआ है मैम, बैठे हुए हैं सब।
6: अच्छा,
5: एक गाना का फरमाइश था मैम, उठा ले जाऊंगा जो भी।
6: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
5: जी मैम,
6: बता दीजिए।
5: हमारे मनोज जी है, वीरेंद्र जी है, विजय जी है, राजेश जी है, सुरेश जी है, राजेश जी है, रूबी जी है, नेहा जी है, अर्चना जी है, सभी लोग बैठे हुए हैं एक साथ गाना सुनने के लिए।
6: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: जी मैम, थैंक यू।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 एफएम में।
1: हम थाना से बोलते हैं दादाजी प्रसाद।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: हाल चाल ठीक बात, आपके बरसात धूप चढ़ा भर बात।
0: धूप तो हो गई बहुत तेज, गर्मी होती है बहुत।
1: जितना बरसा बढ़ोतना बेसी गर्मी हो
0: जाएगा।
1: सुने
0: बता दी,
1: गीत गाता चल मुसाफिर गुनगुनाता चल।
0: हेलो,
1: हाँ
0: कौन सा गाना कनी है?
1: गीत गाता चल मुसाफिर गुनगुनाता चल।
0: गाना क्यों कितना हो के बा?
1: जितना लोग सुनता सब कुछ सुने, हमारे सब कुछ सुने।
0: जी जी, सभी ठीक बा। तो गाना प्ले करता नहीं?
1: नमस्ते,
0: सुना रहे सबके साथ रेडियो 90.4। नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो, मैं आसाम से महेंद्र राउत बोल रहा हूँ।
5: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: मैं सुनने से कहा, हाँ फीलिंग से है, माँ मेरे यहाँ से।
5: आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है।
6: तो मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, इसलिए हाँ फीलिंग का है, माँ मैं तेरी आंखों का तारा हूँ, ऐसे कोई गाना एक है।
5: हाँ
6: तो वह गाना सुने कर रहा।
5: और गाने क्यों को सुना होगा?
6: हाँ सुना तो बात है, उमेश, मुकेश, सुनील, अनिल, महेंद्र राउत, शशि प्रभा, ऐसा ही लोग और आप और श्रोता।
5: अच्छा
6: सुना दी।
5: तो चलिए फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: बहुत अच्छा।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।
1: मैं पप्पू कुमार पढ़ रहा हूँ ना, बड़रिया से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: जी मैम अच्छा है, अपना सुनाइए।
0: हमारा भी अच्छा है।
1: मौसम उधर कैसा है मैम?
0: मौसम तो अब तो धूप निकल रहा है, हल्का हल्का गर्मी महसूस हो रहा है। अब
1: आज तो बारिश हुआ है उधर, कल भी हुआ आज भी हुआ।
0: इस समय बारिश नहीं तो
1: कल बारिश नहीं हुआ है,
0: कल हुआ है, आज थोड़ी हुआ है।
1: हमारे यहाँ तो थोड़ा सा हुआ है, 10-15 मिनट बारिश हुआ। गाना तो सुना दीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा गाना?
1: मेरे पतली कमर लंबे बाल है रे मेरी उम्र तो लाल।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: रेडियो रेंजी जितने भी सुन रहे हैं सभी सुनेंगे।
0: ओके, और सब बढ़िया है ना?
1: जी मैम बहुत बढ़िया है, अपना सुनाइए। हमारे लोग आते हैं।
0: तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजी 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
7: अरे सुबह सुबह परेशान हूँ, फिर जगह पकड़ा।
6: अच्छा, क्या हो गया है?
7: गाना सुनना था मुझे।
6: नाम बता दीजिए अपना।
7: मेरा नाम है बीरेंद्र शाह, पहली बार लगा है।
6: और कहाँ से हैं आप?
7: मेरा यहाँ बरौली थाना मेरा घर है।
6: तो क्या हाल चाल है आपका?
7: सब ठीक है सर।
6: अच्छा, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
7: गाना एक पुराना गीत है, गुरु मानदास से गाया हुआ है, किया था रब से पहले।
6: कौन सा सॉन्ग?
7: जग में किया था रब से पहले, इस प्रकार रब से पहले। मैं बहुत दिन पहले देखा था फिल्म में। मिल जाएगा कि नहीं?
6: मिल जाएगा,
7: ढूंढिए उसको।
6: अच्छा, ढूंढेंगे। और गाना किसी को सुनाना भी है?
7: सारा दुनिया सुनेगी, हम भी सुनेंगे।
6: जी जी बिल्कुल,
7: बजेगा उस पर। तो रेडियो में सुनता हूँ बराबर, ठीक है ना
6: जी।
7: तो एक गाना कभी नहीं बैठता है, तो मैं सोचा चलो उसी गाना को मैं सुनना है।
6: अच्छा चलिए, ठीक है आपके लिए।
7: पंजाबी कलाकार है वो, मैं सुबह से लेकर सारा दिन सुनते रहता हूँ। विविध भारती हुआ, पटना हुआ, जितना प्रोग्राम है ना सब सुनता हूँ
6: जी।
7: अच्छा, सुबह में जी? सुबह के टाइम में
6: वही शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच बजता है।
7: अच्छा
6: जी, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी रंजन
0: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: हम बढ़िया है।
0: और सब ठीक है ना?
1: हम तो बढ़िया है, काम हो रहा है। हम लोग काम कर रहे हैं फोन से रेडियो रंजन।
0: तो अभी बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
1: शुरुआत जी है हथिया मूवी का गाना शुरुआत जी, अक्षय कुमार का मूवी है।
0: और गाना कौन सा?
1: उसमें गाना है खबर छू जाएगी कल के अखबार में, घायल हुआ एक लड़का एक लड़की के प्यार में।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी अपनी वाइफ को।
0: जी चलिए, फिर तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: The phone ring day bajti hai to kehte hain hello.
3: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रहे हैं समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी। सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: भौजी मत लेके जाए, भौजी राजा के हमले से दूर मत लेके जाए, भौजी हम तो हर पाप पर ताली, भौजी

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

विक्रम संवत 2083 अषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि दिनांक 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार के सुप्रभात। रेडियो रिमझिम परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय 5:14 पर होगा और सूर्यास्त 6:46 पर होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। माता पिता वो हस्ती है जिसके पसीने एक बूंद का कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकती। तो श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:00 हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रातःकालीन सभा भक्तिमय गीतों के साथ।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।